हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे नदीम अहमद खां का गाया राग लैया बिलावल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के

ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपार्ड के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघुवार्ता एनी बेसेंट के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी, थियोसॉफिकल होम रूल की कार्यकर्ता, महिलाओं के अधिकारों की समर्थक, लेखक, बेबाक वक्ता और तत्कालीन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। वे मूल रूप से एक ब्रिटिश और आयरिश महिला थीं, क्योंकि उनके पिताजी आयरिश थे और उनकी माँ एक ब्रिटिश महिला थीं। जब वे 20 साल की थीं, तभी उनकी शादी फ्रैंक बेसेंट से हो गई थी, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण उनका बहुत जल्दी तलाक हो गया था और वहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वे भारत में पहली बार एक थियोसॉफिकल कार्यकर्ता के रूप में आई थीं और यहाँ आने के बाद यहीं की होकर रह गईं। उनकी रुचि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद ही बढ़ी थी। थियोसॉफी एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी धार्मिक विचारों के बीच तालमेल स्थापित करना था। वे 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थीं। उन्होंने इस संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, क्योंकि वे बनारस की संस्कृति से बेहद प्रभावित थीं। यही कॉलेज आगे चलकर सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय काम किया था। एनी बेसेंट ने भारत में फैली हुई कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह का भी समर्थन किया। वे भारतीय दर्शन और धर्म से भी बहुत प्रभावित थीं। भगवद गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। भारत की आध्यात्मिकता और विविधता ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया। यही वजह है कि वो भारतीय साधु, संतों, योगियों और आचार्यों से मिली। उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।

0: राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। वे इस पद पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला थीं। एनी बेसेंट लोकतंत्र की बातें करती थीं। इस पद से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने लेखों, भाषणों और पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की आलोचना और भारतीयों के अधिकारों की पैरवी करती थीं। उनका मानना था कि भारतीय समाज को स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए समाज में शिक्षा सुधार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए प्रयास किए। उनका राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक साबित हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितं, यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननम् अपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एन

0: DRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88.1 लाख सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27.2 लाख वैदेशिकनागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 800 स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर खेजर मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया

संगीति का कार्यक्रम में आज आपने भूषण त्रिपाठी के गाए भजन सुने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की ढेर सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ इस सुहानी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हूँ मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्त, और अभी आपने सुना फिल्म काई पोचे का ये प्यारा सा गीत शुभारंभ, और क्या कमाल का संदेश है इस गाने में। हर शुरुआत अपने आप में खास होती है, चाहे वो किसी नए काम की शुरुआत हो, या किसी नए रिश्ते की कोई नया सपना हो, या फिर बस एक नई सुबह की शुरुआत। तो आज की इस सुबह का एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं है, सुबह तो एक नया मौका है फिर से मुस्कुराने का, फिर से कोशिश करने का, और बिल्कुल आगे बढ़ने का। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

ही प्यारा गीत, और वाकई में जब भी इसको सुनते हैं तो बस यूं कहते हैं पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और हम झूमने लगते हैं। और सच में कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और अगर आप इस वक्त घर से निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में, या फिर चाय की प्याली लेकर आराम से सुबह का आनंद ले रहे हैं, तो जहाँ भी है बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मुस्कान आपकी पूरी सुबह का मूड बदल देती है। और वैसे भी सुबह की चाय और प्यारे प्यारे गीत हो तो इन दोनों की जोड़ी से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। तो चलिए अब इस सुरीली सुबह को और थोड़ा सा संगीत से भरते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सिर्फ संगीत के नहीं बल्कि अच्छी यादों और खूबसूरत एहसासों की भी है। कभी आपने गौर किया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई पुरानी याद सामने आ जाती है? कभी स्कूल के दिन, कभी कॉलेज की दोस्ती, कभी किसी खास इंसान की याद, और कभी बस वो दौर जब ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुआ करती थी। लगता है आसान हुआ करती थी, पर जब भी हम प्रेजेंट में जीते तो लगता है ज़िंदगी मुश्किल ही होती है। पर दोस्त, अगर हम आसान बनाना चाहें तो बस सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी को आसान बनाएं और ख़ूबसूरत बनाएं। तो आज अगर कोई ऐसा गाना आपके पास भी है जो आपको किसी खास याद से जोड़ता है, तो उसे ज़रूर सुनिए और बिल्कुल आनंद लीजिए इस गाने का, क्योंकि कुछ यादें दोबारा जीने के लिए नहीं होती, बस मुस्कुरा कर याद करने के लिए होती है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, शायद आपको भी कोई प्यारी याद जगा दे।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह अब थोड़ी सी और रंगीन हो गई होगी। और चलिए अब बात करते हैं आज की एक छोटी सी मॉर्निंग मोटिवेशन की। जी हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन हम सभी को चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हम अक्सर सोचते हैं जब सही समय आएगा तब ये काम शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर कोई सपना है तो पहला कदम आज उठाइए, और अगर किसी से बात करनी है तो आज कीजिए, और अगर किसी को धन्यवाद कहना है तो आज कहिए, और अगर खुद को एक और मौका देना है तो भी आज ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आप काम को टालेंगे तो बस वो टलता ही रहेगा। तो बिल्कुल ज़िंदगी में कभी भी ये उन्हें कहेंगे कि अच्छा वक्त आएगा और जब सही समय आएगा तब करेंगे, नहीं, उसे बनाना पड़ता है, ठानना पड़ता है अपने मन में कि आज ही करना है। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह

हमें एक ब्लैंक पेज देती है, जी हाँ खाली पन्ना देती है, और अब उस पन्ने में क्या लिखना है कि हमारे हाथ में है, हाथ में है, और बिल्कुल हमें अच्छा ही लिखना चाहिए क्योंकि तभी तो अच्छा होगा। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा शानदार गीत।

इसी के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

119 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और फिर होंगे उर्दू में समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर

0: और अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी

0: प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2341-0111-2341-44-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान। 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत। 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची। सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग

0: अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ टू डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड एससीओ समिट एंड मीट सेवरल एससीओ लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिजिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिजिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वजीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज रक्स का भी एहतमाम किया गया।

0: जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिज़िस्तान के सदर सदिर जपारूव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिज़िस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मीनिया, किर्गिज़िस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज 6ठे वर्ल्ड नामोड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोज़ा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तफाक किया। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तिजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रुपए पैसे के लेन देन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और विरसे के तहफ़ से है। इस दो रोज़ा दौरे से भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दफाई शराकत दारी और $5 अरब के तजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई तआवुन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशियाई खित्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज़ ऑर्डर ऑफ

0: दाराजा अली दोस्तलिक से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और तआवुन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के तआवुन का एतराफ़ किया गया है। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज आबनाए हुरमुज़ को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ़्तार बरकरार रखेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से आबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसी अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्री अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज़ शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज़्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासर ज़िलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताज़ा सैलाब से गोरखा ज़िले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहराह के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इत्तलात के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चढ़ रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के ज़ेर असर उड़ीसा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी उड़ीसा के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज़ हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारती बहरिया आज

0: मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये निस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज DSV है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेरेआब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जेरेआब कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है, जिसमें समुन्द्र में जेरेआब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जेरेआब बचाव कार्रवाइयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: अमरीका ने कल रात अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी के फौजियों को अबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागनी की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाजाराई में फिर से शिद्दत आ गई है। इससे कबल अमरीकी फौज ने अबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को यह सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलव्वस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज़्ज़म अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेज़ी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के जरिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज़ किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वीं शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
2: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेवक्त शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वजीर आजम मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबारात में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इनकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शिक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2000 रुपये से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाज़त है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खास तौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794

तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकंड। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक से धमार गायन, राग है ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना उदय कुमार मलिक से धमार गायन राग था ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।

0: मिट्टी दी महक कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

0: श्री मोदी आज छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Elishovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadir Zaparov for 26th SCO Summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with SCO leaders on the sidelines of the summit. Mr. Modi will address the SCO summit tomorrow. More from our correspondent.
0: Prime Minister Narendra Modi will first

0: बार फिर दोहरा दें, IPRADIODELHI@gmail.com। तो
1: बिल्कुल
0: इंतजार रहेगा ना हमें उनके
1: बिल्कुल।
0: मैसेजेस का।
1: और चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म लोफर के इस गीत के साथ, और जिसे गाया है
0: बिल्कुल आशा भोसले ने गाया है और बहुत ही प्यारा गीत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: शोभा, बहुत से श्रोता मेल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनके नाम पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल, ये जो पहला जो मैसेज हमें आया है वो आया है किशोर नगर अमरावती से हैं। हीरामन शेंडे, नीला देवी, शीला देवी शिंदे और गोदार, ये हैं
0: सिद्धार्थ
1: सिद्धार्थ
0: गोडाने,
1: गोंडाने।
0: है ना,
1: हाँ जी, ये
0: ये
1: सब।
0: सुनना चाह रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए का गीत। और अगले जो श्रोता हैं वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और

0: अनु प्रकाश
1: और ये अगले जो हमारे श्रोता हैं ये हैं दीपक वर्मा, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ये हैं पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
0: जी। और अगला जो संदेश आया है, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं लिख पढ़ पाएंगे। और ये है सत्यप्रकाश सनोठिया, रोहिणी दिल्ली से।
1: और अगला जो मैसेज आया वो हमें आया है किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का।
0: जी, अब
1: और
0: है ये गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ये हमें मैसेज लिखा है लेवाई छत्तीसगढ़ से।
1: हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार। और ये अगला जो मैसेज हमें आया है ये आया है हमें आज़ाद नगर रक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहाँ का।
0: जी, एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। और ये आया है चंडीगढ़ सिटी से, ये मैसेज हमें कर रहे हैं सतीश अनेजा और विमल अनेजा, ये लिख रहे हैं नमस्कार मीना और शोभा बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और शोभा, अब सुन लेते हैं ये गीत, और गीत के बाद फिर से हम श्रोताओं के मैसेजेस पढ़ेंगे, है ना।

0: பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற.
1: கியா தும் दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद, और आपकी पसंद में आपके मैसेजेस ना हो मीना तो अधूरा सा लगता है कार्यक्रम.
2: तो चलिए, मैसेज आया है बठिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का.
1: और अगला जो हमें मेल मिला है, ये हमें आया है मलाड मुंबई से दिव्या, सोनल, चेतना, पूनम, निमेश, परमिला जैन का.
2: जी, अगला मैसेज आया है सूरत सिटी से अल्पा जैन, अदिति जैन, हिना जैन और रश्मि जैन का.
1: और ये है हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, डब्बू सम्राट, और इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी.
2: और इन्होंने एक मैसेज भी किया है, इन्होंने लिखा है होस्ट मीना चौहान जी और शोभा शर्मा जी नमस्कार. तो आपको भी हमारा नमस्कार.
1: बिल्कुल,
2: रेगुलर कनेक्ट होते हैं आपसे. बिल्कुल जी, हमें मालूम है आप रेगुलर कनेक्ट होते हैं. और ये सुनना चाह रही हैं फिल्म याराना का कोई भी गीत. जी, आपको बिल्कुल सुनाएंगे. और अगला मैसेज आया है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का.
1: और ये अगला मैसेज हम ले लेते हैं. ये मैसेज तो जी हाँ दोस्त, पहले ले चुके, तो अगला लेते हैं. ये आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू का. और इनके साथ हैं डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, और साथ में डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी. और गोला बाज़ार बक्सर से इनके साथ है श्रद्धानंद आर्य, और साथ में इनके है अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य. और इनके मैसेज में बहुत सारे लोग हैं. ये है सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान जी.
2: जी, अगला मैसेज है आया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और ये लिख रहे हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया. तो आपका भी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत
1: बहुत,
2: बहुत
1: बहुत
2: शुक्रिया.
1: शुक्रिया. और दोस्त, अगला जो संदेश है वो हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर और मलकापुर महाराष्ट्र से इनके साथ जुड़े हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुन्हेकर जी.
2: जी, अगला मैसेज आया है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी. ये मैसेज पहले आ चुका है, कृपया बार बार मैसेज ना करें. लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी.
1: और अगला जो मैसेज है ये भी हम ले चुके हैं, तो चलिए अगले मैसेज की ओर रुख करते हैं. और ये हमें आया है दुगाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी का संदेश. और अगला संदेश ले लेते हैं. अगला संदेश हमें आया है, ये संदेश दोस्त हमें बार बार ही आप वही संदेश देते हैं, तो हमें अपने संदेश को नज़रअंदाज करना पड़ेगा ना दोस्त. एक बार ही ले लिया तो हो गया. चलिए अगला संदेश बता देते हैं. ये हमें आया है ये है खुशी रेडियो श्रोता संघ से, खुशी रेडियो श्रोता संघ, फातिमा गलोनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का.
2: बाकी के नगमे में हम सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शोभा, चलिए अब चलते हैं मेल्स की ओर। और ये मैसेज आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। ये लिख रहे हैं कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शिद्दत से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं।
1: बहुत खुशी होती है जब श्रोता लिखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं और बोलते हैं कि कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से
0: जी
1: सुनते हैं।
0: बिल्कुल। अगला मैसेज आया है,
1: ये है हमारे पास जो मैसेज आया, ये है मरहरा दरवाज़ा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी।

0: रसीद वारसी जी और इनके साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुम ख़ान, और ये लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेल शामिल करने का। तो दोस्त शुक्रिया, तो हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी बोट।
0: और ये हमारे साथ जुड़े हैं मलियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, और सरधना मेरठ से इनके साथ है आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन जी।
1: जी, अगला मैसेज आया है, आप दोनों दीदी जी को प्यार भरी नमस्कार। तो आपको भी हमारी प्यार भरी नमस्कार।
0: नमस्कार दोस्त,
1: ये हमें लिखा है मैसेज मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने।
0: और अगला जो संदेश हमें आया है ये आया है खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू नक्शे मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इनके साथ जुड़े हैं पीयूष सिक्का, ज्वेल सिक्का, डुग्गू सिक्का और भाविक सिक्का। और मीना, मैं एक बताना चाहूँगी, इन्होंने अपनी एक कंप्लेंट लिखी है
1: जी
0: कि अपने जान पहचान वाले तो सब शामिल हो गए, अब गैरों को भी शामिल करने हैं
1: जी या आपको एक बात बता दें कि हमारी जान पहचान के कोई भी श्रोता नहीं है। देखिए, आपको मालूम ही है कि रेडियो में तो हमें कोई देख भी नहीं सकता है और हम भी नहीं देख सकते हैं।
0: तो दोस्त, ऐसी नाराजगी मत जाहिर कीजिए,
1: हाँ,
0: मैं जरूर शामिल होते
1: आपकी
0: हैं।
1: नाराजगी दूर हो गई होगी, ये हमें विश्वास है। अगला मैसेज हमें आया है पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे का।
0: और ये हमारे साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया जी, हमारे साथ ये इनका जो मेल आया है ये हमारे नियमित श्रोता है, और इनके साथ में जुड़े हैं हमारे साथ। जी हाँ, इन्होंने मैसेज इतना लंबा डाल दिया ना, ये है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया जी।
1: जी, अगला मैसेज आया है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष।
0: और
1: और ये
0: ये
1: सुनना चाह रहे थे
0: बिल्कुल,
1: धरती कहे पुकार के का गीत, तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और अगला मैसेज आया है
0: पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद गोविंद चौक, टोनी दीवान और लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा का, ये भी सुनना चाहते
1: शुक्रिया
0: हैं
1: कह
0: प्यारा सा
1: रहे हैं
0: गीत।
1: और प्यारा सा गीत सुनना चाह
0: बिल्कुल,
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: ये तो मैसेज हम शामिल कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया है हमें मैसेज रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का, जिशान खान भी इनके साथ है हनुमानगढ़ से,
1: जी,
0: और ये तो
1: चलिए अब एक
0: मैसेज
1: गीत सुन लेते हैं, उसके
0: बिल्कुल
1: बाद बाकी के मैसेजेस पढ़ेंगे।

0: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पसंद, और मेरे साथ हैं मीना और मैं हूँ शोभा आपके साथ।
1: जी। और मैसेजेस देख लेते हैं। आर्यनगर कोका बिलाई से हमें मैसेज किया है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने, इनके साथ हैं। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और अंजलि जंघेल।
0: और अगला जो मैसेज हमें आया है वो आया है हमें नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मोहसौल सीतामढ़ी से हैं। अकरम हुसैन प्रिंस और बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा, और इनके साथ है कलेर बिहार से जुड़े हुए मोहम्मद आसिफ खान और निकट परवीन जी।
1: जी अगला मैसेज आया है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। इन्होंने हमें मैसेज किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी वलिया से।
0: और ये अगला जो संदेश है ये हमें आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा, और इनके साथ बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं MS अब्बासी और इनका पूरा अब्बासी परिवार।
1: जी ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म लोफर का गीत, लेकिन ये हम तो पहले ही सुना चुके हैं।
0: और अगला मैसेज पढ़ लेते हैं,
1: जी
0: ये हमें आया है थाना रोड बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता का।
1: जी अगला मैसेज आया है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का।
0: और ये हमारे साथ जुड़े हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई और प्रीतेश सिंघई और इनका पूरा संघई परिवार।
1: अगला मैसेज आए हैं ये लिख रहे हैं आपकी चुनिंदा प्लेलिस्ट में से आप कोई भी आपकी पसंद का प्रसिद्ध गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल सुनवा देंगे आपको। और ये मैसेज किया हमें मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने।
0: और ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह विजारनिया और देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या विजारनिया जी।
1: जी
0: और हमारे साथ जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलियस डिकैस्ट्रो जी।
1: अगला मैसेज आया है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नानजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से, और ये कोई भी गीत सुनना चाह रहे हैं।
0: और पहाड़गंज बुंदलानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े
1: ये
0: हैं
1: मैसेज हम पहले पढ़ चुके हैं और
0: तो चलिए अगला देख लेते हैं। ये आया है मुकाम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख और कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जी।
1: चलिए अब गीत सुन लेते हैं और उसके बाद बाकी के संदेश पढ़ेंगे।

0: चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं और ये सुनना चाहा है।
1: जी हाँ, ये मैसेजेस को हम शामिल कर ही लेते हैं, प्यारे प्यारे गीत जो हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में। और मैं हूँ आपके साथ शोभा शर्मा, मेरे साथ
0: और मैं हूँ मीना चौहान।
1: हाँ, और बिल्कुल मैसेजेस की और अमीना जी ने ओपन कर दिए हुए हैं हमारे मेल बॉक्स में। देखिए किसका ये मैसेज आया है। ये आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज और तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज और नुजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज का ये संदेश।
0: जी, फिल्म भीगी पलके कोई भी गाना सुना दीजिए।
1: कोई फरमाइश
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। ये हमें लिखा है संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर से।
1: और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, पूजा रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा युवराज, वानखड़े, लक्ष्मी नारायण, भाऊ खड़से, और लिख रहे कि हमें भी मैसेज में शामिल करें। तो दोस्त आप हो गए ना शामिल।
0: जी, अगला मैसेज आया है कृष्णा कॉलोनी हासी से, सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी का। और अगला मैसेज है,
1: कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पे चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। और बहुत से संदेश हैं और प्यारे प्यारे गीत भी आपके इंतजार में। चलिए और मेल भी ले लेते हैं।
0: झज्जर हरियाणा से हमें मैसेज किया है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने।
1: और अगला जो संदेश हमें आया है उसको हम लेने से पहले सोच रहे हैं कि एक संगीत, बिल्कुल प्यारा संगीत
0: गीत सुन
1: हम
0: लेते हैं ना।
1: सुनवा लेते हैं।

0: बिल्कुल शोभा, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए।
1: नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगी कि अगर कोई बुरा है तो उसको सुधार सकते हो, पर बुरा कह के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुरा करोगे तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी खुद फैलेगी और दूसरे को तो आप देते ही हो नेगेटिव थॉट्स अगर बुरा कहते हो तो।
0: बिल्कुल खुश रहना चाहिए और औरों को भी खुशी देनी चाहिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: और हमारे श्रोता भी हमें खुशी दे रहे हैं अपने संदेश भेज भेज के।
0: बिल्कुल, ये मैसेज आया है
1: सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से।
0: जी। अगला मैसेज आया है नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से, और ये लिख रहे हैं कि आपको सप्रेम नमस्ते, तो आपको भी हमारी नमस्ते।
1: और अगला जो संदेश है वो हमें आया है, बहुत ही सुंदर सा सजा के हमें ये संदेश भेजा है।
0: बिल्कुल
1: इसमें तो उनकी यूँ कहेंगे टॉफ़ी भी भेजी हुई है, पोस्ट ऑफिस
0: बिल्कुल
1: रोड भी, बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता जी।
0: जी। अगला मैसेज आया है राजू अग्रवाल, केशव, चरणदास, रेखा और

0: चौधरी वास का।
1: जी हाँ, ये चौधरी वास से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं।
0: जी।
1: और अगला जो संदेश है ये हमें आया है मरहरा दरवाज़ा एटा से, नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी का। और इनके साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं ज़ुबैर अली खान, सबिया अंजुम खान।
0: जी, अगला मैसेज आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। ये हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी।
1: और ये मैसेज तो पढ़ चुके हैं, चलिए अगला पढ़ते हैं। ये है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, शमोहन टिल्लू नायक और मधु नायक जी।
0: अगला मैसेज है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुबहार गली, श्री रामपुर से अशोक दल्ले, सविता दल्ले, अनिकेत दल्ले, ऋषिकेश दल्ले, जीविका दल्ले, और इनके साथ हैं पूना वाले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने।
1: और ये जो संदेश हमें आया है ये आया है, ये लिख रहे हैं कि हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संदेश मेरा DV राणा ने नेहरू विहार दिल्ली से, तो शुक्रिया दोस्त, वाकई आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छी बात लिखते हैं और साथ में संदेश भी बहुत अच्छे अच्छे भेजते हैं, तो अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल। अगला मैसेज आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और प्रिंस वर्मा का।
1: और ये संदेश हमें आया है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का।
0: ये लिख रहे हैं कि आप दोनों बहनों को सादर नमस्कार, और ये फिल्म लीडर का गीत सुनना चाह रहे हैं। जी, आपको ज़रूर सुनवाएंगे।
1: और ये मैसेज तो हम ले चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कोई गीत की ओर रुख कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जो हमारे श्रोता सुनना चाहे हैं, जिन्होंने श्रोता
0: बिल्कुल।

0: देखिए समय भी होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं कुछ श्रोताओं के मेल्स।
1: बिल्कुल, ये जो मैसेज हमें आया है ये है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, हमारे साथ जुड़े हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर रमनदीप जी। और इनके साथ कालका से जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। और पश्चिम बंगाल कोलकाता हुगली से हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा संदेश भी लिखा, ये है राम बालक दास जी। ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम को सुन रहा हूँ और क्या कहते हैं, रेडियो से जुड़ना सोशल मीडिया के समय में बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा महसूस हो रहा है
0: जी। ये लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में भी रेडियो श्रोताओं में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल
1: बहुत अच्छी बात है, आप ही की

0: वजह से नहीं आई, आप जैसे श्रोता ही तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: और इनको प्रोग्राम सुनकर भी अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो मैसेज आया है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और प्रीति का,
0: और ये संदेश हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे संदेश ले चुके हैं। अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है, हमें मिला है नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जी का। ये है अभिता कृष्णमूर्ति जी का गीत कोई सुनना चाह रहे हैं। तो दोस्त अभी तो वक्त हो चुका है, और ये जिला बेगूसराय बिहार से लिख रहे हैं संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, और जिला मोतिहारी बिहार से जुड़े हुए हैं ये लोग
1: जी।
0: और बहुत से संदेश मैं सोच रही हूँ हमने ले चुके हैं,
1: एक मैसेज और ले लेते हैं। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुम खान का मैसेज आया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं गीत संगीत की ओर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिज़िस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिज़िस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: इससे पहले उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और

0: मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशुली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। अमरीका ने कल रात होर्मूज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी सेना ने लड़ाक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस हमले में ईरान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे। उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।

दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें, और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखें, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण या चाइल्ड अब्यूज, इसके शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं, कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो, या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाएं, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर

सकें, ट्रस्ट कर सकें और सारी बातें आपसे शेयर कर सकें। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ये शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिस पे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है और वहां से 1 घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से

क्यों मिले। सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सबरस के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सलीम अहमद से सितार वादन, राग है गुर्जरी तोड़ी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सलीम अहमद से सितार वादन। राग था गुर्जरी तोड़ी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज़िस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिज़िस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी

0: अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशुली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his two-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. After this, Prime Minister Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at his statue situated at the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, on the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. In his departure statement on Saturday, Mr. Modi said he is looking forward to advancing India's vision for the region based on security, connectivity and opportunity. He also said India will work with SCO members towards a region free from terrorism, separatism and extremism. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games. The Indian Navy today commissioned INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, said that amid a period of strategic churn, Nippon is going to be a powerful addition to the Navy's specialized underwater capabilities required for multi-domain deepwater operations at sea. He added that Nippon will significantly enhance the Western Naval Command.

0: हर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ रेनू
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा और रेनू
0: मेरा
1: आपका भी।
0: ना, प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
0: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रास्ट चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम कर पल्लव झंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागनी, तुम पथ हो

मैं रेनू, तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु, तुम पथिक दूर के शांत, और मैं बाट जोहती आशा, मैं बाट जोहती आशा।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और बात नीति शास्त्र की, तो नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से, अपने मन से 3 प्रश्न पूछा जाए। पहला, कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यानी इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए।
1: और फिर दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, यानी भविष्य का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा प्रश्न जो स्वयं से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, वो ये है, क्या मैं इसमें सफल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। यानी आत्ममूल्यांकन, अपनी क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करना, यही है सफलता का मूल मंत्र। और इसी से जुड़ा हमारा आज का प्रश्न भी है।
0: हमारा आज का प्रश्न है कि आपको बताना है कि आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के आपके अपने अनुभव क्या हैं। और
1: और दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है वही, fmgoldga@gmail.com।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अखियों के झरोखों से, आवाज़ थी हेमलता और शैलेंद्र की। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयूल

0: की चिंगारी बन, तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन, खामोश तुझे देखती रहूंगी। ये उद्गार है हिंदी और पंजाबी की प्रख्यात कवित्री लेखिका अमृता प्रीतम के।
1: जी, और अमृता जिन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया अपनी शर्तों पर, अपनी मान्यताओं पर, वो हमेशा स्त्री आज़ादी का एक संपूर्ण प्रतीक बनकर रहीं। वे एक विद्रोही लेखिका थीं जिन्होंने अपने जीवन के हर एक शब्द को पूरी निर्भीकता और स्वायत्तता के साथ जिया।
0: वो भी उस समय जब सब कुछ इतना आसान नहीं था, बल्कि उसके लिए लड़ जाना होता था, जिद पर अड़ जाना होता था, जैसा अमृता ने किया। वो अपने बारे में अपना पता बताते हुए स्वयं कहती हैं कि जहां आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वो मेरा घर है। पंजाबी भाषा की पहली प्रमुख कवित्री और लेखिका अमृता का लेखन भावनाओं, संवेदनाओं और प्रेम से ओतप्रोत रहा। वो जैसी थीं उन्होंने वैसा ही लिखा, बगैर किसी आवरण के। अमृता के लिए आज़ादी का मतलब था भावनात्मक आज़ादी और फिर सामाजिक आज़ादी। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए ये दोनों आज़ादी हासिल की।
1: और जो पीड़ा उन्होंने अंदर महसूस की उस दौर की, और महिलाओं पर जो उन्होंने देखा, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए उन्होंने वारिस शाह को संबोधित करते हुए बेहद मार्मिक और अमर कविता लिखी, अज आँखा वारिस नशानों, जो पंजाब की सांझी संस्कृति के टूटने और लाखों बेटियों के दर्द को दर्शाती है। उनकी भाषा और चिंतन में पंजाब की मिट्टी, सूफी संतों की उदारता और मानवता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट और उपन्यास पिंजर सच्चाई और साहस के अनूठे दस्तावेज हैं। कोरे कागज, सागर और सीपियां, 49 दिन, उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं।
0: उनकी रचनाओं में पीड़ा, विद्रोह और निश्चल प्रेम का अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। वो पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। उन्हें पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

0: कादम्बरी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और आज है कजरी तीज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये त्यौहार प्रतीक है सौभाग्य, सुहाग और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का, जिसे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।
1: जी, आज के दिन विशेष की बात हो रही है और मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्षों तक कठोर तप

0: तपस्या की थी। इसी तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था
1: जी। और इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता गौरी के भवानी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती को सुहाग की 16 सामग्रियां जैसे सिंदूर, चूड़ियां, रोली आदि जो अर्पित की जाती हैं, और ताकि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहे। इस त्यौहार का संबंध सावन भादों में घिर आई काली घटाओं से भी है, जिसमें महिलाएँ एकत्रित होकर पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर इस समय नवविवाहित मायके में आने की उनकी परंपरा है, और विरह और प्रेम को की अभिव्यक्ति का सुंदर चित्र खींचते हैं ये कजरी गीत
0: जी। और इस उत्सव में दिन भर निर्जला या जलीय व्रत रखकर महिलाएं जो हैं 16 श्रृंगार करती हैं और अर्घ्य देखती हैं शाम को चंद्रमा को। और इस प्रकार रेणु जो इस त्यौहार का जो संबंध है वो प्रकृति से है। भाई नीम के पेड़ पर या उसकी डाली को देवी नीमड़ी माता मानकर पूजा जाता है। देखिए आजकल जो है तरह तरह का फ्लू फैला हुआ है ना,
1: जी जी।
0: तो देखिए हमारे जो पर्व हैं और त्यौहार हैं वो हमारी संस्कृति जो है वो सीधा प्रकृति से जुड़ी है। नीम का इस समय प्रयोग करना चाहिए ताकि आप तरह तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनसे बच सकें। और जो नीमड़ी माता है उनकी जो पत्तियों से जो आपने बता रही है ना नीम रोग जो रोगनाशक
1: हाँ।
0: है और वातावरण शुद्ध करने का भी काम करता है, तो उसकी पूजा करना का अर्थ है कि उनको जीवन में उतारना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, ताकि आपका परिवार बीमारियों से दूर रहे और उत्तम स्वास्थ्य जो है उसको मिले।

0: दुल्हन एक रात की, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना। फिल्म थी, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।
1: जी। और रेनू, आज जो क्वेश्चन हमने पूछा था, प्रश्न पूछा था कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, आपके अपने अनुभव क्या हैं, और ईमेल आईडी थी fmgoldga@gmail.com और fmgoldair@gmail.com, और हमारे पास श्रोताओं के सुनने

0: वालों के बहुत सारे जवाब आ गए हैं, ईमेल आ गई है, तो क्यों ना हम पढ़ दें।
1: हाँ बिल्कुल। और मेरे पास ये जो पहली मेल मुझे मिली है ये है नवीन भाटिया की, एज इट इज, जैसा कि वो हमेशा पहले लिखते हैं। और उन्होंने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन और साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद और उसमें उस पर अटूट विश्वास, ये है सफलता का मूल मंत्र उनके अनुसार।
0: जी, और राजू अग्रवाल केशव दक्ष चौधरी वासी सार हरियाणा से कह रहे हैं कि हर इंसान में कोई प्रतिभा या कोई कमी अवश्य होती है, अपनी प्रतिभा को पहचान कर निखर कर आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। ये कुछ नहीं कह सकता, और ऐसा ऐसा सोचकर कमजोर ना करें। और पता नहीं आप कहाँ कहाँ से इतने बढ़िया गीत सुनते हैं और अपनी मेहनत से निकाल कर लाते हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं, तो उसका धन्यवाद हम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली
1: हाँ
0: मेल।
1: अगली मेल है मेरे पास, ये भी नियमित श्रोता है हमारे, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर से, सोनीपत से ये लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि समय का सदुपयोग और अच्छी सोच से जो है वो सफलता मिलती है। तो समय का सदुपयोग तो सही बात है रश्मि जी, समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर समय
0: जी,
1: पर हर काम करते हैं तो सफलता तो निश्चित है।
0: और गौरी शंकर जी नागलोई से कह रहे हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करोगे सफलता अवश्य मिलेगी। अगर एक काम में कामयाबी न मिले तो दूसरे काम में भी कोशिश करो, समय ज़रूर लगता है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बातें सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है अलमास महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सफलता का मूल मंत्र है लगातार चलते रहना, क्योंकि थमता वही है जो हार मान लेता है। और एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही दिशा और धैर्य से काम करना। जी, बहुत हमारे श्रोता हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं अपने श्रोताओं से, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपना भाई मोबाइल आपके हाथों में, अपना मोबाइल का मेल बॉक्स खोलिए और फटाफट कर दीजिए मेल जवाब कि आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoalga@gmail.com।
1: जी बिल्कुल। और सफलता तो देखिए कुछ कुछ अपने अपने ऊपर तो निर्भर होती ही है, परिवार के संस्कार और जो परिवार उसके पीछे होता है, माता पिता की जो सीख होती है वो भी बहुत कुछ कारण होती है। ऐसी ही बात आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे के अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं, परवरिश दी जाए, तो बच्चों में स्वतः ही संस्कार और अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। झारखंड की धनबाद की रहने वाली ऐसी ही दो सगी बहनें हैं, प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल, जिन्होंने अपने घर से मिले संस्कारों की खुशबू पूरी दुनिया में बिखेर दी। जी हाँ, इन दोनों बहनों ने अभी हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का ऑनलाइन सस्वर पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
0: जी, और क्योंकि देखिए अभी हम रक्षाबंधन का त्यौहार अभी मनाया है और आने वाला जो ये सप्ताह है इसमें जन्माष्टमी मनाया जाएगा, तो अभी गीता की चर्चा के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वैश्विक ऑनलाइन गीता का ये ऐतिहासिक ऑनलाइन कार्यक्रम जो है सेंट्रल चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसके दुनिया भर में बहुत सारे प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें ये दोनों बहनें शामिल थी। उत्कृष्ट और सटीक पाठ के लिए गिनीज बुक की ओर से दोनों बहनों को आधिकारिक प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
1: बिल्कुल। और प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल की असाधारण सफलता के पीछे उनके माता पिता की अनूठी परवरिश और घर का आध्यात्मिक माहौल है। उनके घर में पिछले 6 वर्षों से लगातार गीता पाठ और आध्यात्मिक प्रवचन होते रहते थे, जिससे दोनों बहनों ने इन कठिन श्लोकों को खेल खेल में ही आत्मसात कर लिया। फिर माता पिता के मार्गदर्शन से दोनों बहनों ने कठिन अभ्यास किया और इसी का परिणाम था कि उन्होंने शब्दों की पूर्ण शुद्धता और सटीक उच्चारण के साथ महज 5 मिनट में गीता के 15वें अध्याय का पाठ शुरू कर लिया।

0: गोपाल कृष्ण फिल्म से भी आपने सुना हेमलता को, और दिल्ली जिसकी फिजाओं में हमेशा साहित्य और कला रची बसी रही है, एक बार फिर उसे महसूस करने का अवसर मिलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली में रचनात्मकता का एक नया उत्सव शुरू होने जा रहा है, दिल्ली कंटेम्प्रेरी आर्ट वीक। इंडिया गेट के पास स्थित ऐतिहासिक बीकानेर हाउस में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला ये आर्ट वीक दिल्ली और दक्षिण एशियाई समकालीन कला को बढ़ावा देने वाला सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक है।
1: और इस आयोजन में दिल्ली की 6 प्रमुख जो महिलाओं द्वारा संचालित आर्ट गैलरी है वो एक साथ मिलकर समकालीन कला शैलियों का प्रदर्शन कर रही हैं। और जो इस साल की प्रदर्शनियों में जलवायु, पर्यावरण, पहचान, स्मृतियों और विस्थापन जैसे गंभीर विषयों को मूर्तियों, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी के जरिए उकेरा जाएगा। और इस पर 2 विशेष क्यूरेटेड प्रदर्शनियां भी शामिल हो रही हैं, यानी वो प्रदर्शनी जो विशेषज्ञ द्वारा एक खास थीम, कहानी या विचार के आधार पर तैयार की जाती हैं। और सुनने वालों को बता दें कि इसके अलावा इस इवेंट के दौरान यहाँ आर्ट लवर्स के लिए क्यूरेटेड वॉक थ्रू कार्यशालाएँ और विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो अगर आप इस कला की अनूठी दुनिया को करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए हम बता दें कि एंट्री बिल्कुल फ्री है, यानी आपको कोई टिकट नहीं लेना है। लेकिन यदि आप आर्ट एक्सपर्ट्स

0: के साथ पूरी प्रदर्शनी को समझने के लिए पब्लिक वॉक थ्रू में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और समय भी रश्मि जी एक बार बता
1: जी
0: देते हैं हम
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं को, समय है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ जाकर कला की इस दुनिया का अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए।

0: आशा भोसले और रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बम्बई का बाबू। और हमने प्रश्न पूछा था रेनू, सफलता का मूल मंत्र क्या है, और हमारी जो मेल थी वो थी fmgold@gmail.com। जी, और एक और मेल आ गई है हमारे पास। तो कामायनी हमें कह रही है कि मेरे विचार से सफलता का मूल मंत्र है खुद पर भरोसा रखना। कई बार आप अपने पर भरोसा ही खो देते हैं, लेकिन आपका भरोसा ही आपको सफल बनाता है। और इसके अलावा भी मेरे पास मेल्स आ गई हैं, और ये बता रही हैं सुरभि, वो कह रही हैं कि भाई सफलता का मूल मंत्र जो है वो है कि नतीजे की चिंता मत कीजिए, सफलता एक दिन खुद आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। ये तो वही बात हो गई, हमने अभी गीता की बात की थी
1: बिल्कुल,
0: कि
1: नीति शास्त्र में कहते हैं कि सफलता का कोई जो है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आप
0: जी
1: उसको
0: गीता
1: आकलन
0: कहती है
1: करते हैं।
0: कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे साथ राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से, वो कह रहे हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना उसका सबसे

0: आसान रास्ता है। तो आप भी जल्दी से अपना मोबाइल खोलिए और मेल कर दीजिए हमें, सफलता के बारे में अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी बिल्कुल। और बात करते हैं अब कार्यक्रम में आगे केरलम के सबसे अनोखे प्रसिद्ध मंदिर मन्नारशाला की।
0: जी
1: मन्नारशाला नाग मंदिर, ये स्थान अपनी सदियों पुरानी परंपराओं, घने जंगलों

0: घना जंगल है ना, उसके रास्तों पर नाग देवताओं की 30,000 से अधिक पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भारत में सर्प मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पूजा पाठ का सारा काम जो है वो पुरुष पुजारी नहीं करते, बल्कि एक महिलाएं संभालती हैं और उन्हें भक्त आदर से मन्नार शाला अम्मा कहते हैं। और परिवार की जो सबसे बड़ी बहू होती है ना, वही बनती है यहाँ की मुख्य पुजारी। और ये पवित्र स्थान जो है वो कहते हैं अगर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगनी हो और अनूठी परंपराओं के कारण जो भक्त हैं उनके बीच में गहरी आस्था का ये केंद्र है।
1: बिल्कुल। और अक्टूबर नवंबर यानी मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो तुलाम महीने के आइलम नक्षत्र पर यहाँ सबसे बड़ा और भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा कन्नी महीने यानी सितंबर अक्टूबर की आइलम जो नागराज का जन्मोत्सव माना जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन नागराज और नाग यक्षी की मूर्तियों को एक भव्य सांस्कृतिक जुलूस में मंदिर के पुश्तैनी घर ले जाया जाता है जिसका नेतृत्व करती है मन्नारशाला अम्मा। सांस्कृतिक रूप से मन्नारशाला केरल की प्राचीनतम सर्प काफू यानी कि सर्प उपवन परंपरा का प्रतीक है। और ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति घने जंगलों और जीवों विशेषकर सांपों की रक्षा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो आप जब भी केरल की यात्रा की योजना बनाइए तो केरलम के इस

0: में भारत के में जो है 15 से अधिक राज्यों से बहुत सारे बैंड और 150 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही इंडोनेशिया, मिस्र और नेपाल और यूके जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे।
1: इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत की विविधता को वैश्विक मंच पर लाना और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमोटर्स और फेस्टिवल बुकर्स से जोड़ना है। इसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक आदिवासी लोक संगीत से लेकर समकालीन स्वतंत्र संगीत की उन अनसुनी आवाज़ों को सामने लाना है जो मुख्य धारा से दूर हैं।
0: और यहाँ पर जो होगा विशेष लाइव प्रस्तुतियाँ होंगी, पैनल चर्चाएं होंगी, नेटवर्किंग सत्र होंगे और ग्लोबल म्यूजिक डेलीगेट्स के साथ बिजनेस मैच मेकिंग जैसी गतिविधियां भी होती हैं। इस बार की जो थीम है ना रेनू, वो है जॉय ऑफ डिस्कवरी, और इस थीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संगीत प्रेमियों और वैश्विक इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ नया और अनूठा खोजना है। तो दोस्तों, अगर आप भी संगीत की दुनिया की गहराइयों को समझना चाहते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत का आनंद लेना चाहते हैं एक ही जगह, तो भाई जाइए डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और इसका भरपूर आनंद लीजिए। और यहाँ पे प्रवेश पूरी तरह से फ्री है, और यहाँ जाने के लिए आपको कोई टिकट भी नहीं खरीदना है, लेकिन भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। और यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ और सुनते रहिए मधुर संगीत और उसका आनंद लेते रहिए।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और बात संगीत की हो ही रही है तो संगीत की दुनिया की साउंडस्केप ऑफ इंडिया, यह है म्यूजिक शोकेस का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो इन दिनों चल रहा है नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और आज है उसका आखिरी दिन।
1: और भाई संगीत के इस महा

0: ये मीठा सा गीत सुना आपने। फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें, और आवाज़ सुमन और मुकेश की। और लक्ष्मी जी, वैसे तो समय अब हमारी समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का, लेकिन फिर भी एक मेल ले लेते हैं। ये मेल है इदरीस सैफी जी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और लिख रहे हैं ये कि आत्मविश्वास, मेहनत और कोशिश, यही है सफलता का मूल मंत्र
1: जी
0: इनके
1: बिल्कुल।
0: अनुसार।
1: और साथ में हम तो ये कहेंगे गिर कर उठना सीखिए, क्योंकि असफलता भी सफलता की तो तैयारी ही करवाती है। मेहनत के साथ धैर्य बनाए रखिए, और बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और याद रखिए, सफलता का मंत्र है सीखते रहो, बदलते रहो और रुकना मत। और लेकिन हमें रुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि समय हो रहा है, घड़ी हमें कह रही है विदा लेने का।
0: बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन भी सफलता की एक मूल मंत्र उसमें से है, कि अनुशासन का जीवन में बिल्कुल पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासन रहता है तो ही आप समय पर हर चीज़ करते हैं, और वो ही आपके सफलता का कारण होता है। लेकिन इसी को अजमाते हुए हम भी अब घड़ी के
1: विदा
0: चार
1: लेते
0: का
1: हैं
0: सब
1: जी, और समेटते हैं ये कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन।
0: तो मुझे यानी रेनू को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति, हमारा दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार

0: समझना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: indigenously designed and constructed, Nippon is a purpose-built platform designed to support a wide spectrum of diving and underwater operations. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, said amid a period of strategic churn, Nippon is going to be a powerful addition to the Navy's specialized underwater capabilities required for multi-domain deepwater operations at sea.
1: It is my proud privilege to be here for the commissioning of India's second indigenously designed and built diving support vessel, INS Nippon. As a fighting navy, I hardly need to state that combat readiness is our foremost responsibility and highest priority. Induction of this capability today is an opportunity for us to reflect upon our unifying purpose to build and maintain robust operational and combat capability that safeguards India's security and maritime interests at all times and at all places.
0: In Nepal, the death toll from last week's devastating floods and mudslides has risen to 903, while more than 4,247 people remain untraceable. Bodies have been recovered from all 8 affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for the missing and rescue those stranded. Meanwhile, at least 933 workers are believed to be trapped at around half a dozen hydropower projects. Rescue teams backed by India and other experts are searching around the hydropower tunnels, including Trishuli 3A. In Tibet, the death toll currently stands at 16, with 546 reported to be missing. Following the severe flooding in Nepal and heavy rainfall in catchment areas, water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. However, the water levels and discharge from both rivers have declined over the past 24 hours. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex declined 271 points to 76,993, while the Nifty lost 110 points to 24,066 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार. प्रोग्राम है एक ही फिल्म से. प्रोग्राम शुरू करो उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
3: दी, ये देख कैसे.
4: हैप्पी बर्थडे भाई.
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग.
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: Saving करने की भी यही उम्र है.
6: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
3: I know na.
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो financially smart.
2: आज के हमारे इस खास फिल्मी सफर में हम चलेंगे एक ऐसी ही जादुई शहर की गलियों में जहाँ हर रात किसी कहानी का इंतजार करती है और हर धड़कन किसी अपने की तलाश में है. जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2007 की उस फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा में एक बिल्कुल अलग रंग और संसार रचा. एक ऐसी फिल्म जिसमें दो नए चेहरों को हिंदी सिनेमा से परिचित करवाया, वो थे रणवीर कपूर और सोनम कपूर. अब इन दोनों पर्दों को जो कलाकार थे, इन दोनों को पर्दे पर पहली बार जो लेकर आए थे वो ऐसे फिल्मकार जिनकी फिल्मों में कहानी जितनी होती है उतनी खूबसूरत भरा हुआ संगीत और रंग भी होते हैं. शायद अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा और अगर अभी तक थोड़ी सी भी आशंका है तो इस गीत को सुनने के बाद हमेशा की तरह आप अंदाजा लगा ही लेंगे. सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने जवाब आपको भेजना है मेल पर और वो मेल का पता है iprradiodelhi@gmail.com. अब इन सब के बीच में अपना नाम बताना कैसे भूल सकती हूँ. तो आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे. आप सभी का अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में.

2007 की दिवाली तो आपको याद ही होगी, है ना? एक तरफ थी शाहरुख खान की ओम शांति ओम और दूसरी तरफ थी भंसाली जी की नीले और हरे रंग में सजी ये जादुई दुनिया सांवरिया। ये फिल्म रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की की मशहूर छोटी कहानी व्हाइट नाइट पर आधारित है। 9 नवंबर 2007 को संजय लीला भंसाली की एक खूबसूरत सी फिल्म रिलीज हुई जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे रणवीर कपूर, सोनम कपूर। इन दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। इसके साथ ही स्पेशल अपीयरेंस थी सलमान खान और रानी मुखर्जी। संगीत बहुत ही शानदार संगीत था, हर गाना इस फिल्म का सुपरहिट रहा और वो दिया था

मोंटी शर्मा ने। बैकग्राउंड जो कलर थीम थी फिल्म की, वो सबसे बड़ी इसकी खासियत थी। इसका सेट इतना खूबसूरत था जिसमें नीले, हरे और काले रंगों की शेड्स एक सपने जैसा लुक महसूस कराते थे। फिल्म की कहानी भी उतनी ही शानदार थी। फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

इन युवा कलाकारों के साथ इस फिल्म में जोरा सहगल और कई अनुभवी कलाकार भी नजर आए। सावरिया की कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया, व्हाइट नाइट एक रूसी लेखक की जो कहानी थी उससे प्रेरित थी, और इस कहानी की जड़ें भारतीय सिनेमा से बाहर की साहित्यिक दुनिया तक जाती हैं। लेकिन भंसाली जी ने उसे अपने खास सिनेमाई अंदाज में एक सपनों जैसे भारतीय संसार में ढाल दिया था, और इस फिल्म का सबसे खास पहलू था इसका संसार। एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसकी गलियां, रोशनी, पुल, इमारतें और रात का नीला आसमान फिल्म को एक परी कथा जैसा रूप देता है। यही वो दुनिया है जहां एक दिन एक बेफिकर मस्त मौला नौजवान आता है, रणवीर। जो किरदार था इनका वो रणवीर राज था। वो गाता है, मुस्कुराता है और ज़िंदगी को अपनी धुन पर जीता है। लेकिन इसी शहर में उसकी मुलाकात होती है सकीना से, जिसका किरदार निभाया सोनम कपूर ने। सकीना के दिल में किसी और का इंतज़ार है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार है, इंतज़ार है, उम्मीद है और थोड़ा सा दर्द भी है। रणवीर राज अपनी पहली नज़र में सकीना की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन सकीना का दिल पहले से ही किसी और के नाम है। वो हर रात अपने उस प्यार का इंतज़ार करती है, और शायद वो प्यार उसका वापस आ जाए, शायद प्यार उसका वापस ना आए, इसी कश्मकश में वो रहती है। और रणवीर राज जानता है कि सकीना के दिल में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके करीब रहता है। और इसके बाद क्या होता है पूरी बात हम नहीं बताएंगे, आपको फिल्म देखनी है। वैसे अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको आगे की कहानी भी पता होगी, और अगर नहीं देखी तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकाल कर इस फिल्म को भी अपने देखने वाली लिस्ट में शामिल कर लीजिए। नाम है सावरिया।

सांवरिया भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे हॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित और रिलीज किया गया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की दो बेहद सीनियर अभिनेत्रियों जोहरा सहगल और बेगम पारा के जीवन की आखिरी फिल्म भी साइन हुई थी। फिल्म में एक सीन में रणवीर कपूर को कुर्सी के पीछे की तरफ गिरना था। इस परफेक्ट शॉट को पाने के लिए भंसाली जी ने रणवीर से करीब 70 से ज्यादा रीटेक करवाए थे और इस दौरान रणवीर जी की पीठ में भी गंभीर दर्द शुरू हो गया था, लेकिन भंसाली जी कहां मानने वाले थे। जब तक उन्हें अपना मनपसंद शॉट नहीं मिल जाता था वो इसी तरीके से रीटेक करते थे। और जैसी तस्वीर दिखने वाली एक नीली हरी दुनिया फिल्म की जो थी वो सबसे बड़ी इस फिल्म की खासियत थी। और जानते हैं ये जो सिनेमेटोग्राफी और जो कलर जो पैलेट था ये ब्लू ग्रीन ब्लैक शेड्स इन सबसे शूट किया गया था और भंसाली जी ने करजत के एनडी स्टूडियो में एक काल्पनिक और जादुई शहर का विशाल सेट तैयार करवाया था जिसमें झरने थे, नदियां थीं, पुल शामिल थे ताकि हर फ्रेम एक चलती फिरती पेंटिंग जैसा दिखे। तो वैसे भी कहते हैं कि जो नीला रंग होता है और हरा रंग जो होता है वो प्रेम के देवता कृष्ण और कामदेव का प्रतीक माना जाता है और यही सब दिखाने की कोशिश संजय लीला भंसाली जी ने भी अपनी फिल्म सांवरिया में की थी।

परी जैसी दिखने वाली सोनम कपूर का जो किरदार था इस फिल्म में, जानते हैं इससे पहले, इस फिल्म में आने से पहले उनका वजन था 80 किलो। भंसाली जी के कहने पर उन्होंने कड़ी मेहनत करी और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लगभग 35 किलो उन्होंने अपना वजन घटाया। भंसाली जी को अपने जो ये दोनों हीरे थे उनको उन्होंने छुपा कर रखा। सोनम और रणवीर इन दोनों को एक सख्त हिदायत दी थी, वो किसी भी सार्वजनिक इवेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि भंसाली जी चाहते थे कि दर्शक उन्हें सीधे सिनेमा घर में ही देखे। सलमान और ऋषि कपूर की मौजूदगी भी इस फिल्म में एक चार चांद लगाने का दोनों ने काम किया था। साथ ही रानी मुखर्जी का जो कैमियो रोल था उसके साथ साथ ऋषि रणवीर कपूर जी के जो पिता थे और ऋषि कपूर जो थे उनकी भी जो मौजूदगी थी उसको भी शुरुआत में पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये गाना है जब से तेरे नैना मेरे नैनों से, इस गीत को गाया था शान ने। शान जब इस गीत को गा रहे थे तो उनको थोड़ी सी झिझक थी, थोड़ी सी उनको एक नर्वसनेस थी, घबराहट थी, क्योंकि वो ये गाना नहीं गाना चाह रहे थे। ये गाना बहुत ही शांत और सूफी मिजाज का था, लेकिन भंसाली जी के भरोसे ने इस गाने को अमर बना दिया। उन्होंने भंसाली जी ने उनको हौसला दिया और उन्होंने कहा कि ये गाना सिर्फ तुम ही गाओगे। शान ने भी अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो इस गाने में दी और उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत और आपके ढेर सारे

तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल बिमला अनेजा जी हमें सुन रहे हैं। नीतीश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, छपलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मुकेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसर जी प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से जुड़े हुए हैं ढेर सारी जानकारी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरा मणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमें सुन रहे हैं। मुकेश कासलेकर तहसील बरून, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। अगला संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी का आया हुआ है। ये संदेश हमारे पास जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, दिशानी और निमित का है। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी हमें सुन रहे हैं। और देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार जी, डोंडी, लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। वलीउल्ला अंसारी, खतीजा बेगम हमारे साथ मुस्तफाबाद दिल्ली से जुड़े हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। ऊपरकोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। और ये संदेश डीवी राणा जी का नेहरू विहार दिल्ली से आया। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिची टॉमस, पिंकी लवली जी हमें सुन रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गॉड जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। भवनपुर बसना से चंपा देवानगन, राधेश्याम, जगदीश जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी के साथ जलालाबाद, जालंधर पंजाब से हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा, ईशान हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। नलवेश नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्वला, विशाल जी हमारे साथ हैं। मुरादाबाद गांव धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफ़र में, हमारे हम सफ़र बनने के लिए। फिलहाल ये गीत आप सुन रहे हैं इसी फिल्म का।

की कहानी शायद इसी एहसास की कहानी है। रणवीर कपूर की पहली फिल्म, सोनम कपूर की पहली फिल्म, संजय लीला भंसाली का एक अलग सिनेमाई प्रयोग और मोंटी शर्मा के संगीत से सजी एक स्वप्निल दुनिया। तो फिर आपसे मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ और कुछ अनसुने फिल्मी किस्सों के साथ। फिलहाल जाते जाते यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपकी लिस्ट में ये फिल्म शामिल नहीं है तो वक्त निकालकर जरूर देखिएगा। फिलहाल अपने अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए 3 बजे मैचिनी मेलोडीज में एक बार फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले 2:30 पर प्रोग्राम एक कलाकार लेकर हाजिर होंगी, प्रीति त्यागी। नमस्कार।

0: ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
1: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थी ने उन्हां दीआं कुछ कवितावां दीआं सत्रां भी सुनाईआं जो उन्हां लई इक बहुत ही खास अनुभव सी। निस्तार श्रेणी के दूजे डाइविंग स्पोर्ट समुद्री जहाज INS निपुण अज मुंबई च जल सेना के बेड़े विच शामिल किया गया। इस मौके बोलदिआं समुद्री फौज के मुखी एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण जल सेना के पानी हेठ विशेष कार्यों में महत्वपूर्ण साबित होगा। INS निपुण जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम वालों स्वदेशी तौर पर डिजाइन से तैयार किया गया, विशेष तौर पर डूंघे समुद्र विच गोताखोरी ते गुंझलदार कार्यों लई तैयार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कपड़ा के सिले सिलाई वस्त्र न सिर्फ भारत की सभ्याचारक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सगों लखां लोगों को रोजगार और रोजी रोटी भी प्रदान करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी NIFT की कन्वोकेशन को संबोधन करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को देश की अमीर सभ्याचारक विरासत और कदर कीमतों से जुड़े रहते हुए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाने का सद्दा दिया। फैशन उद्योग में औरतों की वधदी भूमिका बारे राष्ट्रपति ने कहा कि समागम में शामिल होने वाले लगभग 4000 विद्यार्थियों में लगभग 25% महिलाओं ने।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: उन्होंने कहा कि फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की विश्वव्यापी मौजूदगी वधाने लई अथाह संभावनावां ने। नौजवानों 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान पाने का सद्दा दिंदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को सिर्फ नौकरी लभण वाले नहीं सगों रोजगार पैदा करने वाले बनन ते दूजे लई रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 दहाकों दौरान NIFT के विद्यार्थियों ते पेशेवरों ने राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते महत्वपूर्ण प्राप्तियां हासिल कीतियां ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਡਲ ਹੈ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਖੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 903 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4247 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। नेपाल विच 5 तो वध पण बिजली प्रोजेक्टां नाल जुड़े स्थानां ते 900 तो वध मजदूरां दे फसे होण दा खदशा है। भारत ते होर देशां दे माहरां दी सहायता नाल बचाव टीमां त्रिशूली 3A समेत कई पण बिजली प्रोजेक्टां नाल जुड़ियां सुरंगां दीआं भौल कर रहीआं ने। उधर तिब्बत विच मरन वालिआं दी गिणती 16 हो गई है जदों कि 546 लोक लापता ने। ਭਾਰਤੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਚਿਲੀਮੇ ਤੇ ਲਾਂਗਟਾਂਗ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਸਿਆ। ਲਗਭਗ 21,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗੰਡਕ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਗੇਟ ਅਤੇ ਬੀਰਪੁਰ ਬੈਰਾਜ ਦੇ 56 ਵਿਚੋਂ 25 ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲੇ ਇੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ MM ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि वित्त मंत्री ने अमरीका के उत्तरी कैरोलिना विच हुई G20 वित्त मंत्रियों ते केंद्रीय बैंकां दे गवर्नरां दी मीटिंग तों इलावा 3M दे चेयरमैन अते सीईओ विलियम ब्राउन नाल गलबात कीती। सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन टेनिस टूरनामेंट के पहले गेड़ विच बाहर हो गए ने। अर्जेंटीना के मारियानो नोवेन ने जोकोविच नूं 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 नाल हराया। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी विच अज बंगलादेश का मुकाबला इंडोनेशिया नाल होएगा। यह मैच दुबई च भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होएगा। भारत ने कल टूरनामेंट विच अपनी मुहिम की शुरूआत थाईलैंड नूं 94 दौड़ां नाल हरा के कीती। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक विच शंघाई सहयोग संगठन के मैंबर देशों के नेतावां नाल दुवलियां मीटिंगां करनगे। निस्तार श्रेणी के दूजे डाइविंग स्पोर्ट जहाज INS निपुण अज मुंबई विच समुद्री कौल के बेड़े विच शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विद्यार्थियों सिर्फ नौकरी लभण वाले नहीं सगों रोजगार पैदा करने वाले बनना चाहिए है। नेपाल विच हड़ां कारण मौत वाले की गिनती 900 नूं पार कर गई है। 4,247 तो वध लोग हालां भी लापता ने। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे। साडा अगला प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 ते होगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सतून को नोटिफाई किया है। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC Under-20 एशिया कप क्वालिफाई मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की। इस मौके पर योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत के साथ काम करने वाले 4 वफ्द मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये लाखों अफराद के गुजर बसर का जरिया भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFTA के जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत और एक अकदार से मरबूत रहने के साथ साथ एक आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। फैशन सनत में खवातीन के उभरते रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में से 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: विकसित भारत 2047 के नजरिए में ताउन की खातिर नौजवानों पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा

0: कि तलबा महज नौकरी तलाश करने वाले न बने रहें, बल्कि वो नौकरी फराहम करने वाले और दीगर के लिए रोजगार के मौके कायम करने वाले बने। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 4 दहाई में NIFT के तलबा और पेशावर अफराद ने कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर अहम हुसूलियाँ भी हासिल की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया एक ऐसे सरकर्दा मुंतजिम और स्कॉलर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपने पुख्ता अज़्म और दहाइयों पर मबनी अपनी अवामी जिंदगी में आइनी अकदार को तरजीह दी। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी मीरास रहनुमाओं को तरगीब देती रहेगी। हुकूमत ने आज 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई किया है ताकि मुल्क में चिप मैन्युफैक्चरिंग के इको निज़ाम को फ़रोग दिया जा सके। इसके साथ ही आइंदा बरसों में भारत आलमी सेमीकंडक्टर सनत के बाजार का तकरीबन 10% हो सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के सभी 6 सुतूनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में पुख्ता तौर पर शामिल करने पर है। उन्होंने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के मुतालिका फरीकों के दरमियान ये एतमाद है कि भारत आइंदा दहाइयों में अहम सरमायाकारी के लिए एक सही और मुनासिब मकाम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार जुमरे के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि हिकमत अमली की तब्दीलियों के इस दौर में निपुण जेरे आप खसूसी सलाहियतों में एक ज़बरदस्त इजाफा होगा जो गहरे पानी में कसीर रुखी कार्रवाइयों के लिए दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि निपुण से गोताखोरी और जेरे आप बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने निपुण मुल्क में ही डिज़ाइन और तैयार किया है। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है जबकि 4,247 अफराद से ज़्यादा का अब भी अता पता नहीं है। नेपाल की कुदरती आफात के खतरे को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी के मुताबिक इतवार को 2,502 की तादाद से अब यह तादाद बढ़ गई है। नेपाल के सभी 8 अजला से लाशें बरामद कर ली गई हैं और बचाव कारकुन लापता और फंसे हुए लोगों की तलाश की खातिर कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान तकरीबन 1 दर्जन पनबिजली प्रोजेक्टों में कम अज़ कम 933 वर्करों के फंसे होने का अंदेशा है। भारत की बचाव टीमें और दीगर माहिरीन पनबिजली प्रोजेक्टों की मलबे से बंद हुई सुरंगों के आसपास तलाशी की कार्रवाई कर रहे हैं। महकमे मौसमियात IMD आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के मशरकी हिस्सों में मौसमियाती तब्दीली का बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ इलाकों में डैम के गेट्स को खोलना पड़ा जबकि सैलाब की सूरत हाल के सबब कई इलाके मुश्किल हालात से दो चार हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मशरकी मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश के सबब दरियाओं और डैम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जिसके सबब कई इलाके मुश्किलात से दो चार हैं। शाहडोल में बाणसागर डैम में पानी की सतह बढ़ने की वजह से उसके गेट्स कुछ देर के लिए खोलने पड़े। चित्रकूट में मंदाकिनी दरिया में पानी की सतह तकरीबन 30 फुट बढ़ गई है। गोरगी डैम टूटने के सबब कई इलाकों में पानी भर गया जबकि पानी के तेज बहाव से रामघाट के बड़े पुल को नुकसान पहुंचा। वजीर आला मोहन यादव ने कल चित्रकूट का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और राहत कैंप में लोगों का हाल जाना। महकमा मौसमियात ने आज रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। न्यूज टेक्स्ट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: फुटबॉल में भारत के मर्दों की 20 साल तक की उम्र की कौमी टीम आज ताशकंद के दोस्त लेक स्टेडियम में मुल्क शाम

0: के खिलाफ चीन के AFC अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स मुहिम का आगाज करेगी। भारत को ग्रुप बी में मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारतीय टीम का मकसद 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी करना है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुक्ते नजर इख्तियार करें। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सुतून नोटिफाई किया है। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफायर मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing. And in football, India is set to begin AFC Under 20 Asian Cup qualifying campaign against Syria in Tashkent today. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his two-day visit to Kyrgyzstan. Four delegations working with India in various fields were present on the occasion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi today had a warm interaction with members of the Indian community in Bishkek. PM appreciated their energy, enthusiasm and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and Kyrgyz Republic. During his visit to Kyrgyzstan, Shri Modi paid floral tribute at the Mahatma Gandhi Memorial in Bishkek. The tribute reflected the enduring relevance of Gandhiji's ideals and their universal appeal. Prime Minister will also hold bilateral meetings today with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, he will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.

0: Nagar Barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur Barrage at Kosi have been opened. In football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dost Lake Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside hosts Uzbekistan and Bangladesh, India enter the qualifiers with the objective of returning to the AFC Under-20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है जब आप 80 साल

0: मना रहे हैं, तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4,000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की

0: रहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
0: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी

0: ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 1117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कला एक ही कलाकार हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और आज हम बॉलीवुड से ही एक ऐसे कलाकार को चुनकर लाए हैं। वैसे बॉलीवुड के बारे में हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड में कुछ चेहरे जो होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो कि खूबसूरत भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं और साथ ही साथ अपनी शर्तों पर, पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं जो कि फौजी परिवार से आई। मिस इंडिया का ताज उन्होंने अपने सर पर सजाया और फिर बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सपोर्ट के, बॉलीवुड के हर बने बनाए दस्तूर को तोड़ती हुई वो ऊंचाई पर जा बैठी और अपने काम को लेकर इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड कि चाहे वो 8 मंथ प्रेगनेंसी में भी पुलिस की वर्दी को पहनकर एक्शन सीन करने का उनका जुनून हो, अपनी एक्टिंग को लेकर कुछ भी आप कहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की अल्टीमेट बॉस बेब नेहा धूपिया को। तो थाम लीजिए अपने दिल की धड़कने, क्योंकि आज के सफ़र में हम बात करने वाले हैं नेहा धूपिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के साथ।
2: पाँ, पाँ, पाँ, पाँ, पाँ, पाँ, पाँ, पाँ, पाँ,

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार से और आज हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया के बारे में। नेहा धूपिया, जिनका जन्म हुआ कोची में एक सिख परिवार में, उनके पिता भारतीय नौसेना में एक कमांडर थे और फौज से वो जुड़ी हुई थी। उनका परिवार इधर उधर हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था, जिस वजह से नेहा की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो अलग अलग शहरों में हुई और आखिरकार उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका जो रुझान है वो शुरुआत से एक्टिंग की तरफ था और वो ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ना चाहती थी, वहाँ जाना चाहती थी और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के मशहूर प्ले यूटोपिया से। उसके बाद उन्होंने इंडी पॉप बैंड यूफोरिया के आइकॉनिक गाना, आपने सुना होगा, मुसाफिर के म्यूज़िक वीडियो से उन्होंने अपनी पहली ऑन स्क्रीन छाप छोड़ी और यहाँ से आ गई वो मॉडलिंग की दुनिया में। यहाँ पर जब वो मॉडलिंग में आई तो आगे बढ़ती गई और 2002 में नेहा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती और अपनी हाजिर जवाबी की वजह से मिस इंडिया यूनिवर्स 2002 का ताज अपने नाम किया। और उसी साल उन्होंने प्यूटोरिका में मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी उसमें भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से वो वहाँ पर गई और टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बनाई। मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआत जो है उनकी हो चुकी थी और मिस इंडिया बनने के बाद जब आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाजिर जवाब भी हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जो लाइनें हैं वहाँ आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन नेहा का सपना शुरू से ही था कि वो इस इंडस्ट्री में जाए, फैशन इंडस्ट्री में जाए या फिर एक्टिंग की दुनिया में जाए और यही वजह थी कि मिस इंडिया बनने के बाद उनके लिए दरवाजे खुल गए बॉलीवुड के। उनके आगे के सफ़र के बारे में हम बातें करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत संगीत फिल्म 10 कहानियाँ से। नेहा धूपिया, जिनको 2002 में वो मिस इंडिया बनी और उसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। साल 2003 में वो उनकी फिल्म आई, ये एक थ्रिलर फिल्म थी, कयामत सिटी अंडर थ्रेट। इस फिल्म में नेहा ने अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अरबाज खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और ये वो फिल्म थी जिस फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया। लेकिन वो फिल्म में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इतने बड़े बड़े सितारों के होते हुए भी उनकी तरफ हर किसी का ध्यान गया। यानी कि उनके अंदर वो दम था, वो मादा था कि वो अपने दम पर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हैं। तो लीजिए सुनते हैं कयामत फिल्म से अभिजीत की आवाज़ में ये गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म कयामत से अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म 2003 में आई कयामत, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को, उनकी जो उनका जो टैलेंट था उसको बहुत सराहना मिली। लेकिन असली पहचान और चर्चा बन में आई उनकी फिल्म 2004 की आई फिल्म जूली। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड किरदार निभाया और उस किरदार से पूरे वो जो पूरी फिल्मी दुनिया थी, जो पूरा बॉलीवुड था, वहाँ तहलका मचा। और उस दौर में ऐसा बोल्ड रोल उन्होंने चुना, लेकिन नेहा के इस कदम ने उन्हें रातों रात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। और उसी दौरान बॉलीवुड में उन्होंने बहुत से जो अपने स्टेटमेंट थे वो भी दिए, लेकिन हाँ, इसके बाद वो ज़रूर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। हर किसी की ज़बान पर उनका नाम था, हर जगह चर्चा का जो एक विषय थी वो ये बन गई थी। लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी वो किसी चीज़ से कम नहीं थी, और फिल्म जूली के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे फिल्म शीशा हो, क्या कूल हैं हम, गरम मसाला, और आगे चलकर मिथ्या, और यहाँ तक कि तुम्हारी सुलु जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं करती हैं, बल्कि सीरियस कॉमेडी, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर तरह का किरदार वो एकदम बहुत ही आसानी के साथ निभा लेती हैं। तो लीजिए, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जूली से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में डेब्यू किया। मिस इंडिया से लेकर के हिंदी सिनेमा का जो उनका एक बेबाक और बोल्ड अदाकारा का जो किरदार था वो चल रहा था, जूली फिल्म उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने की थ्रिलर और ड्रामा फिल्म क्या कूल है हम, जिसमें उन्होंने कॉमेडी करके लोगों को बताया कि वो सिर्फ बोल्ड किरदार ही नहीं निभा सकती हैं बल्कि वो कॉमेडी भी कर सकती हैं। इसके अलावा सिंग इज किंग फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉन्डिंग दिखाई और बहुत ही मज़ेदार ये फिल्म रही। और एक वक्त ऐसा आया और जब वो लीक से हटकर किरदार चुनने लगी और इसी दौरान उन्होंने विद्या बालन के साथ की फिल्म तुम्हारी सुलू, इसमें नेहा ने एक रेडियो स्टेशन के हेड मारिया का किरदार निभाया। उनका ये रोल इतना सधा हुआ और एकदम मैच्योर किरदार था कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म तुम्हारी सुलू से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम और कृष्णा देवांगन के साथ। अगला संदेश हमारे पास आया, अजित भाव सर जी ने संदेश भेजा हम तक, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने नेहा जी के बारे में हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले नेहा ने साल 2000 में एक जापानी फिल्म नाटू ओडू निंजा देन सेतु की में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी किरदार निभाया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने अजीत जी, बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। प्रमिला भावसर जी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगला संदेश हम तक पहुंचा है सहारनपुर कुमार हेड़ा से। सैयद मशरू साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये अगला संदेश भेजा है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मन्नू जी का। और अगला संदेश वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर और ईशान के साथ। शिवा गो प्रेम कपिल शिवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से। अगला संदेश

प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी जी का है छत्तीसगढ़ पलारी से। अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। गांव फरा से जिला हिसार से जुड़े हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, अनिल मोहन जी पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं, सुदर्शन मुखी अनीता, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री जी का है, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हैं जफर सदीक शेख, शंकर गुल शर्मा बेरानी वाले, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया है कराची से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं चूड़ी लाइन मुंगेली से, इनके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, और अगला जो संदेश है उसको पहुंचाने वाले हैं फागुराम यादव, इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है संबलपुर कांकेर से, इनके साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिन संदेशों के ज़रिए सभी जो श्रोता हैं वो हम तक जुड़े, और दोस्तों आज यही कहूँगी कि इस कार्यक्रम में आज हमने बात की एक अफसर की बेटी जो कि अपने बुलंद इरादों के साथ मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड का सफ़र उसने बहुत ही बेबाकी के साथ किया और अपनी जगह बनाई इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी सहारे, बिना किसी गॉडफादर के। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप हर मुश्किल, हर किरदार को आसानी से पा सकते हैं, और वो भी अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में ये सफ़र यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाऊंगी आप सभी के लिए खूबसूरत सा प्यारा सा गीत उन्हीं की फिल्म से, और यही कहूंगी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास भी सब लोगों में खुशियां बांटिए। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप जानते ही हैं कि ये समय होता है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़ का, वो प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हम लेकर आते हैं गोल्डन इरा के वो खूबसूरत से सॉन्ग्स जिनको सुनने का दिल बार बार करता है। तो क्यों ना आज भी हम अपने दिल की सुने और चले उसी दौर में जब वो गीत सीधे दिल में बसते थे। और आज भी अगर हम बात करते हैं तो वो दिल के कोने में खूबसूरती की तरह सजे हुए हैं। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ और फिर होंगी ढेर सारी बातें।

हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर उस समय। फिल्में आज की तरह आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कैमरा और कंप्यूटर ग्राफिक्स के सहारे नहीं बनती थी। सीमित साधनों के बावजूद कहानी, अभिनय और संगीत, भावनाओं पर इतना ध्यान दिया जाता था कि फिल्में आज भी याद की जाती हैं। फिल्म की जो कहानी होती थी, वो पटकथा, उसका बहुत महत्व होता था। लेखक, संवाद लेखक, निर्देशक, ये सब मिलकर कहानी, दृश्य, संवाद तैयार करते थे। सामाजिक समस्याएं, रिश्ते, गरीबी, अमीरी, प्रेम, त्याग और मानवीय संवेदनाएं फिल्मों के मुख्य विषय होते थे। देखा ना कितना समय बदल गया। उस समय को अगर हम देखें तो एक सादगी थी, लेकिन सादगी में भी इतनी ज़्यादा कला उभर कर आती थी कि शायद आज की जो बड़ी बड़ी टेक्निक है वो भी उस खूबसूरत से पल को वापस नहीं ला सकती। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म टैक्सी ड्राइवर से।

0: कीजिए।
1: उस दौर में आज के डिजिटल कैमरों की जगह फिल्म कैमरों में रील लगाकर शूटिंग की जाती थी। फिल्म रोस्टॉक महंगा होता था, इसीलिए हर दृश्य को कई कई बार शूट करना आसान नहीं था। कलाकारों और तकनीकी टीम को पहले से ही अच्छी तैयारी करनी पड़ती थी और उसके बाद ही सीन शूट किए जाते थे। घर, हवेली, रेलवे स्टेशन, बाजार या अदालत जैसे जो स्थान होते थे उनको स्टूडियो में ही सेट बनाकर तैयार किया जाता था। आउटडोर शूटिंग भी होती थी लेकिन आज की तुलना में काफ़ी सीमित होती थी, क्योंकि आउटडोर जो शूटिंग है वो भी कॉस्टली पड़ती थी।

हमारे साथ तेलंगाना निजामाबाद से शिकल्ला बख्श बेगम राबिया शेख शेख रही मुन्ना जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश तंगोरी मोहाली पंजाब से आया है और गुरप्रीत तंगोरी, जसवीर कौर, महिकप्रीत और सहिजप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर कोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धबासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। वीरंगाव गुजरात से अजीत भापसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि मैचिनी मेलोडीज में फिल्म टैक्सी ड्राइवर का सॉन्ग और दिल से मिला के दिल शीला रमानी जी पर फिल्म आया है और देवानंद जी की ज़्यादातर फिल्मों में ये क्लब डांसर रहती थी। ओल्ड इज़ गोल्ड, बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड ही है। जितने भी गीत हम सुनते हैं एक अलग ही कशिश वही महसूस होती है जब ये फिल्में रिलीज हुई थी। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी हमारे जो दोस्त हैं, जो अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, सफ़र में हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं, तो मेल के ज़रिए हम तक अपने संदेश पहुँचा सकते हैं। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। अगला जो गीत हमने लिया है फिल्म सुजाता से आशा भोसले की आवाज़ में।

0: जी हाँ, इसी तरीके के गीत जो आज भी कभी कोई फंक्शन होता है अगर जन्मदिन का, तो ये गीत तो अक्सर बजी जाता है। और उस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि आउटडोर शूटिंग की जगह इंडोर शूटिंग का ज़्यादा महत्व था, और जितने भी जो भी सीन फिल्माए जाते थे, चाहे वो कोई हवेली हो, चाहे घर हो, रेलवे स्टेशन हो, मार्केट हो, अदालत हो, इन सबको स्टूडियो में ही इनके सेट बनाते थे। उस समय गीतों की रिकॉर्डिंग में गायक, संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार अक्सर एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे। गलती होने पर कई बार पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ती थी। कितना अंतर आ गया है अगर आप देखें। आज रेडीमेड संगीत होता है, बस गायक को अपनी आवाज़ उसमें फिट करनी पड़ती है, लेकिन उस वक्त लाइव होता था, और अगर किसी के साथ भी थोड़ी सी मिस्टेक होती थी तो फिर से पूरी नए सिरे से रिकॉर्डिंग की जाती थी। और यही वजह थी कि उस दौर के संगीत में ऑर्केस्ट्रा, लाइव वाद्य यंत्र और गायकी की बारीकियों का खास महत्व दिखाई देता था।
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं, और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो?

मनाडी को आप सुन रहे थे फिल्म भूत बंगला में। उस वक्त फिल्म जो होती थी वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती थी बल्कि समाज और इंसानी जिंदगी का आईना भी होती थी। कहानी जो होती थी फिल्म की वो उसका जो मेन हिस्सा था वो होता था संगीत। गीत सिर्फ बीच में डालने के लिए नहीं होते थे, वे कहानी को आगे बढ़ाते थे, किरदारों की भावनाएं बताते थे और फिल्म की पहचान बन जाते थे। शंकर जयकिशन, एसडी वर्मा, नौशाद, ओपी नैयर और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने उस दौर को अमर बना दिया। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसे कलाकारों की जो अदाकारी थी, उनके जो संवाद बोलने का तरीका था, चेहरे के जो हाव भाव थे और आवाज़, इन सब का भी बहुत अलग ही महत्व था।

छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलते चलते हम आपको बताते हैं कि उस वक्त तकनीक कम थी, कल्पना ज़्यादा थी, विशेष प्रभाव आज जितने आसान नहीं थे, इसीलिए निर्देशक, कैमरा एंगल, रोशनी, सेट, धुआं, प्रॉप्स, एडिटिंग और कलाकारों की अदाकारी से ही इफेक्ट पैदा करते थे। तो खैर वो युग वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो यादें हैं और वो चीज़ें जो हमने अभी भी सहेज कर रखी हैं हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो रहा है कि आपसे अनुमति लूँ, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ, जिसे मैंने लिया है फिल्म अलबेला से, आवाज़ लता दी की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: इस तरह से मेरे बचपन की शुरुआत हुई। फिर मैंने फराज साहब को पढ़ा, साहिर साहब का बड़ा दिलदादा हूँ मैं, हम सब हैं
1: जी, ये
0: कि वो
1: पूरी
0: एक,
1: नस्ल है यार।
0: हाँ बिल्कुल, कि उस जमाने में जब बचपन हो और नौजवानी की शुरुआत हो रही हो और साहिर साहब जब आपको मुतासिर करते हैं तो एक अलग सा तरंग जो है वो जहन में बिल्कुल पैदा होता है। तो कुछ इस तरह से मेरी शेरी ज़िंदगी शुरू हुई और मैं शुरू में बहुत संजीदा भी नहीं था। ये कहने में कोई आर नहीं है कि शेर शायद इसलिए भी नहीं कहता था कि लोग ये समझें कि एक कैसुल जाफरी के बेटे हैं। आप समझ सकते हैं कि
1: जी,
0: मैं
1: इस
0: उसे
1: तरह की
0: पढ़
1: बेदर्दियाँ कितनी आम
0: हाँ
1: हैं अदबी दुनिया में,
0: हाँ
1: इससे इसका इल्म है मुझे।
0: तो
1: इसमें शायरी के हवाले से आपने दोनों बातों का जिक्र किया कि आपने गज़लें तो लिखी हैं, लेकिन आपका जो पहला इश्क था वो नज़मों से हुआ।
0: नज़्म
1: नज़्म और गज़ल के बीच वैसे तो आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन गज़ल की मकबूलियत ने सारी हदों को पार करते हुए उर्दू की दूसरी अस्नाफ को
0: कोई
1: जिस
0: शक
1: तरह से
0: नहीं,
1: पीछे छोड़ा है
0: इसमें कोई शक नहीं।
1: उसमें कोई शक नहीं है। गज़ल की तरफ आपका जो रुझान है उसको किस तरह से आप खुद देखते हैं कि क्या गज़ल की कौन सी खूबियां थीं जिन्होंने आपको नज़्म के दामन से निकाल के अपनी आगोश में भरा?
0: गज़ल का पहला तासुर तो उसके मतलब से ही शुरू हो जाता है कि वो खुद अपने आप में एक मुकम्मल मज़मून, एक मुकम्मल शेर। एक आम जहन जिस तरह से गज़ल के शेरों से मुतासिर होता है या उसको पसंद करता है, गालिबन वो नज़्म के हिस्से में वो चीज़ नहीं आती जो, और ये शुरू से ही
1: जी
0: ये
1: जी
0: बात है, मुझे मेरी तसदीक कर सकते हैं कि गज़ल अपने रंग और रूप और अपने आहंग में वो एक राह चलते आदमी को भी मुतासिर कर देती है।
1: जी
0: और उसमें ख़ास तौर से जब
1: बेशक
0: हमारी फिल्मों की शायरी हम देखते हैं तो उसमें शकील साहब हों, मजरू साहब हों, कैफ़ी साहब हों, साहिर साहब हों, इनकी जो गज़लें हैं, ख़ास तौर से शकील साहब ने जो गज़लें कही वो एक आम फहम अंदाज में और अल्फाज में कही गई नज़में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे इस तरफ आने का सबब भी यही हुआ हो कि मुझे लगता था कि एक तो नज़्में याद करना मुसलसल
1: जी,
0: वो एक बड़ा मुश्किल अम्र है,
1: हाँ
0: और गज़ल तो बहरहाल गज़ल है, वो बहुत आसानी से चार पांच शेर आपको याद हो
1: याद
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते
0: एक
1: हैं।
0: ये भी है, दूसरी ये कि हमारी अब जो दुनिया है जो उर्दू से हिंदी और मराठी की तरफ गई है तो वो गज़लें ही गई हैं, हमारी उर्दू नज़्म वो किसी और ज़बान की तरफ नहीं गई, लेकिन उर्दू गज़ल की पॉपुलैरिटी कहें, मकबूलियत कहें, या उसको जब लोगों ने शौक़ से सुना, पढ़ा, समझा तो उसको, उस हैयत को हमने कबूल किया।
1: कहते हैं कि सबसे पहला तासुर जो आपके लिए अहम होता है वो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली में जो लोग
0: जी
1: हैं, आपके घर वाले हैं, उनका तासुर होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कैसरुल जाफरी साहब का रद्द अमल क्या था आपकी शायरी के हवाले से, जब उन्हें ये खबर मिली कि आप माशाल्लाह शेर गोई का ज़ौक रखते हैं और लिख रहे हैं।
0: कैसर साहब के यहाँ एक बात ये थी कि जैसे हमारे दोस्तों में भी शाहिद लतीफ़ हैं, कासिम इमाम हैं, जो बहुत मेरे बचपन के दोस्त हैं, और वो वालिद साहब की भी ज़ेर निगरानी रहे हैं, उन्होंने कोई ख़ास तासुर नहीं दिया।
1: जी
0: मैंने एक आध बार पूछा भी, मैंने कहा आप हमारे दोस्तों को बड़ा बढ़ावा देते हैं और बड़ी पज़ीराई करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपकी जो बेइत्तनाई
1: दिलचस्प।
0: वो आखिर उसकी वजह क्या है? तो वो बात टाल गए। मुमकिन उनको ऐसा लगता हो कि अपने जेरे साया मुझे ना देखना चाहते हो कि मैं अपनी
1: उन्हें लगता है कि
0: ज़िंदगी,
1: ये चीज़ भी हारिज हो सकती
0: हाँ
1: है।
0: यस, तो शायद इसलिए भी, और मुमकिन है कि मैं सही जवाब दे पा
1: जी
0: रहा हूँ या नहीं
1: नहीं,
0: दे पा रहा हूँ, मैं नहीं
1: बिल्कुल
0: जानता, लेकिन जिस शौक़ से आप बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह वो आपके नाम का हिस्सा भी है जो गुफ्तगू है वो यही है।
1: जी,
0: और
1: ये तो कसरुल जाफरी साहब के हवाले से मैंने उनका रद्द अमल जानना
0: जी
1: चाहा। उनके जिन दूसरे शागिर्दों का और अपने दोस्तों का नाम आपने लिया, उनका क्या रद्द अमल था जब शुरू में उन्हें मालूम हुआ कि आपकी शेर
0: नहीं,
1: गोई का मामला
0: मेरे
1: संजीदा है?
0: दोस्त, हाँ जैसे अभी आप हामिद इकबाल सिद्दीकी को जानते हो
1: जी,
0: तो वो
1: मेरे
0: बिल्कुल
1: दोस्त हैं।
0: बिल्कुल, और कासिम इमाम है हमारे, शाहिद लतीफ़ हैं, तो ये हम चारों का एक हलका था जो शुरू से शेर कह रहा था। उसमें हम सब, मैं तो खैर सबसे, मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर कहता हूँ, उस हम उसको बम्बई में हमारी ये जो चौकोर है उसको फोर स्क्वायर दोस्ती
1: जी
0: कहते हैं,
1: जी
0: तो उसमें हामिद बहुत अच्छे शेर कह रहे थे, शाहिद भी और कासिम इमाम भी। मैंने बहुत ज़्यादा शायरी नहीं की, जैसा कि

0: तौर से लोग बिल्कुल करने
1: फुल
0: लगते
1: टाइम
0: हैं फुल
1: नहीं
0: टाइम। हाँ
1: जी।
0: मेरा शौक दूसरा था, उसके ताल्लुक से शायद इस वक्त बात करने का मौका नहीं है।
1: लेकिन हम
0: मैं
1: जानना चाहेंगे,
0: हाँ
1: ये बेतकल्लुफ
0: हाँ
1: गुफ्तगू है जो
0: बिल्कुल,
1: हमारे सुनने वाले जो आपको पढ़ते सुनते जानते रहे हैं वो जानना चाहते हैं।
0: हमने बम्बई में एक आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट की बुनियाद डाली, जो मेरा एम्बिशन था और मेरे तमाम दोस्तों ने उसमें बहुत साथ दिया। कुछ बहुत बड़े लोग बम्बई के शरीक हुए और हमने बम्बई के जो उर्दू स्कूल्स के उर्दू मीडियम के जो बच्चे थे, हमने उनको स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस के सेंटर बना के दिए और मेरा शौक
1: वाह
0: भी वहीं से जिला पाया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ शेर कहने में ना गुजरे तो ज़्यादा बेहतर। तो हम हर साल लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार बच्चों को कोच करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोच करते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है मुंबई में कॉम्पिटिटिव
1: जी
0: एग्जामिनेशंस की क्वालिटी
1: जी
0: एजुकेशन की। तो 25-28 साल जो है वो अनवान साहब मैं बिल्कुल उसी तरफ चला गया था। उस दरमियान मेरी शायरी बहुत कम हो गई थी और आज भी जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जैसे मुझे कभी दिल्ली आऊँ, मुझे कोई स्कूल का जिम्मेदार बुलाए और मुझे बच्चों से बात करने के लिए कहें। मैं कोई ट्रेंड काउंसलर नहीं हूँ
1: जी
0: लेकिन मैंने बच्चों के दरमियान 25-30 साल गुजारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम शायरी हो
1: जी
0: गई बात
1: जी
0: ये,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: मैं
1: ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है।
0: जी।
1: वो मेरे लिए आपकी शख्सियत, आपकी शायरी और आपके कारनामे और जहाँ भी आपने जो जिद्दोजहद की है वो तमाम चीज़ें इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था तफसील से, और बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि शायरी ज़िंदगी से निकलती है और आपने जो काम किया है वो भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला
0: बेशक बेशक
1: और ऐसी ज़िंदगी जो काबिले कद्र हो आपकी नज़रों में भी, दुनिया की नज़रों में भी,
0: बेशक
1: ये हम उस
0: बेशक
1: ज़िंदगी की जानिब गामज़न होते हैं इस तरह के अमल से। तो आपके शेरी मजमूए बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आपने पहले ही कह दिया
0: एक ही
1: एक
0: किताब,
1: मजमूआ है
0: एक
1: आपका,
0: एक किताब है, वो भी बहुत कमज़ोर सी है, बहुत ख़राब सी है।
1: आपकी इनकसारी का जवाब नहीं, मैं मुअत्तरिफ हूँ पहले से।
0: नहीं।
1: बंजारा के नाम से ये
0: जी
1: किताब आई
0: जी
1: थी,
0: जी जी
1: और
0: जी जी
1: ये कब मंजरे आम पर आई?
0: ये सन 2008 की बात है। वो जिद्दा के मुशायरे में उनका इसरार था मुंतजमीन का और कौंसलेट का कि आपकी कोई किताब होनी चाहिए, तो बहुत उजलत में मैंने, और वो
1: जी
0: यूं भी हुआ कि बस उसके मेरे सफ़र के एक महीने पहले वालदा गुजर गई थी। बस वो ये था कि एक पुलंदा कोई हो किताब नुमा और मैं ले आके उनको दिखा दूं कि भाई ये किताब आई है। अब वो शर्त वो क्यों मांग रहे थे कर रख रहे थे मुझे नहीं मालूम।
1: जी
0: अच्छा, मेरा असल मकसद ये था कि मैं अबू जी का जो एक बड़ा कारनामा है चिराग हेरा के उनवान से, मैंने 2012 में उसका सेकंड एडिशन शाये किया, बहुत खूबसूरत, और कुलियात आपके
1: जी जी
0: सामने है।
1: बिल्कुल, मैं देख
0: मेरा
1: चुका,
0: बड़ा
1: बहुत उम्दा
0: अरमान
1: छपी
0: था
1: भी है
0: कि
1: और शायरी
0: मैं
1: तो अच्छी है
0: अबू
1: ही।
0: जी का कुलियात जो है वो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, तो अबू जी का कुलियात जो है वो मेरा दहरीना ख्वाब था। लोग कहते हैं ऐसा कि मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। तो
1: सही
0: मेरी
1: कहते हैं वो।
0: ज़िंदगी जो है वो, मेरी शेरी ज़िंदगी बहुत कम है। दूसरी फैकल्टीज़ में, दूसरी साइड्स में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ कर जाऊँ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, वो जो हमारा सेंटर है पूरे बम्बई में, उसका बजट लाखों में है, उसको मैं क्या कहूँ। मैं एवरी सैटरडे एसएससी के, यहाँ बोर्ड कहते हैं शायद 10वीं बोर्ड, हमारे यहाँ एसएससी कहते हैं,
1: जी
0: तो मैं एसएससी के बच्चों से मैं एवरी सैटरडे शाम को बात करता था। और अब जो बच्चे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सर हम लोग हर शनिचर को आपका इंतज़ार करते थे। तो मैंने मतलब उनकी पॉलिशिंग करने की कोशिश की उनकी शख्सियत को कि वो आगे चले तो दुनिया सर करें, अपना करियर बनाएं। और बाद में मैं उनसे ये कहता था कि आपकी दुनिया उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो अब क्या कह रहा हूँ मैं नहीं कह सकता।
1: नहीं, आपने एक उम्दा रहनुमा की हैसियत से, उनके गाइड की हैसियत से
0: जी
1: आपने
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: कुछ उन्हें दिया वो उसे याद रखते हैं, उसकी
0: हाँ
1: कदर
0: बेशक
1: करते
0: याद
1: हैं,
0: रख, बहुत याद
1: ये
0: रख।
1: बड़ी बात है। और अभी हम जिक्र कर रहे थे کلیات کے حوالے سے۔

0: रसूल जाफरी साहब के
1: जी
0: और उनकी शायरी के हवाले से जो आपका पैशन है, जो आपके जज्बात हैं, उनके हवाले से बात कर रहे थे।
1: जी
0: वो उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि उनके अशआर नाक़िदों ने कोट किए, अदबी रसालों में कोट किए जाते थे, मुख्तलिफ़ हवालों से कोट किए जाते थे,
1: बेशक
0: और अलग अलग गुलूकारों ने उनकी आवाज़, उनकी गज़लों को आवाज़ भी दी है,
1: बेशक
0: उन्हें गाया भी है। तो उनकी मकबूलियत का दायरा सिर्फ खवास तक महदूद नहीं था, लेकिन आपके लिए उनकी शायराना हैसियत को किन अशार ने पहचान दी? अगर आपको कुछ उनके पसंदीदा अशार जो आपके पसंदीदा
1: जैसे
0: हवाला दे सकते।
1: उनका एक शेर है कि समुंदरों में पहुंचकर फरेब मत देना, अगर कहो तो किनारे पे डूब जाऊं मैं।
0: वाह
1: और दुनिया के साथ आशिया राइयों में था, मैं घर जला के खुद भी तमाशाइयों में था।
0: बहुत खूब
1: अंधे कुएं में डाल के मुझको चला गया वो बेवफा लहू जो मेरे भाइयों में था। और तुम्हारे शहर का मौसम तो बहरहाल वो
0: मशहूर है,
1: बिल्कुल
0: हो
1: बहुत
0: चुकी है।
1: मशहूर है। मैं कैसर साहब के ताल्लुक़ से एक बात शायद इस मतलबे के ज़रिए से कुछ लोगों तक पहुँचे और कोई काम हो। नुमान
0: जी
1: साहब, मुझे
0: जरूर
1: ऐसा लगता
0: जी।
1: है कि कैसर साहब की जो नज़में हैं, गज़लें तो नो कोई शुबा नहीं है उसमें कि गज़लें तो अब वो मतलब इरफान जाफरी, कैसर जाफरी के बारे में कुछ कहे तो वो अच्छा नहीं लगता।
0: यकीन, मैं इसकी तस्दीक करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा है, इसलिए मेरी
1: यस
0: ख्वाहिश थी कि मैं
1: बिल्कुल
0: आपसे इस हवाले से गुफ्तगू
1: बिल्कुल।
0: करूँ।
1: तो उनकी जो नज़में हैं नुमान साहब, उन नज़मों पर कभी कोई बात नहीं हुई है। मैं एक बहुत ज़ाती नज़्म है रंगे हिना में, जो उनका पहला मजमूआ था,
0: जी
1: और वो औलाद के नाम से है। तो हालांकि वो बड़ी पर्सनल और ज़ाती नज़में हैं, तो उनके यहाँ नज़मों में जो एक दर्द है, जैसे खंडर के उनवान से जो उनकी नज़में हैं, वो पार्टीशन और तकसीम हिंद और उसका जो सानहा है, और उसमें वो जो नज़्म है वो हमारे गांव के पूरे पस मंज़र में, जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी को चाहा तो ज़रूर होगा।
0: यकीनन,
1: और
0: हर
1: वो
0: किसी को
1: हाँ
0: कोई ना
1: वो
0: कोई खुदा ने उसके लिए उतारा है।
1: बिल्कुल। तो वो जो भी रहा, मैंने उनसे कई मरतबा कुरेदने की कोशिश की कि नाम बता दीजिए,
0: जी
1: तो बोले यार अब सब अपने अजीज़ों में से हैं, अब क्या नाम बताऊँ तुम्हें। तो वो खंडर आप पढ़िएगा, उसमें
0: जी, मैं
1: बहुत,
0: यकीनन मैं दोबारा पढ़ूंगा
1: हाँ
0: एक इस
1: बिल्कुल,
0: बार।
1: आप खंडर पढ़िए, औलाद पढ़िए,
0: जी
1: बहुत शानदार नज़में। चूंकि वो याद नहीं रहती पूरी नज़में, लेकिन
0: नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ लेंगे, और हमारे सुनने वाले भी यकीनन जाफरी साहब को जानते होंगे और उन्हें
1: पढ़ना
0: पढ़ना चाहते होंगे, तो
1: चाहेंगे बिल्कुल।
0: आपने नज़मों का रेफरेंस दिया तो उनके लिए ये आसानी हो गई कि वो ये
1: हाँ
0: नज़में तलाश कर सकें और पढ़ सकें। शायरी करने के साथ साथ आपको कई महफिलों की बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी मिलती रहती हैं,
1: जी
0: और ख़बर ये है कि उन जिम्मेदारियों में आप काबिले रश्क हद तक हसीनो जमील होते हैं और ज़हीन होते हैं, और मैं बहुत सारे आदाब व अलकाब यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा।
1: नहीं, आपका मोहब्बत भरा एक जुमला मेरे लिए बहुत है। नहीं, किसी अलकाब और आदाब की कोई ज़रूरत
0: तो ये नज़ामत का जो मसला है, ये तो बड़ा टेढ़ा मसला होता है,
1: नहीं
0: इसमें जितना झूठ बोलना पड़ता है लोग कहते हैं उतना
1: बेशक बेशक बिल्कुल
0: वो
1: दुरुस्त कह रहे
0: उसे कैसे मैनेज किया जाता है, और अच्छी नज़ामत क्या होती है? मैं आपके हवाले से ये अपने सुनने वालों
1: हैं।
0: तक
1: पहली
0: पहुंचाना
1: बात तो
0: चाहूंगा।
1: ये कि आपने जो खुद कहा कि बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ये 100% सच है कि झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन जब वो शुरू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत कुछ, यानी बिलावजह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं,
0: जी
1: खामखां की सताइश करनी पड़ती है, लेकिन बात का जो हिस्सा होता है तो फिर वो बहुत सच्चाइयों के साथ शुरू होता
0: नहीं,
1: है।
0: यकीनन उसकी तरतीब उस
1: हाँ
0: लिहाज से
1: उसकी
0: की
1: तरह।
0: जाती है।
1: लेकिन जैसे मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि निज़ामत इंतहाई मुश्किल चीज़ है
0: यकीनन
1: बहुत। और मैं तो शायद वो हमारे नाज़िम मुशायरा कुछ लोग हों तो नाराज़ हो जाए, निज़ामत कोई अच्छी शायबी नहीं, अब नहीं रही। एक ज़माने में हम जब मलिकज़ादा साहब को सुनते हैं, अनवर साहब को सुनते हैं, कुरैशी साहब को सुनते हैं, वो जो उस तरह की निज़ामत अब तो लफाजी हो रही है,
0: लफाजी हो गई, और कई बार शायर जितनी देर कलाम नहीं सुनाता उससे ज्यादा लंबी निजामत
1: उससे
0: होती
1: ज़्यादा।
0: हुई
1: हाँ
0: है,
1: बेशक
0: और
1: बेशक
0: उसमें ऐसे लतीफे और बहुत वैसी चीजें जो जिन्हें हम किसी जमाने में मुबतज़ल समझा करते थे,
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: उस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। ظاہر ہے آپ نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ایک پہچان

0: बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, सरासर मुतमईन नहीं हूँ। और कोई ज़ीहिस, कोई ज़ी शऊर, शायरी का पारिक, वो कतई मुतमईन नहीं हो सकता, और उसे मुतमईन होना भी नहीं चाहिए। अगर वो मुतमईन हो गया तो ये समझ लें कि ये
1: उसके मजाक पर शुभा किया जा सकता है।
0: यस, एक छोटा सा वाक्य अगर वक्त
1: जी
0: हो
1: ना,
0: तो, नेहरू सेंटर का एक मुशायरा ऐसा हुआ कि वहाँ शेनकाफ निज़ाम साहब आ रहे थे निज़ामत करने के लिए, लेकिन वो किसी सबब नहीं आ सके। तो लताफत खादी साहब और अब्दुल्ला साहब साहब मेरे पास आए कि हाँ यार निज़ामत कर दें आप। अब आदमी सिर्फ शेर सुनाने के लिए गया है, वहाँ उसे कहा जाए कि आप निज़ामत कर दें, और वो भी फैज़ अहमद फैज़ के सेंटेनरी का मुशायरा था
1: ओ
0: और तरही मुशायरा था,
1: दिक्कत तलब था।
0: तो बहुत दिक्कत तलब। लेकिन अब वो अपने शहर की बात थी, मैंने अल्लाह का नाम लिया, जो भी शुरू में कहना सुनना था। अब कोई यकीन ना करे, लेकिन आप ज़रूर यकीन करेंगे कि मैंने उस मुशायरे में एक शेर नहीं सुनाया और मैंने पूरा मुशायरा चला दिया,
1: वाह,
0: और सिर्फ वो फैज़ साहब की यादें या जो कुछ मैंने फैज़ साहब को पढ़ा था या जो भी उनकी रुदात थी ज़िंदगी की, बस उसको समेटते हुए मैंने, 12-15 लोग थे और वसीम बरेलवी साहब एक कोने में बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई कि मियाँ निज़ामत बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कभी एक आदमी ने भी कह दिया कि मियाँ आपने खूब अच्छा कर लिया, बस उतना काफ़ी, बड़ा इनाम होता है वो।
1: बेशक, निज़ामत के हवाले से बात हुई, शायरी का मिजाज व मेयार जो हम रसायल में पढ़ा करते थे और जो हम देखते और सुनते हैं, पहले भी इसमें एक फासला एक बहुत था। ऐसा
0: था,
1: नहीं है कि
0: बिल्कुल
1: पहले चीज़ें
0: ना,
1: बिल्कुल
0: ना ना बिल्कुल था,
1: वैसी थीं जैसी होनी चाहिए, पहले भी था अब भी है। तो पहले और अब में जो फ़र्क है वो आपने देखा है, आपने दोनों ज़माने देखे हैं,
0: जी
1: उनसे सीखा है, उन नस्लों को सिखाया है जिनके हाथों में कमान है इस वक्त,
0: बिल्कुल।
1: आप उस फर्क को कैसे देखते हैं?
0: आपने खुद कहा कि पुराना ज़माना भी वो ख़राब शायरी को लिए हुए था, लेकिन उस वक्त जो उसका रेशो था वो बहुत कम था। उस वक्त बहुत ख़राब शायरी को कंडेम करने वाले लोग मौजूद थे,
1: कई बार स्टेज से ही करने लगते
0: स्टेज
1: थे
0: से,
1: जी,
0: कि आपने ज़रा सा कोई लफ्ज़ गलत पढ़ दिया, कहीं कोई आप बहक गए, आपने मज़मून गलत बांध दिया या वो समझ में नहीं आ रहा, तो बुज़ुर्ग जो बैठे रहते थे वो तो बिल्कुल
1: चराप्पा हो
0: मैं
1: जाते
0: फिर,
1: थे।
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: शराखा हो
1: बिल्कुल
0: जाते थे कि साहब, और बाकायदा बिठा दिया जाता था कि नाजिम में मुशायरा बिठा देता कि सर
1: हम
0: बैठ
1: अमा
0: जाए,
1: किसे शेर दिखाते हो
0: कैसे दिखाते हो, हाँ
1: ये जुमला आ जाता
0: ये
1: था फौरन।
0: जुमला आ जाता था। अब जो शायरी हो रही है वो बहुत कम अच्छी शायरी हो रही है, और शायरी को सुनकर और शायरों को देखकर जो शायरी हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक फैशन के तहत जो है वो हमारा नया लड़का नई बच्ची जो है, और दूसरे एक जो मैं वजह समझता हूँ कि अब मुशायरों में चूंकि पैसों की भी भरमार हो गई है, तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ भी अपना करियर बनाया जा सकता है। तो उस करियर बनाने के चक्कर में तो शायरी तो नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ आना चाह रहा था
0: जी
1: कि पहले इसके जवाल के कई असबाब थे
0: बिल्कुल
1: और अब एक ही सबब सबसे बड़ा है
0: बेशक
1: माफ
0: बेशक,
1: कीजिएगा,
0: ना ना
1: बल्कि
0: ना
1: एक की
0: नहीं,
1: बजाय मैं दो इसलिए कहना चाहूंगा
0: हाँ
1: कि अब ये मुशायरे जिस तरह यूट्यूब, सोशल मीडिया और उसके रील्स जिस तरह से वायरल होते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो एक तरफ तो मार्केट का प्रेशर है, दूसरी तरफ वो मकबूलियत का नशा है
0: हाँ
1: जो
0: नशा
1: मुफ्त
0: है,
1: हाथ आ
0: नशा
1: रहा
0: है,
1: है।
0: दुरुस्त फरमा रहे हैं आप।
1: लेकिन हम जिस मंजरनामे को देखते हुए या जहन में रख के गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये बातें बहुत वाजे हैं। इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है जब हम मुशायरों के हवाले से बात करते हैं कि शायरी को सुनने और पढ़ने का शौक़ अब नई नस्ल में अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है।
0: हाँ है,
1: हाँ, और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो शेर सुनना चाहते हैं, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने उर्दू ज़बान ही शेर पढ़ने
0: शेर
1: और शेर लिखने के लिए सीखी।
0: बिल्कुल सही, दुरुस्त है,
1: कि एक बहुत खुशाइंद जिन्होंने भी काम किया और जिस तरह इसे तहरीक की शक्ल दी, उन तमाम लोगों का को सलाम करता हूँ मैं। और हम शायरी के हवाले से बहुत बातें कर चुके हैं, ज़बान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करना चाहें तो क्या शायरी की मकबूलियत, उर्दू के जश्नों की मकबूलियत, उर्दू ज़बान की मकबूलियत है?
0: हाँ है।

0: और मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि ये बाकी रहेगी।
1: इंशाल्लाह।
0: हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। रह गया एक बड़ा शोशा वो रस्मुल ख़त का, तो रस्मुल ख़त भी इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा, उसे ज़िंदा रखने वाले लोग रहेंगे
1: जी, और रहना चाहिए
0: और रहना चाहिए। ऐसा नहीं
1: बिल्कुल।
0: कि वो ख़त्म हो सकती, मैं नहीं समझता कि उर्दू ख़त्म हो सकती।
1: अब हम ये चाहते हैं कि इतनी सारी गुफ्तगू के बाद अगर उसमें शायरी का रस न घोला जाए तो सुनने वालों के साथ ज्यादती हो जाती है। तो मैं चाहता
0: आप
1: हूँ कि आप अपना पसंदीदा
0: जी जी
1: नुमाइंदा कलाम
0: जी जी मैं एक आध दो
1: हमारे सामने
0: गज़लें
1: की नज़र करें।
0: पेश कर देता हूँ। ये रह गुजारे शौक भी कितनी तवील है, ये रह गुजारे शौक भी कितनी तवील है, घर से चले थे सोच के दो चार मील है, जुल्मों सितम ने मिस्र पे कब्जा जमा लिया,
1: हाँ,
0: मूसा के इंतजार में दरियाए नील है।
1: क्या कहने, क्या तलमी का इस्तेमाल है साहब,
0: जुल्मों
1: वाह।
0: सितम ने मिस्र पे कब्जा जमा लिया, मूसा के इंतजार में दरियाए नील है। शेर सुने कि अब और गम मिले न मिले कोई गम नहीं,
1: अब और गम मिले न मिले कोई गम
0: कोई
1: नहीं।
0: गम नहीं, इस मय कदे में तिश्न लबी खुद कफील है।
1: हाँ हाँ वाह।
0: मुझको लगा कि दर्द की बारिश करेगा वो, एक जख्म दे के रह गया कैसा वकील है।
1: हाँ वाह।
0: और शेर यूं हुआ कि मुर्गाबियों की डार ने ये तो बता दिया, मुर्गाबियों की डार ने
1: ये तो बता
0: ये
1: दिया।
0: तो बता दिया, जंगल में आस पास ही गहरी सी झील है।
1: वाह।
0: मगता है कि सूरज तुलू होते ही मगरिब में ढल गया, सूरज
1: तुलू होते
0: तुलू
1: ही
0: होते ही मगरिब में ढल गया, इरफान जी हयात भी कितनी कलील है,
1: वाह।
0: ये रह गुजारे शौक भी कितनी तवील है। अगर आप कहें तो एक आध गुजर और
1: जी
0: सुना दें।
1: जी जी इनायत,
0: ये दो चार शेर, उसके बाद मेरे ख्याल
1: इंशाल्लाह।
0: में जहमतें तमाम हो जाएंगी। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था फैज़ अहमद फैज़ के उस सेंटेनरी मुशायरे के ताल्लुक़ से, तो वो तरही मुशायरा था, तो मैंने भी फैज़ साहब की ज़मीन में ये दो
1: तरहमीन
0: चार
1: फजूल
0: शेर
1: की
0: कहे थे।
1: जी, इनायत।
0: देखें कि हरी फसल कैसे झुलस गई, कहाँ काश्तकार चले गए,
1: हाँ, हरी
0: हरी
1: फसल
0: फसल
1: कैसे
0: कैसे झुलस
1: झुलस
0: गई, कहाँ
1: कहाँ
0: काश्तकार चले
1: चले
0: गए,
1: गए।
0: ये ज़मीं भी खुद में सिमट गई, सभी आबशार चले गए।
1: हाँ वाह।
0: हरी फसल कैसे झुलस गई, कहाँ काश्तकार चले गए, ये ज़मीं भी खुद में सिमट गई, सभी आबशार चले गए। शेर सुने कि ये तो जुगनुओं का नसीब था, कोई फैज़ उनको न मिल सका,
1: वाह,
0: जो सजाने आए थे रह गुजर वो पसे गुबार चले गए।
1: बहुत खूब।
0: शेर सुने कि मुझे ख़ास कोई शगफ नहीं, कहीं मैं कदा जो करीब हो, मुझे ख़ास कोई
1: कोई
0: शगफ
1: शगफ नहीं,
0: नहीं, कहीं मैं कदा जो करीब हो, भला ये भी कोई ख़ता हुई जो कभी कभार चले गए।
1: वाह,
0: मुझे ख़ास कोई शगफ नहीं,
1: नहीं
0: कहीं मैं कदा जो करीब हो, भला ये भी कोई ख़ता हुई जो कभी कभार
1: कभार
0: चले
1: चले
0: गए।
1: गए।
0: और शेर इसमें हुआ था गज़ल में कि न मैं कैद हूँ न रिहा हुआ, मेरी सल्तनत मेरी जेल है, न मैं कैद हूँ न
1: न
0: रिहा
1: रिहा
0: हुआ,
1: हुआ,
0: मेरी सल्तनत मेरी जेल है, मैं जफर के ऐसा हूँ ताजवर, सभी अख्तियार चले गए।
1: क्या कहने, बहुत खूब, बहुत उम्दा गज़लें और उतनी ही उम्दा बातें
0: बहुत शुक्रिया।
1: दोनों के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ इरफान जाफरी साहब
0: नहीं
1: के।
0: नहीं बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने तवज्जो फरमाई और यहाँ तक आया, और आपसे मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सका। आकाशवाणी दिल्ली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप
1: जर्रा नवाजी, बहुत शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब इरफान जाफरी से की गई बातचीत की ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब नोमान शौक, और प्रोग्राम की तरतीब पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिश, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स। शाम के 4 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापरोफ के बीच बैठक जारी है। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के 2रे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के 2रे चरण के सभी 6 क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के 2रे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027

इसके क्वालिफायर में आज भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम का मुकाबला सीरिया से होगा। ये मैच ताशकंद में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से होगा। भारत मेजबान उज्बेकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Trishuli 3A. In football, Indian men's team will begin the campaign in the AFC Under-20 Asian Cup 2027 qualifiers against Syria in Tashkent today. Drawn in Group B alongside host Uzbekistan and Bangladesh, India entered the qualifiers with the objective of returning to the AFC Under-20 Asian Cup for the first time since 2006. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है शाम के 4:10। आइए जानकारी लेते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त पहले गुमशुदा व्यक्ति की जो सूचना हमें मिली है, नाम है गीता, पुत्री किशोरी लाल। गीता जो एक 15 वर्षीय महिला है, कद 5 फुट 2 इंच, शरीर की बनावट दुबली पतला शरीर है, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत, और इन्होंने काले रंग की लोअर और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है। उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना नहीं मिली। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, तो आप संपर्क करें उपनिरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर। थाना इकोटेक 3 कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से अगली जो जानकारी मिली है, गुमशुदा का नाम है रंजू देवी, पत्नी शैलेश गिर। ये घर से ही इन्हें अंतिम बार देखा गया था। 25 वर्षीय महिला रंजू देवी, गोल चेहरा, आंख नाक कान औसत, एक गहरा बदन, कद 4 फुट 6 इंच, ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप देना चाहते हैं, तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3 कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। थाना इकोटेक 3 कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर से ही जो अगली जानकारी है, गुमशुदा का नाम है राधा पांडे, पुत्री सरोज पांडे। ये घर पर इन्हें अंतिम बार देखा गया। 22 वर्षीय राधा पांडे, जिनका गोल चेहरा, आंख नाक कान औसत, दोहरा मजबूत जिस्म, कद 5 फुट 5 इंच। इन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इनके संबंध में कोई भी

गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना हमारे पास पहुंची है कोतवाली दादरा गौतम बुद्ध नगर से। गुमशुदा का नाम है अंजू, पुत्री स्वर्गीय सुगर सिंह सिंह, निवासी ग्राम भरूरा, थाना कोतवाली, मैनपुरी। ये 4 जुलाई 2006 से अपने घर से, 2026 से, माफ कीजिएगा, अपने घर से लापता है। 19 वर्षीय ये पुरुष हैं जिनका कद 5 फुट है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर। इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी। गुमशुदा का नाम नेहा कुमारी, ये ग्राम डेरिन से दिनांक 18 जुलाई 2026 से लापता है। 20 वर्षीय महिला नेहा कुमारी, जिनका शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट 3 इंच है, ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें थाना इकोटेक कमीशनरेट गौतम बुद्ध नगर। थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी है मंजू के बारे में, जो कि पत्नी प्रदीप कुमार, 28 वर्षीय महिला मंजू, ये ग्राम निवासी हैं बादलपुर थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से। 28 वर्षीय हैं ये, एकरा शरीर, 5 फुट कद है। और इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर। सेक्टर 113 नोएडा कमीशनरेट गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी प्रिया के बारे में है। प्रिया पुत्री शिव कुमार, निवासी C-440 श्यामक कुंज, ये परथला सेक्टर 122 नोएडा से लापता है। 19 वर्षीय प्रिया कुमारी, कद सामान्य है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 113 नोएडा कमीशन गौतम बुद्ध नगर। अगली जो सूचना हम तक पहुंची है ये थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से आई है। गुमशुदा का नाम है सपना, पुत्री चंद्रभान सिंह, 19 वर्षीय महिला सपना, जिनका शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट है, ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित सूचना अगर आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 4:15 होने को हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: A famous Canadian author, L.M. Montgomery, once wrote about September. Lo, a ripe sheaf of many golden days. Basically, she's describing September as a collection of beautiful golden days. जैसे साल के कुछ सबसे खूबसूरत दिन एक साथ आकर हमारे सामने रख दिए गए हों, और शायद सितंबर की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है। अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर आ रहा है, और देखते ही देखते साल का एक और हिस्सा हमसे पीछे छूट गया है। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट टाइम इज मूविंग सो क्विकली, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैव स्टेड बिहाइंड। सिर्फ बड़े मोमेंट्स ही नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी जो उस वक्त तो बिल्कुल बेसिक लगती थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा याद आती हैं। जैसे किसी घर की एक खास सी खुशबू, स्कूल की घंटी, मम्मी का सुबह उठाना, या वो आवाज़ जो रोज़ लगाती थी, जल्दी करो बस छूट जाएगी। एंड इज़न्ट इट फनी, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वर ऑलवेज इन अ हरी टू ग्रो अप। वी वॉन्टेड टू बी ओल्डर, मोर इंडिपेंडेंट, मोर ग्रोन अप। और अब कभी कभी मन करता है कि बस बचपन का वो एक दिन भी वापस मिल जाए तो काफ़ी है। कोई छुट्टी वाला बड़ा दिन नहीं, कोई बर्थडे नहीं, बस एक नॉर्मल सा दिन। एब्सोल्युटली, अ डे फॉर विच वी वुड गिव एनीथिंग टू रीविजिट नाउ।
1: तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे अप

0: यादों में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वाणी, द यूथ प्रोग्राम ऑफ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ। आई एम आचल
1: एंड आई एम आयुषी, एंड टुडे इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग यू अ यूजुअल टॉपिक, वी थॉट वी वुड ब्रिंग यू समथिंग अ लिटिल मोर पर्सनल,
0: समथिंग दैट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस इन वन वे और अनदर,
1: हमारा बचपन।
0: एंड वी गोना मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग,
1: अ लिटिल गेम बिटवीन द टू ऑफ अस। लेकिन उससे पहले क्यों ना सुने एक बेहद प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों, इस गाने से पहले हम एक गेम की बात कर रहे थे। तो द नेम ऑफ द गेम इज डियर
1: डियर
0: चाइल्डहुड
1: चाइल्डहुड
0: मी,
1: मी,
0: जहां आज हम अपने बचपन वाले वर्जन से थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा हंसेंगे और कुछ पुरानी यादों को फिर से जिएंगे। सो लेट्स गो। डियर चाइल्डहुड मी, डू यू रिमेम्बर रेसिंग द मून फ्रॉम द कार विंडो? तुम्हें पूरा यकीन था कि चांद भी तुम्हारे साथ साथ भाग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी स्पीड से। कभी तुम जीत जाते थे, कभी चांद। ऑल दो अब सोचो तो थोड़ा सस्पिशियस है। आई मीन, चांद एक्चुअली रेस करता भी था क्या?
1: हाँ आंचल, करता था ना। कम से कम हमें तो पूरा विश्वास था कि करता था। और ऑनेस्टली उस टाइम हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते थे कि चांद हमारे साथ क्यों चल रहा है। बस चल रहा था तो चल रहा था।
0: एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई मिस अबाउट बीइंग अ चाइल्ड। वी डिडंट नीड एवरीथिंग टू मेक सेंस। अगर कुछ मैजिकल लगता था तो था, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बट ऑनेस्टली आयुषी, इवन टुडे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एट नाइट, आई स्टिल ग्लांस अप एट इट जस्ट टू चेक इफ इट्स स्टिल कीपिंग अप। एंड ऑनेस्टली कॉम्पिटिशन तो मुझे आज भी लगता है।
1: डियर चाइल्डहुड मी, तुम्हें याद है जब हम वॉच पहनने का बहुत मन करता था पर वॉच थी ही नहीं, तो पेन से ही अपनी कलाई पर एक घड़ी बना लेते थे, एक गोल सा डायल और दो सीधी सुइयां, और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टाइम भी बताते थे।
0: एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वॉच, द बैटरी नेवर डाइड। डियर चाइल्डहुड मी, तुम्हें याद है टीवी रिमोट? टीवी देखने के लिए कम और सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए ज़्यादा यूज़ होता था। रिमोट माइक्रोफोन बन जाता था और फिर बेडरूम एकदम से रियलिटी शो का स्टेज। एंड वी विद द सिंगर, द जज, एंड मोर ऑफ्टन द नॉट द विनर टू।
1: डियर चाइल्डहुड मी, स्कूल नोटबुक्स के लास्ट पेजेस याद हैं, जहां मैथ्स के फॉर्मूलाज या साइंस के नोट्स नहीं, सिर्फ डूडल्स रहते थे, रैंडम फ्लावर्स, रैंडम नेम्स और वो अजीब से डिजाइन्स जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था।
0: और कभी कभी तो पूरी फ्रेंडशिप स्टोरीज वहीं लिखी जाती थी। और हाँ, स्लैम बुक याद है आयुषी?
1: ओ यस आंचल, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। फेवरेट कलर्स, बेस्ट फ्रेंड, फ्यूचर ड्रीम्स और सबसे इम्पोर्टेंट, हु इज योर क्रश?
0: आयुषी, द सस्पेंस ऑफ आंसरिंग दैट वन क्वेश्चन हैड मोर ड्रामा देन एनी वेब सीरीज वी बिंज टुडे।
1: एब्सोल्युटली आंचल।
0: डियर चाइल्डहुड मी, तुम पेंसिल्स को नॉर्मल तरीके से क्यों यूज करते थे? तुम तो दोनों साइड शॉप करते थे, राइट?

0: क्योंकि दिमाग में तो एक ही लॉजिक था, अब मैं दो दो साइड से लिख पाऊंगी। और उस वक्त वो आइडिया एकदम आइंस्टाइन लेवल जीनियस लगता था। सो ट्रू आयुषी। डियर चाइल्डहुड मी, तुम्हें याद है अपना खुद का घर बनाना? पहले सोफा कुशन से फोर्ट, और अगर कुशंस ना मिले तो मम्मी का दुपट्टा, थोड़ा सा इधर से सेट किया, थोड़ा सा उधर से, और बस उसमें मेरी छोटी सी दुनिया। और बारिश, डियर चाइल्डहुड मी, तुम्हें याद है सड़क पर जमा हुआ पानी कोई पडल नहीं होता था, वो एक ओशियन होता था, पेपर बोट्स के लिए, ड्रीम्स के लिए और कंपटीशन के लिए। एंड अ ब्रांड न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, ओ माई गॉड, दैट डे लाइफ फेल्ट कम्प्लीटली सॉर्टेड। नया नया खुमार, और आयुषी पहले 2 दिन तो हम यूज भी नहीं करते थे, बस एडमायर करते थे। बिल्कुल आंचल, डियर चाइल्डहुड मी, तुम्हें याद है कि शाम के 4 बजने का वो इंतजार, हर 5 मिनट बाद क्लॉक देखना कब 4 बजेंगे और कब फ्रेंड्स नीचे आएंगे, कब लुका छुपी शुरू होगी। आंचल एक बात बताऊं, ये सब याद करते हुए ना मुझे वाकई अजीब सा लगता है,
1: अजीब कैसा?
0: जैसे वो सारे वक्त अभी भी कहीं जिंदा हैं, बस हम उनसे थोड़ा दूर चले गए हैं।
1: तो चलो और पास आ जाते हैं, एक राउंड और खेलते हैं, पर इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी, जो याद आए बस बोल दो। रेडी?
0: ओके रेडी।
1: स्कूल की घंटी,
0: रिसेस के वो 10 मिनट,
1: समर वेकेशंस की लिस्ट,
0: नानी के घर की छत,
1: वीडियो गेम्स,
0: GTA, सुपर मारियो, पावर रेंजर्स,
1: मुझे तो सब खेलने हैं,
0: सेम हेयर आंचल,
1: और मम्मी की डांट बिना वजह भी,
0: पापा के कंधे पर बैठकर मेला देखना,
1: आइसक्रीम वाले की घंटी दूर से सुनना,
0: और भागते हुए मम्मी पापा से पैसे मांगना,
1: नया स्कूल ईयर,
0: उसकी नई किताबें,
1: उनकी वो खास खुशबू, अच्छा बेस्ट फ्रेंड से एक दिन की लड़ाई,
0: और अगले ही दिन फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना।
1: बस
0: इतना ही काफी था उस वक्त के लिए।
1: आयुषी मुझे लगता है बचपन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि हम ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते थे।
0: बिल्कुल आंचल, एक रिमोट फोन बन जाता था माइक्रोफोन, और एक दुपट्टा घर बन जाता था, एक पडल ओशियन बन जाता था, और कलाई पर बनी हुई ड्राइंग एक रियल वॉच बन जाती थी।
1: डियर चाइल्डहुड मी, थैंक यू, तुमने हमें सिखाया कि खुशी चीजों में नहीं होती, नजरिए में होती है, एंड थैंक यू हमें याद दिलाने के लिए कि इमेजिनेशन कभी बचकानी नहीं होती, वो जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देती है।
0: शायद इसीलिए बड़े होने के बाद भी हम कभी कभी बचपन को मिस नहीं करते, हम उस फीलिंग को मिस करते हैं, वो फीलिंग जहाँ हर दिन एक एडवेंचर था, हर चीज़ एक पॉसिबिलिटी, और हर छोटी से छोटी बात बड़ी खुशियाँ बन जाती थी।
1: सो फ्रेंड्स, व्हेन यू गो होम टुडे, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस। इफ यू कुड राइट अ लिटिल लेटर टू योर चाइल्डहुड सेल्फ, व्हाट वुड यू राइट इन इट? ट्रस्ट मी, यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस।
0: तो दोस्तों, अपने अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक में जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: friends, we now move on to our next segment, which is Man Se Microphone Tak, wherein we have an IIT Delhi alumni talking about the transition from college life to working life, the challenges and opportunities it brings with it. So let's hear it from him.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ सिंह हूँ. मैंने IIT दिल्ली से अपनी बैचलर्स डिग्री करी है एंड मैं अभी 2026 में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ. मैं फ़िलहाल अभी गुड़गांव के कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ. आज मैं आपसे कॉलेज लाइफ से वर्किंग लाइफ के ट्रांजिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ. कॉलेज में हम अक्सर सोचते हैं कि असली फ्रीडम तो कॉलेज के बाद ही मिलेगी, अपनी अर्निंग्स होंगी, अपने डिसीजंस होंगे और अपनी लाइफ होगी. लेकिन दोस्तों, जब वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आती है. कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स आपके लिए डिसाइड ही हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं. कॉलेज में टाइम टेबल है, क्लासेस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, और आपको पता होता है कि मैं मंडे को क्या करूँगा, फ्राइडे को क्या सबमिट करना है. आपके पास फ्रीडम भी होती है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, नए एक्सपीरियंस करने हैं, सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, स्पोर्ट्स खेलने हैं. लेकिन वर्किंग लाइफ में सडनली कोई टाइम टेबल नहीं देता कि आपको आज क्या करना है. आपके पास मीटिंग्स होंगी, डेडलाइंस होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन सबके बीच में आपकी लाइफ की डायरेक्शन और चॉइसेस क्या हैं वो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी. और मुझे लगता है ये कॉलेज और वर्किंग लाइफ के बीच में सबसे बड़ा अंतर है. दोस्तों, अगर मैं इसको संक्षिप्त में कहना चाहूँ, वाइल वी आर यंगर वी आर रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ, बट एज वी ग्रो ओल्डर लाइफ हैज़ टू कम फ्रॉम अस. आप डिसाइड करते हैं कि किस स्किल को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाना चाहता हूँ, किन लोगों से मुझे सीखना है और मैं अपने फ्री टाइम में क्या करना चाहता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग लाइफ में सब डिफ़िकल्ट है. एक्चुअली मुझे वर्किंग लाइफ का सबसे एक्साइटिंग पार्ट यही लगा कि जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जो हम कॉलेज में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, हम उसको अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी, आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर पाओगे. और इनिशियली थोड़े इंटिमिडेटिंग हो सकता है, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस होगा. मुझे इनिशियली लगता था कि कोई क्वेश्चन पूछने से पहले बहुत सोचना चाहिए, कहीं क्वेश्चन बेकार ना हो. लेकिन धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई, अगर आपको कुछ नहीं पता तो क्वेश्चन पूछना वीकनेस नहीं है, जी खोल के क्वेश्चन पूछिए. और शायद वर्किंग लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल ही यही है, कंटिन्यूस लर्निंग. टेक्नोलॉजी चेंज होगी, रोल्स चेंज होंगे, इंडस्ट्रीज चेंज होंगी, लेकिन दोस्तों इसलिए मुझे लगता नहीं कि करियर का मतलब एक बार ही डिसाइड हो जाता है कि मुझे लाइफ में ये करना है. करियर इज़ मोर लाइक अ सीरीज़ ऑफ चॉइसेस. आप आज कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, और फिर आप नेक्स्ट चॉइस लेते हो. आपकी लाइफ की डायरेक्शन एक सिंगल डिसीजन नहीं है, आप छोटे छोटे डिसीजन हर दिन लेते हो. और वर्किंग लाइफ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जब आप पहली बार खुद अर्न करते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस भी आता है. जब मेरी पहली सैलरी आई तो मैंने अपनी सैलरी कुछ पैसे एक इलेक्ट्रिक गिटार में खर्च कर दिया, बट उसके लिए मुझे किसी को अब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये डिसीजन अब मेरी ही चॉइसेस हैं. ये कॉन्फिडेंस आपको वर्किंग लाइफ में आते ही मिल जाएगा. दोस्तों, मेरे लिए वर्किंग लाइफ का बिगेस्ट टेक अवे ये नहीं कि हम खुद के लिए अर्न कर रहे हैं, बट ये है कि हम हर क्षण पे खुद की लाइफ कॉन्शियसली डिज़ाइन कर रहे हैं. तो अगर आप में से कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है और मेरी एक सिंपल एडवाइस लेना चाहता है, तो ये है कि आपको अभी अपनी पूरी लाइफ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस क्यूरियस रहना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए.

0: नए एक्सपीरियंस ट्राई करने चाहिए, गलतियाँ करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, खुद सीखना चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस कैसे लूँ। क्योंकि कॉलेज में तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कॉलेज के बाद लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली नहीं देगी, आपको खुद क्रिएट करनी होगी। और शायद इसी वजह से वर्किंग लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग है, बट इसी वजह से इतनी एक्साइटिंग भी है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ सिर्फ उन इवेंट्स के बारे में नहीं है जो आपके साथ होते हैं, लाइफ उन चॉइसेस के बारे में भी है जो आपका दिनचर्या हर दिन शेप करते हैं। साथियों, मैं पार्थ सिंह, कॉलेज लाइफ से वर्किंग लाइफ के ट्रांजिशन के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, पार्थ सिंह ने बड़ी ही खूबसूरती से स्टूडेंट लाइफ के फेज को एक्सप्लेन करा है, अ ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू अ वर्किंग लाइफ। तो चलिए, अगले सेगमेंट में बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: Welcome back, friends. It's time for our weekly segment. Some dates on the calendar are just dates, but some make us stop and really think. 31st August is one of those dates. Anchal, आपने तो शुरुआत ही इतनी सीरियस कर दी कि अब मुझे लग रहा है कि आज की बातचीत थोड़ी अलग होने वाली है.
1: बिल्कुल अलग होने वाली है आयुषी, क्योंकि आज हम एक ऐसे हेल्थ इशू की बात करेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से बचते हैं.
0: और शायद यही हमारी पहली प्रॉब्लम है. हम कई हेल्थ इश्यूज़ पर ओपनली बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बात सब्सटेंस यूज़ या ओवरडोज की आती है, बातचीत के साथ जजमेंट भी शुरू हो जाता है.
1: एग्जैक्टली

0: और आज 31 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे। ये उन लोगों के लिए है जो ओवरडोज से अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े होने के लिए और ओवरडोज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन आंचल, ओवरडोज सुनते ही हमारे दिमाग में शायद जो सबसे पहली तस्वीर आती है वो आती है ड्रग्स की। यस, बट द स्टोरी इज इन दैट सिंपल, यू नो। एन ओवरडोज हैपन्स व्हेन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन द बॉडी बिकम्स टॉक्सिक और डेंजरस, एंड इन सम केसेस इवन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स कैन कॉज ओवरडोज, एस्पेशली व्हेन दे आर यूज्ड विदाउट मेडिकल सुपरविजन। यानी मेडिसिन शब्द अपने आप में सेफ होना ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, जैसे ओपियोइड्स यानी मॉर्फिन, फेंटनल और ट्रामाडोल जैसी मेडिसिन्स, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के गलत तरीके से लिया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ओपियोइड ओवरडोज सांस को इतना स्लो कर सकता है कि जान तक जा सकती है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ओवरडोज को सिर्फ एक गलत चॉइस का रिजल्ट मानकर छोड़ देना शायद एक सही अप्रोच नहीं होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सिर्फ ब्लेम करेंगे तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी, हेल्प कहाँ से मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो क्या हम सिर्फ जजमेंट की वजह से रहने दें उसे?
0: यही तो बात है आंचल, कई बार किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे बड़ा डर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि लोगों का रिएक्शन होता है। लोग क्या कहेंगे, पुलिस को पता चल जाएगा, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, और इन्हीं सवालों के बीच एक प्रीशियस टाइम निकल जाता है।
1: एब्सोल्युटली आयुषी, एंड इन एन ओवरडोज टाइम कैन बी एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाइमली इंटरवेंशन एंड अ लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक नैलेक्सोन कैन हेल्प प्रिवेंट डेथ इन ओपियोइड ओवरडोज केसेस।
0: तो अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि ओवरडोज क्यों होता है, अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि अगर कभी इमरजेंसी सामने आए तो हमें पैनिक या जजमेंट के बजाय सही मदद की तरफ बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे का मैसेज भी यही है। ओवरडोज को रोका जा सकता है और सही एडुकेशन, समय पर केयर, सपोर्ट और सही ट्रीटमेंट से जिंदगी बचाई भी जा सकती है।
0: लेकिन एक चीज़ मुझे इस ईयर थीम में बहुत ही पावरफुल लगती है, 25 ईयर्स ऑन एंड स्टिल नीडेड।
1: हाँ, 2026 में इस दिन को 25 साल हो गए हैं और स्टिल नीडेड सुनकर एक बात तो समझ आती है, अगर आज भी इसकी ज़रूरत है तो हमें इस बारे में बात करते रहना होगा।
0: और शायद इसीलिए आज की कॉन्वर्जेशन का सबसे बड़ा वर्ड ओवरडोज नहीं बल्कि अवेयरनेस होना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि किसी को उसकी सबसे मुश्किल सिचुएशन के लिए जज करना आसान है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट बनना कहीं ज़्यादा ज़रूरी।
0: और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एडिक्शन या सब्सटेंस डिपेंडेंस सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये एक हेल्थ इशू हो सकता है जिसके लिए ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: सही कहा आयुषी, अगर किसी फैमिली में ऐसी सिचुएशन है तो उसे छिपाने की बजाय सही मेडिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प लेना चाहिए। साइलेंस से प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, कई बार और बड़ी हो जाती है।
0: तो आज अगर हमारी ये बात किसी एक पर्सन को भी ये सोचने पर मजबूर करे कि शायद मुझे जजमेंट नहीं, हेल्प की ज़रूरत है, तो इस कॉन्वर्जेशन का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा।
1: एब्सोल्युटली, एंड इफ समवन एवर सीज एन ओवरडोज इमरजेंसी हैपनिंग, दे शुडंट इग्नोर इट। गेटिंग इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मैटर्स। इन ओपियोइड ओवरडोज केसेस, ट्रेन रिस्पॉन्डर्स एंड नैलेक्सोन, इफ दे रीच इन टाइम, कैन जेन्युइनली सेव अ लाइफ।
0: क्योंकि किसी की जिंदगी उसकी सबसे बुरी गलती से डिफाइन नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और शायद आज के दिन इससे अच्छा मैसेज कोई और नहीं हो सकता। रिमेंबर द लाइव्स, रिड्यूस द स्टिग्मा, स्प्रेड द अवेयरनेस।
0: तो दोस्तों, 31 अगस्त को सिर्फ एक अवेयरनेस डे की तरह मत देखो, इसे एक कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की तरह देखो, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन जिसमें जजमेंट कम हो और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा।
1: और किसकी गलती थी पूछने से पहले हमें ये पूछना चाहिए, हम किसी की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।
0: तो इसी सोच के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली म्यूजिकल प्रेजेंटेशन की ओर।

0: सो फ्रेंड्स, इट्स ऑगस्ट 31 टुडे और इस तारीख से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो हमें भारत के साहित्य, इतिहास, समाज और राजनीति चारों से जोड़ती हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं टुडे इन हिस्ट्री के सेगमेंट में और शुरुआत करते हैं साहित्य से। 31 अगस्त 1919 को जन्म हुआ था एक बहुत ही मशहूर लेखिका और कवियत्री का, अमृता प्रीतम का। She wrote in both Punjabi and Hindi and gave us some incredibly memorable works of poetry and fiction. उन्हें उनकी famous कविता आज अखा वारिस शानू और उपन्यास पिंजार के लिए खास तौर पर जाना जाता है। और उनकी writings में प्यार, बंटवारा, दर्द और उस समय की औरतों की जिंदगी, इन सब की झलक मिलती है। यही वजह है कि उनकी लिखी बातें आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। तो आज हमारे दो साथियों ने, निखिल और श्रेया, एक लघु प्रस्तुति तैयार की है। आइए उसका आनंद उठाते हैं।
1: अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी लिखावट पढ़कर लोग खुद को बेहतर समझ पाते हैं, और ऐसा लगता है वो उन्हीं के लिए है, उनकी ही कहानी है। क्या आप दूसरों के लिए लिखती हैं? लेकिन मुझे लगता है कोई भी लेखक दूसरों के लिए नहीं लिखता, वो अपनी जिंदगी की परछाई को ही कलम के जरिए कोरे पन्ने पर उकेरता है। इसलिए मैं लिखती हूँ खुद के लिए। ये कोरा कागज मेरे लिए वो आईना है जहाँ मैं बिना किसी मुखौटे के खुद को देख पाती हूँ। और जब किसी को बिना मुखौटे के देखते हैं तो अक्सर वो कहानी अपनी सी लगती है। और मेरी इस कहानी का एक नया सफर शुरू होता है 1944 के पंजाब के एक मुशायरे में। वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से जो बोलता बहुत प्यारा था।
2: तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम,

0: ठुकराना दे जिंदगी को बेदिली से हम।
1: आदाब शायर, आपकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खूबसूरत आपके अल्फाज हैं।
0: अरे शुक्रिया, एक कलाकार को उसके अल्फाज से तराशने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो फिर अगली मुलाकात कब? और इसी के साथ शुरू हुआ हमारी मुलाकातों का सिलसिला। इस नए सफर ने मुझे ये समझने का मौका दिया कि जिंदगी के अनजाने सफर में हमें कभी कभी हम सफर भी मिल जाया करते हैं, लेकिन साहिर की मंजिल कहीं और ही थी। वो अक्सर कहा करता था, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन,
2: उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।

0: इंद्रजीत इंद्रोस। आपको मैंने बताया था कि मुझे कैसा डिजाइन चाहिए, फिर भी आपने।
1: अगर आप ठीक समझे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ।
0: जी, आपकी तारीफ।
1: तारीफ तो खुद की क्या करूँ
0: जी।
1: मैं इमरोज, पेशे से चित्रकार।
0: इमरोज धीरे धीरे अब मेरी किताबों, कहानियों और कविताओं का हिस्सा बन गया था। उसे हमेशा पता होता था मेरी लिखावटों पर कौन सा चेहरा जचेगा। इमरोज मेरी वीरान जिंदगी का वो पेड़ था जिसे कुछ नहीं चाहिए था, वो केवल देना जानता था। अक्सर मैं रातों में ही कविताएं लिखा करती थी। वहीं इमरोज की आदत थी सुबह जल्दी उठकर चित्र बनाने की, इसलिए वो काफी जल्दी सो जाया करता था। पर हर रोज ठीक आधी रात में तुम सोए नहीं जी तो?
1: नहीं नहीं, नींद ही में हूँ। ये मेरा सपना ही तो है जहाँ रातों में मैं तुम्हें चाय की प्याली देने आता हूँ।
0: तुम भी ना जी तो जाओ सो जाओ, तुम्हें जल्दी भी उठना है। ये चाय का सिलसिला हमारे हौसखास वाले घर में कई साल चला। इमरोज से मैंने सीखा कि प्रेम शोर नहीं करता, वो बसंत की उस बहार की तरह है जो चुपके से आपकी खिड़की पर दस्तक देता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जहां साहिर मेरे लिए मकान की छत था, वहीं इमरोज मेरा खुला आसमान बनकर आया था। शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मैं खुद के लिए लिखती हूं, लेकिन शायद मैंने पूरा सच नहीं कहा था। ताउम्र मैंने साहिर के जरिए खुद को जानने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इमरोज के सहारे असल में अमृता को और बेहतर जान पाए, और तभी मैंने लिखा। मैं तैनु फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तकलीदी चिनाग बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खूरे तेरी कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तेनु तकदी रवांगी।

Well, that was literally the showstopper and an incredible amalgamation of voice, sound, music, and so much more. Now, moving from literature to a very important chapter in India's political history. On August 31, 1956, the States Reorganization Act received approval and it came into effect on November 1, 1956. और इस कानून के बाद भारत के राज्यों का बड़े स्तर पर पुनर्गठन हुआ। इसमें भाषा और प्रशासन दोनों को ध्यान में रखा गया था। यानी भारत के आज के नक्शे को समझने में 1956 का साल बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का एक अलग तरीका अपनाया। 1996 में पांडुरंग शास्त्री आठवले को कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने स्वाध्याय मूवमेंट की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि समाज में बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि हर इंसान के अंदर से भी शुरू होता है। उनका लोगों की तरफ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ने का भी एक बहुत ही खूबसूरत काम किया। एंड फाइनली वी कम टू अ नेम दैट इज डीपली कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंट इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, प्रणब मुखर्जी। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। वो 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे और उनका पॉलिटिकल करियर 5 दशकों से भी ज़्यादा लंबा था। एंड दैट्स वॉट मेक्स हिस्ट्री सो फैसिनेटिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग डेट्स एंड ईयर्स। हर तारीख के पीछे एक

इंसान की कहानी होती है और हमें उसे याद करना होता है। तो आज के टुडे इन हिस्ट्री में इतना ही। इतिहास की एक और तारीख और कुछ नई कहानियों के साथ फिर से मुलाकात होगी। विद दैट फ्रेंड्स, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग, बिकॉज व्हाई नॉट।

0: All right, let's kick off Quick Buzz with something for the young change makers. The Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2027 quiz is now live on MyBharat and MyGov. It's a chance to test your knowledge about India's progress and a vision for a Viksit Bharat. तो अगर आप अब क्विजेस के फैन हैं सो दिस वन कम्स विद अ पर्पस, नॉलेज बढ़ाइए और VBYLD 2027 का हिस्सा बनने की दिशा में एक स्टेप लीजिए. द क्विज इज नाउ ओपन टिल 16th of September, सो डोंट मिस इट आउट. मूविंग ऑन, August 29 वॉज नेशनल स्पोर्ट्स डे, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद. This year, the focus was on encouraging people, especially the youth, to spend more time playing and staying active.
1: मतलब स्पोर्ट्स सिर्फ स्क्रीन पर देखने की चीज नहीं है, थोड़ा मैदान में उतरिए और खेल को अपने एक रूटीन का हिस्सा बनाइए. तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से अगर हम आपके लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं तो बस इतना कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना मत भूलिए.
0: And friends, if you've been listening to Yuvani and have a suggestion, a thought, or simply something you'd like to share with us, please share it at yuvanifeedback@gmail.com. yuvanifeedback@gmail.com. Your feedback helps us understand what you enjoy listening to and what you want us to bring next.
1: So take care of yourself, keep learning, keep growing, and ever once in a while, give yourself a permission to be child again. Iske saath hum aapse lete hain anumati. Namaskar.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar.

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार
0: राजेश और सरिता का नमस्कार।
1: जी हाँ राजेश, जैसा कि ये समय होता है कि हम अपने सुंदर लोक संगीत अपने सुनने वालों तक पहुंचाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जिस
0: जिसमें सभी को इंतज़ार होता है कि कब 5:10 बजे, और उसमें तो देखिए हम आपके लिए लोक संगीत के जो अलग अलग गाने हैं धुन के, वो सब लेके आए हैं। लेकिन इस वक्त मौसम जो है, कहीं धूप कहीं छांव, कभी रह रह के बारिश हो जा रही है, तो ये एकदम से जो है मौसम का कभी बदलना कभी, तो इसमें जब आप बाहर निकलें तो ज़रूर छाता वाता जो है वो अपना लेके निकलें।
1: और भाई जो राजेश हम लोग लेके आते हैं ना लोकगीत, उसमें अलग अलग फरमाइश होती है, अलग अलग झलक देखने को गांव की संस्कृति की मिलती है। तो जो सबसे पहला जो हम लोग गीत सुनाएंगे, उस लोकगीत में एक ग्रामीण नारी के श्रृंगार और उसके मन की उमंग दिखाई देती है। रेशमी दुपट्टा सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि उसके सपने सजने संवरने और अपने प्रिय के सामने सुंदर दिखने की चाहत का प्रतीक रहता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस पहले लोक संगीत पर है। तो आइए सुनते हैं वीणा ढिल्लौर और उनके सखियों से ये लोकगीत।

0: थे अभी आप सुन रहे थे वीणा ढिल्लौर से ये लोकगीत थे। और भाई हम बात कर रहे हैं लोकगीत की, और अगर हम लोकगीत की बात करें तो भाई ये लोकगीत ऐसा है जब गांव की गलियों में गूंजते हैं ना, तो उसके
1: हाँ
0: सिर्फ सुर और ताल नहीं होते बल्कि घर परिवार की छोटी छोटी खुशियाँ भी शामिल होती है। और एक हम लोग ऐसे
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: सरता, आपने जब लोकगीत की बात की, दूसरा जब बात घूमने की हो, घूमने घुमाने की बहुत बातें हो, और उसमें भी बात यूपी की हो, उत्तर प्रदेश की हो, तो कहा जाता है कि लखनऊ में कई सारी चीज़ें हैं जहां आप घूम सकते हैं, वहां जाके आप उन चीज़ों का दीदार कर सकते हैं। और उसी में सुनीता पांचाल क्या कह रही हैं कि हमें लखनऊ में कहाँ कहाँ घुमा दो, कैसे घुमा दो, तो आइए सुनते हैं इस लोकगीत के जरिए।

0: अभी आप सुनीता पंचाल से सुन रहे थे ये लोकगीत। और जैसा कि राजेश हम बात कर रहे थे कि जो गांव की मिट्टी की खुशबू है ना, रिश्तों की मिठास और लोकगीत की मधुरता, इन सब को लेकर आज हम ये लोक रंजनी जो कार्यक्रम है वो हम लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल
0: और अक्सर देखा गया ना कि कई बार सास की डांट, कभी बहू की मीठी शिकायत, कभी पति से पत्नी की फरमाइश, और इन सब के बीच जब लोकगीतों की तान छिड़ती है तो जिंदगी की छोटी छोटी नोक झोंक भी मुस्कान बन जाती है।
1: और उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया सरिता कि जब कम कोई बोल रहा है या हिसाब किताब से बोल रहा है, जितना जरूरत पड़े उतना ही बोले, तो सामने वाले को एकदम सीधा समझ लिया जाता है।
0: हाँ, ये भी है।
1: तो उसमें शिवानी गोला क्या कहती है कि हमें सीधी ना समझो, तो ये हम इस लोकगीत के जरिए सुनते हैं।

0: जी अभी आप सुन रहे थे शिवानी गोला से ये लोकगीत। तो राजेश भाई, अगर देखा जाए तो जो हमारे लोकगीतों की जो परंपरा है ना, अपने आप में अनूठी है। बहुत कुछ
1: हाँ
0: हमें सीखने को मिलता है इस
1: बिल्कुल,
0: लोकगीत के
1: जिसमें
0: जरिए।
1: जिसमें तंज भी है और अपने बातों को कहने का एक अंदाज भी है, और एकदम गाने के ज़रिए आप कई बार कई ऐसी चीज़ों को कह जाते हैं, संजीदगी भरे चीज़ों को, जिसमें सामने वाले को उसका एहसास भी होता है और उसमें चोट भी नहीं लगती।
0: बिल्कुल, बहुत खूबका आपने। और समय जो है अब कार्यक्रम से हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का है,
1: बिल्कुल
0: और कल फिर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। लेकिन फिलहाल के लिए सरिता और राजेश को दीजिए इजाज़त। आप सभी को हमारा
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल थे।
0: आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 5:30 हुए, लीजिए सुनते हैं खेल खिलाड़ी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल।
0: और आज सबसे पहले ये बता देते हैं कि कार्यक्रम में क्या है खास। आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम्स के बारे में हम आपको बताएंगे, और अच्छे प्रदर्शन और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी होगी वो सभी जानकारी आज एक खास रिपोर्ट में आज आपको हम सुनवाएंगे। क्रिकेट की बात करेंगे तो वुमेन्स T20 एशिया कप शुरू हो चुका है, और भारत और थाईलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ उससे जुड़ी रिपोर्ट भी आपको सुनवाएंगे। DPL यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मेंस के मुकाबलों का हो चुका है, और फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, यानी कि खिताबी टीम हमें मिल चुकी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। US ओपन 2026 के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ AFC Under-20 एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में भी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के दौरान देंगे। और आज हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी कार्यक्रम में मौजूद है, रीमा यादव, उनका भी स्वागत है। आज ये पहली बार आपको अपनी रिपोर्ट सुनवाएंगी, और अतुल क्यों ना शुरुआत कर लें हॉकी वर्ल्ड कप से।
1: जी हाँ दीपिका जी, हॉकी की बात करी आपने, और हॉकी में जो है वर्ल्ड कप जो कि 15 अगस्त से शुरू हुआ था और कल खत्म हो चुका है। कल मेंस सीरीज के जो है वो मुकाबले खेले गए, फाइनल मुकाबले, और कांस्य पदक के मैच भी खेले गए। और उससे पहले महिला वर्ग में भी अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर खिताब जीता, उस पर हम जानकारी अपने श्रोताओं को कल के अंक में दे चुके हैं। और बात करें मेंस ग्रुप की, तो वहाँ से एक पूरी रिपोर्ट, पूरे विश्व कप में क्या हुआ, किसने जीता, कौन विजेता रहा, आइए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: दो सप्ताह तक विश्व हॉकी के सबसे बड़े मंच पर चली जंग का कल 30 अगस्त को बेल्जियम के बावरे में समापन हुआ, और इस समापन पर एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई जो 4 साल पहले भुवनेश्वर में देखने को मिली थी। जर्मनी की बादशाहत बरकरार है और वो विश्व चैंपियन है।
3: World Cup winners 2026 are Germany.
2: बेल्फियर्स हॉकी एरिना में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। निर्णायक गोल 44वें मिनट में मिशेल स्ट्रुथॉफ ने किया। यह जर्मनी का चौथा विश्व कप खिताब है, और इसी के साथ उसने पाकिस्तान के 4 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लेकिन इस जीत की खासियत सिर्फ 4 ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है। जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप के इतिहास में अलग अलग मौकों पर 2 बार लगातार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है, यानी 2002 और 2006 के बाद अब 2023 और 2026, 2 विश्व कप चक्रों में जर्मनी ने लगातार अपना ताज बचाया है।
3: 5 seconds, the clock ticks down. It's heartbreak for Spain. It's history for Germany. The final hooter sounds. And Germany win the World Cup for the 4th time. They now become the most successful team in the men's World Cup history because they go level with Pakistan on 4 titles. Both teams have been runners-up twice, but Germany have 4 third-place finishes to Pakistan's none. And the first team to go back-to-back for a second time. Huge congratulations to them. The final score in the men's FIH Hockey World Cup final for 2026 reads Spain 0, Germany 1.
2: 15 अगस्त को बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू हुआ यह विश्व कप 30 अगस्त तक चला। बावरे के बेल्फियस हॉकी एरिना और एम्स्टलवीन के वॉगनेर हॉकी स्टेडियम में

दुनिया की 16 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता चार चार टीमों के चार शुरुआती पूलों से शुरू हुई। इसके बाद शीर्ष टीमों और दूसरे चरण की ग्रुप व्यवस्था ने सेमीफाइनल की तस्वीर तय की। इस नए प्रारूप में शुरुआती पूल के बाद टीमें दूसरे ग्रुप चरण में पहुंची और वहां से शीर्ष दो दो टीमों ने अंतिम चार में अपनी जगह बनाई। शुरुआत से ही मुकाबला बेहद कड़ा था। मेजबान बेल्जियम और सह मेजबान और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स, गत चैंपियन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन और भारत जैसी टीमों पर निगाहें थीं। लेकिन विश्व कप आगे बढ़ा तो साफ हो गया कि केवल रैंकिंग और पुराना रिकॉर्ड काफी नहीं होगा। हर चरण में परिणामों ने नई कहानी लिखी। जर्मनी ने अपने दूसरे चरण के पूल एफ में तीन मैचों में दो जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि स्पेन एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दूसरी ओर नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना ने पूल ई में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। यहीं से अंतिम चार की असली लड़ाई तैयार हुई और इस पूरे सफर में एक बड़ा मोड़ मेजबान नीदरलैंड्स के सामने आया। सेमीफाइनल में स्पेन ने एम्स्टलवीन में नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। नीदरलैंड्स ने शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन स्पेन ने तीसरे क्वार्टर में मुकाबले की दिशा बदल दी। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। मुकाबला लंबे समय तक बराबरी का रहा। जस्टिस वाइंगोट ने जर्मनी को बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन ने पेनल्टी कॉर्नर से बराबरी की, लेकिन 54वें मिनट में पॉल फिलिप कॉफमैन के गोल ने जर्मनी को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत की कहानी इस बार पदक तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टूर्नामेंट में कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां जरूर रहीं। भारत दूसरे ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच हारने के बाद 7वें-8वें स्थान के मुकाबले में बेल्जियम से 3-3 की बराबरी पर रहा और शूटआउट में 3-4 से हार गया। इस तरह भारत 8वें स्थान पर रहा। इस मुकाबले में हार के बावजूद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अंतिम क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया था। व्यक्तिगत आंकड़ों में हरमनप्रीत की भूमिका और स्पष्ट दिखती है। उन्होंने 8 गोल किए और वे शीर्ष 3 गोल स्कोरों में रहे। उनके सभी 8 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में 9 पेनल्टी कॉर्नर गोल किए, जो सभी टीमों में सर्वाधिक था। फिर भी पदक तक पहुंचने के लिए भारत को गोल करने के साथ साथ निर्णायक मौकों पर रक्षात्मक स्थिरता और निरंतरता में सुधार की जरूरत महसूस हुई। अब लौटते हैं उस मुकाबले पर जहां पूरे विश्व कप का फैसला होना था। 30 अगस्त की शाम बावरे के बेल्फियस हॉकी अरीना में जर्मनी और स्पेन आमने सामने थे। एक ओर गत चैंपियन जर्मनी था, दूसरी ओर 1998 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचा स्पेन। दोनों टीमों की ताकत अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक, विश्व कप की ट्रॉफी। पहला क्वार्टर जर्मनी के थोड़े अधिक दबाव के साथ शुरू हुआ। जर्मन टीम ने आक्रमण की कोशिशें की, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति ने रास्ते बंद रखे। दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने अपनी गति बढ़ाई और कई अच्छे मौके बनाए। इनमें सबसे उल्लेखनीय मौका पोजरा लकाए के रिवर्स स्टिक का प्रयास था, जिसे जर्मनी के गोलकीपर जीन पॉल डोनबर्ग ने शानदार ग्लव सेव से रोक दिया। डोनबर्ग लगातार सक्रिय रहे और हाफ टाइम तक दोनों टीमों को गोल रहित रखने में उनकी अहम भूमिका रही। स्कोर था जर्मनी 0, स्पेन 0। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने दबाव और बढ़ाया। गेंद पर नियंत्रण, सर्कल में प्रवेश और मौके, कई संकेत स्पेन के पक्ष में थे, लेकिन हॉकी में एक अवसर भी पूरे मुकाबले का फैसला कर सकता है और वही क्षण 44वें मिनट में आया। स्पेन की ओर से गोलकीपर आगे बढ़ चुके थे। जर्मनी ने अपने मौके का इंतजार किया और मिशेल स्ट्रुथॉफ गोल के सामने पहुंचे। गेंद उनके पास आई और स्ट्रुथॉफ ने उसे खाली गोल में पहुंचा दिया। स्कोर हो गया जर्मनी 1, स्पेन 0। यह गोल तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने से लगभग 80 सेकंड पहले आया और जर्मनी की उस क्वार्टर में एकमात्र सर्कल एंट्री से बना निर्णायक अवसर था। अब स्पेन के सामने सिर्फ एक गोल की बराबरी का सवाल था। चौथे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार दबाव बनाया। जर्मन डिफेंस को पीछे हटना पड़ा। स्पेन ने गोलकीपर को भी अंतिम 4 मिनट से कुछ समय रहते हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, ताकि बराबरी का मौका बढ़ाया जा सके। लेकिन जर्मनी की रक्षा पंक्ति नहीं टूटी। हर स्पेनिश हमला, हर कोशिश और हर संभावित बराबरी के मौके के बीच जर्मन डिफेंस ने अपना संयम बनाए रखा और जब अंतिम सीटी बजी, जर्मनी विश्व चैंपियन था फिर से। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जर्मनी के क्रिस्टोफर रूर चुने गए। टूर्नामेंट के व्यक्तिगत पुरस्कारों में स्पेन के लुइस कालजाडो को बेस्ट गोलकीपर, जर्मनी के जस्टस वारगेव को JSW राइजिंग स्टार और अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन को हीरो विडा टॉप स्कोरर तथा बेस्ट प्लेयर चुना गया। इस जीत के साथ जर्मनी के विश्व कप खिताबों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले जर्मनी ने 2002 में क्वालालंपुर में, 2006 में मोनशेन ग्लाडबाक और 2023 में भुवनेश्वर राउरकेला में विश्व कप जीता था और अब 2026 का बावरे उसी सूची में जुड़ गया है।
पाकिस्तान ने इससे पहले 1971, 1978, 1982 और 1994 में 4 बार विश्व कप जीता था। इसलिए अब पुरुष विश्व कप के इतिहास में जर्मनी और पाकिस्तान संयुक्त रूप

0: से सबसे अधिक चार चार खिताब वाली टीमें हैं। और लगातार खिताब की कहानी भी कम महत्वपूर्ण नहीं। जर्मनी 2002 और 2006 में लगातार विश्व चैंपियन बना था। 2023 में खिताब वापस पाने के बाद उसने 2026 में उसे फिर बचाया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। दो अलग अलग मौकों पर लगातार विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष टीम। स्पेन के लिए हार जरूर है, लेकिन उसकी यात्रा भी विश्व कप की बड़ी कहानी का हिस्सा है। 1998 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचकर स्पेन ने फिर साबित किया कि वो विश्व कप हॉकी की शीर्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाए हुए है। फाइनल में वे जर्मनी की दीवार को भेद नहीं सका, लेकिन रजत पदक उसके लंबे इंतजार के बाद आया एक महत्वपूर्ण विश्व कप परिणाम है। कांस्य पदक अर्जेंटीना के नाम रहा। उसने तीसरे स्थान के मुकाबले में मेजबान नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया और पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में हार के बाद अर्जेंटीना और मेजबान नीदरलैंड्स के सामने कांस्य पदक बचाने की चुनौती थी। मुकाबले में नीदरलैंड्स ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन अर्जेंटीना की रक्षा पंक्ति ने उसे गोल में नहीं बदलने दिया और हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा। तीसरे क्वार्टर में 41वें मिनट में टॉमस डोमेन के डिफ्लेक्शन से अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई। नीदरलैंड्स ने 49वें मिनट में फ्लोरिस मिंडेडोर्फ के गोल से बराबरी कर ली, लेकिन 59वें मिनट में 41 वर्षीय मोटियास रे ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने विश्व कप में अपना दूसरा पदक हासिल किया, जबकि नीदरलैंड्स 20 वर्षों में पहली बार पुरुष विश्व कप में पदक से बाहर हुआ। मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस रुइस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब नजर डालें विश्व कप की अंतिम शीर्ष 8 टीमों पर। चैंपियन जर्मनी पहले स्थान पर रहा, स्पेन ने रजत पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और अर्जेंटीना कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान नीदरलैंड्स चौथे स्थान पर रहा, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, छठे पर इंग्लैंड, सातवें पर बेल्जियम और आठवें स्थान पर भारत रहा। यानी अंतिम आठ में यूरोप की पांच टीमें जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड और बेल्जियम, जबकि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भी जगह बनाई। जब पूरे टूर्नामेंट के आंकड़ों पर नजर जाती है तो 248 गोल दर्ज हुए। इनमें से 136 फील्ड गोल, 97 पेनल्टी कॉर्नर गोल और 15 पेनल्टी स्ट्रोक गोल शामिल रहे। शीर्ष स्कोरर अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन रहे, जिन्होंने 10 गोल किए। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के मुस्तफा कैसियम और भारत के हरमनप्रीत सिंह 8-8 गोल के साथ रहे। सबसे ज्यादा टीम गोल न्यूजीलैंड ने किए, कुल 21 गोल। इस तरह 15 अगस्त को शुरू हुआ विश्व कप 30 अगस्त को जर्मनी के ताज बचाने के साथ समाप्त हुआ। शुरुआत में 16 टीमों की चुनौती, नए प्रारूप का दबाव, दूसरे चरण की कड़ी लड़ाई, सेमीफाइनल में स्पेन का उलटफेर, अर्जेंटीना का कांस्य पदक और अंत में बावरे में जर्मनी की एक गोल वाली जीत। इन सब ने 2026 विश्व कप को अपनी अलग पहचान दी। भारत पदक दूर से रहा, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की 8 गोल की उपलब्धि और पेनल्टी कॉर्नर में टीम का प्रभाव आने वाली चुनौतियों की एक तस्वीर जरूर देता है। भारतीय हॉकी टीम के लिए अब लक्ष्य साफ है, विश्व कप के मंच पर फिर से पदक की दौड़ में मजबूती से लौटना। और जर्मनी के लिए कल की रात सिर्फ एक और ट्रॉफी की रात नहीं थी, ये उस टीम की रात थी जिसने दबाव सहा, एक निर्णायक मौका पहचाना और फिर आखिरी सीटी तक अपनी बढ़त बचाए रखी। विश्व कप हॉकी का सबसे बड़ा खिताब एक बार फिर जर्मनी के नाम रहा। बावरे की रात में एक गोल ने फैसला किया और इतिहास में 4 सितारे जोड़ दिए।
1: अब हॉकी के बाद बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की। भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से पराजित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 16 ओवर और एक गेंद में केवल 65 रन पर सिमट गई। भारत की शानदार जीत में गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई। अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने 150वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और इस दौरान एक भी रन नहीं दिया। दीप्ति शर्मा की यह उपलब्धि उन्हें महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बना देती है। उसके अलावा नंदिनी शर्मा ने भी 3 विकेट चटकाए, जब श्री चरणी को 2 विकेट मिले। भारतीय गेंदबाजों के सामने थाईलैंड की बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आई। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और 65 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। इससे पहले भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी रही थी। भारत की शीर्ष 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 105 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 22 रन बनाए। इसके बाद शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली और शेफाली की पारी में 8 चौके और 3 छक्के,

0: शामिल रहे। उनकी इस प्रतिभाशाली पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये सुनते हैं शेफाली वर्मा को।
1: आई एम सो हैप्पी द वे थाईलैंड बोलर्स बोल्ड एंड एंड या इट्स जस्ट अ क्रिकेट इन द एंड आई नो वी हैव टू ग्रो एंड वी जस्ट ट्राइंग हार्ड टू यू नो जस्ट शो गुड गुड क्रिकेट इन द मिडल आई नो वी आर देयर वी आर प्रैक्टिस हार्ड फॉर दैट बट जस्ट क्रेडिट टू थाईलैंड बोलर्स एंड आई एम सो हैप्पी वुमेन्स क्रिकेट इज ग्रोइंग सो एंड दे बोल रियली वेल सो वी आर हैप्पी एज अ टीम आवर बोलर्स इन द गुड माइंड सेट आई वुड लव टू प्ले सम मोर क्रिकेट विद दैम and it's just if they all will get more games they will grow more and we all are so happy just seeing the improvement in women's cricket.
0: वही प्रतिका रावल ने भी 22 रन का योगदान दिया। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को मजबूत आधार दिया और एक समय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि भारतीय टीम के अंतिम चरण में थाईलैंड के गेंदबाजों ने वापसी की। भारत ने आखिरी 40 रन बनाने के दौरान अपने 8 विकेट गंवा दिए। थाईलैंड की ओर से सुलेपान लाओमी ने 3 विकेट हासिल किए। इसके बावजूद भारत ने 159 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया जिसके दबाव थाईलैंड के बल्लेबाजों पर शुरू से ही दिखाई दिया। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा के शानदार प्रदर्शन के सामने थाईलैंड की टीम टिक नहीं सकी। भारत ने 94 रन की बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना शानदार आगाज किया और इस जीत के साथ भारतीय टीम का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा होगा और अब भारत की नज़र अपने अगले मुकाबले पर है। भारतीय टीम 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी और यह मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही होगा और इस मुकाबले पर सभी की नज़र रहने वाली है। क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली प्रीमियर लीग को अपना विनर मिल चुका है उसके बारे में बात करते हैं। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराया। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। साउथ दिल्ली की जीत के नायक रहे अमोल शर्मा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 64 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। अमोल ने अंकित डबास के साथ मिलकर साउथ दिल्ली की पारी को संभाला। दोनों के बीच 52 गेंदों पर 89 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। अमोल के आउट होने के बाद भी अंकित ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अंकित डबास ने 33 रनों पर नाबाद 62 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके बाद कप्तान तेजस्वी दहिया ने 18 गेंदों पर 33 रन की तेज तरार पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। साउथ दिल्ली ने लक्ष्य 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया और इसके साथ ही टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इससे पहले सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। सेंट्रल दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी के पहले ही ओवर में अंकित दबास ने सिद्धार्थ जून को आउट कर दिया और हालांकि इसके बाद समर्थ सिंह, युगल सैनी और कप्तान जॉन्टी सिद्धू ने टीम की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाए। समर्थ सिंह ने 27 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। युगल सैनी ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए जबकि कप्तान सिद्धू ने 19 गेंदों पर 36 रन की तेज पारी खेली और सिद्धू की पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। और इस प्रदर्शन के बाद क्या कहते हैं कैप्टन जॉन्टी सिद्धू, आइए सुनते हैं।
2: बहुत अच्छा रहा सफर तो, क्योंकि हमने पूरा टूर्नामेंट टॉप किया है और डोमिनेट किया है पूरे टूर्नामेंट में। हम बस एक ही लास्ट वाला क्वालिफायर और इस मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। यश का, मेरा, सिद्धार्थ जून, मन्नी, तेजस, सबने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और यही एक अच्छी टीम की निशानी भी है कि हर मैच में एक अलग बंदा स्टेप अप करता है। रिवॉर्डिंग यही कि हम फाइनल खेले और चैलेंजिंग तो हर मैच में चैलेंजेस थे। आई एम हैप्पी कि हम फाइनल खेले।
0: जी हाँ, खुश हैं ये फाइनल खेले लेकिन जीत नहीं पाए और लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ दिल्ली को भी शुरुआत में झटका लगा और प्रणव पंत जल्दी आउट हो गए लेकिन इसके बाद अमोल शर्मा और अंकित दबास ने शानदार साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अमोल के आउट होने के बाद अंकित दबास और कप्तान तेजस्वी दहिया ने 23 गेंदों पर 40 रन की साझेदारी की और अंकित अंत तक नाबाद रहे और अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाकर ही लौटे। इस तरह साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराया और दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की

0: और अब यूएस ओपन 2026 की रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
1: करते हैं यूएस ओपन 2026 की। न्यूयॉर्क से साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2026 का रोमांच शुरू हो चुका है। फ्लशिंग मीडोज स्थित यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में पहले दौर के मुकाबले जारी हैं और शुरुआती चरण में ही एक ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जिसने टेनिस जगत को स्तब्ध कर दिया है। चार बार के यूएस ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में बाहर हो गए हैं। अर्जेंटीना के गैर वरीय खिलाड़ी मारियानो नावोने ने जोकोविच को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 और 6-1 से हरा दिया है। यह मैराथन मुकाबला लगभग 4 घंटे 36 मिनट तक चला। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2006 के बाद किसी भी ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में जोकोविच की पहली हार है। 39 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में थे, लेकिन उनका अभियान यहीं थम गया। दूसरी ओर नावोने ने करियर की यह सबसे बड़ी जीत बन गई है। मुकाबले की शुरुआत में जोकोविच ने पहला सेट टाई ब्रेक में गंवाने के बाद दूसरे और तीसरे सेट में वापसी की और 2-1 से बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद नावोने ने चौथा सेट 6-2 और निर्णायक 5वां सेट 6-1 से जीतकर बाजी पलट दी। जोकोविच इस लंबे मुकाबले के दौरान शारीरिक अस्वस्थता और फिटनेस की समस्या से जूझते नजर आए। जोकोविच की हार से पुरुष एकल का ड्रॉ पूरी तरह खुल गया है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले ही हट चुके हैं। ऐसे में गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। अन्य मुख्य मुकाबलों में पूर्व चैंपियन डेनिल मेदवेदेव ने फ्रांस के क्वालिफायर ह्यूगो गेस्टन को सीधे सेटों में 6-4, 6-2, 6-4 से हराकर अच्छी शुरुआत की। महिला एकल में अमेरिकी जेसिका पेगुला ने एलेना गैब्रियला रूसे को 6-3, 6-2 से हराया। यूक्रेन की एलिना स्विस्टोलिना ने भी सोलाना सियेरा को 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। वहीं पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा को कामिला राकिमोवा के हाथों उलटफेर का शिकार होना पड़ा। महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी और 2 बार की गत चैंपियन आर्यन सबालेंका लगातार तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतर रही हैं। फिलहाल न्यूयॉर्क में पहले ही दिन यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि नाम और इतिहास कितने भी बड़े हों, जीत हासिल करने के लिए मैदान पर हर बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। फ्लशिंग मीडोज में मुकाबले जारी हैं, लेकिन मारियानो नावोने की ये ऐतिहासिक जीत और जोकोविच का शुरुआती निकास यूएस ओपन 2026 का पहला सबसे बड़ा अध्याय बन चुका है।
0: फुटबॉल की बात करते हैं। भारत की अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ एएफसी अंडर 20 एशियाई कप 2027 क्वालिफायर का अभियान शुरू कर चुकी है। यानी कि भारत और सीरिया के बीच में जो मैच खेला जाना था वो अब शुरू हो चुका है और लगभग 1 घंटे का मैच खेला जा चुका है। सेकेंड हाफ तक अभी तक कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई है। भारत को मेज़बान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। भारतीय टीम का लक्ष्य 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करना है। भारत अंडर 20 टीम का इस प्रतियोगिता में गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत ने 1974 में ईरान के साथ खिताब साझा किया था। हालांकि पिछले 2 दशकों से टीम इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। इस बार क्वालिफिकेशन की राह भी आसान नहीं है। 8 समूहों के विजेता और 7 श्रेष्ठ उपविजेता ही एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के लिए जगह बनाएंगे। ऐसे में सीरिया के खिलाफ पहला मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इतने भारत के फेवर में नहीं हैं। दोनों टीमें इससे पहले प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में केवल 2 बार आमने सामने आई हैं। 1996 की एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत को सीरिया के हाथों 0-1 से हार मिली थी। वहीं 2004 में सीरिया ने भारत को 2-1 से हराया था। और अब निगाहें ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम पर है, जहाँ भारतीय ब्लू कोल्ट्स सीरिया के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान में उतर चुके हैं। और फुटबॉल की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और सुब्रतो कप से जुड़ी जानकारी सुनते हैं हमारी सहयोगी रीमा यादव से।
2: सुब्रतो कप 2026 के 65वें संस्करण में अंडर 15 यानी सब जूनियर बॉयज कैटेगरी के मुकाबले कल 1 सितंबर से बेंगलुरु में शुरू होने जा रहे हैं। इस कैटेगरी में देश भर के 32 स्कूल टीमें खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी। ये मुकाबले 1 सितंबर से

0: 9 सितंबर तक खेले जाएंगे और 9 सितंबर को फाइनल के साथ इस कैटेगरी के चैंपियन का फैसला होगा। यानी अगले 9 दिनों तक बेंगलुरु में स्कूल फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर रहेगा। युवा खिलाड़ी न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खेलेंगे बल्कि इस बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाकर भविष्य के लिए मजबूत दावा पेश करेंगे। सब जूनियर बॉयज अंडर 15 में सभी टीमों को 8 पूल्स में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। पूल ए वेस्ट बंगाल एनसीसी अरुणाचल प्रदेश एएफ स्कूल, पूल बी चंडीगढ़ त्रिपुरा उत्तर प्रदेश आईएसएसओ, पूल सी सीआईएससीई सीबीएसई सिक्किम आईपीएससी, पूल डी झारखंड दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर एपीएस, पूल ई हरियाणा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तराखंड, पूल एफ मेघालय बिहार सैनिक स्कूल डीएनएच एनडीडी, पूल जी महाराष्ट्र असम गोवा श्रीलंका। पूल
1: और अब क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दलीप ट्रॉफी की, जहां पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन आमने सामने है। सेंट्रल जोन ने अपनी पहली पारी में 266 रन बनाए। टीम की ओर से रिंकू सिंह ने 60 रन की शानदार पारी खेली जबकि आर्यन ने 46 और यश राठौड़ ने 27 रन बनाए। निचले क्रम के यश ठाकुर ने तेज तरार 30 रन जोड़े। और दूसरे सेमीफाइनल पर अगर हम नज़र डालते हैं तो दूसरा सेमीफाइनल साउथ जोन बनाम नॉर्थ जोन के बीच खेला गया। पहली पारी में नॉर्थ जोन ने 195 रन पर समाप्त हुई और उनकी ओर से कामरान इकबाल ने 76 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। साउथ जोन के तेज़ गेंदबाज विदव कोवरप्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और नॉर्थ जोन की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। अब एक नज़र बैडमिंटन पर डाल लेते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब भारतीय शटलरों की नज़रें चाइना मास्टर सुपर 750 पर है और टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने वाला है और भारत की चुनौती की अगुवाई स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन करेंगे। विश्व रैंकिंग 13वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और चैंपियनशिप के फाइनल तक तो पहुंचे थे वे ऑल इंग्लैंड के, लेकिन 4 अन्य प्रतियोगिताओं में क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके हैं और ऐसे में लक्ष्य सेन की कोशिश इस टूर्नामेंट में मजबूत वापसी करने की होगी। और पुरुष एकल में भारत के पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत भी मैदान में उतरेंगे और यूएस ओपन सुपर 300 में उप विजेता रहे श्रीकांत के राउंड ऑफ 32 के चाइनी ताइपाई के ची यू जेन से। स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित तुआंकू मुहिरीज ट्रॉफी 2026 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त अभय सिंह ने फाइनल मुकाबले में हांगकांग चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त हेनरी लुंग को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया और यह प्रतियोगिता PSA चैलेंजर टूर 15 का हिस्सा थी। विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज 27 वर्षीय अभय सिंह का यह PSA टूर का 13वां खिताब है और इस वर्ष यह उनका दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। और अगर एक और बड़ी बात बताएं बैडमिंटन से तो भारत बैडमिंटन के लिए खुशखबरी है। महज 15 साल की भारतीय खिलाड़ी तन्वी पात्री ने इंडोनेशिया में खेले गए पॉन्टीनाइक इंटरनेशनल चैलेंज का महिला सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया है। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
2: और मुझे अनियातुल को
1: दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
4: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेता

0: ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर-20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during their meeting discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions.

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। बिश्केक नगरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजस्कियानेन सह द्विपक्षीय वार्ता सम्पादिता। नौपरिवहन वाणिज्य स्वातन्त्र्यस्य रक्षणाय कृतम् आह्वानम्। किर्गिज राष्ट्रपतिना आर्मेनिया प्रधानमन्त्रिणा च सहापि विहितं मेलनम्। सर्वकारेण 1.7

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: राजेश भाई, हम अपने कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी के साथ साथ मनोरंजन लेकर भी आते हैं। तो भाई, अगर हम बात करें सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित भारत के भविष्य की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जानना।
1: बिल्कुल। और ग्राम संसार में लगातार हम जब गांव की बातें करते हैं तो एक सशक्त पंचायत के लिए जो ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है वो सशक्त पंचायत ही है।
0: जी हाँ, कहते हैं ना कि भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है, और गांव की खुशहाली सिर्फ वहां रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि पूरे देश की प्रगति में योगदान देती है। और एक गांव के विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है ग्राम पंचायत।
1: बिल्कुल सरताबन, सही कहा आपने। और पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन मिलने से स्थानीय विकास तेज होता है। समृद्ध गांव ही आत्मनिर्भर और मजबूत भारत का आधार बनते हैं। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं जरूरी है। इसके अलावा डिजिटल तकनीक से पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और उचित मूल्य की सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाना जरूरी है।
0: बिल्कुल, आपने राजेश भाई सही कहा, लेकिन हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ सरकार या पंचायत से उम्मीद करने से गांव का विकास नहीं होगा, हमें भी ग्राम सभा में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। और भाई, गांव में किस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी समस्या पहले हल होनी चाहिए, इन मुद्दों पर अपनी बात हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और कहते हैं ना कि ये जो ग्रामीण लोकतंत्र का जो ग्राम सभा है ना, महत्वपूर्ण मंच है। ये वो जगह है जहाँ गांव के लोग अपने गांव के विकास से जुड़े हर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर गांव में पानी की समस्या है, सड़क खराब है, नाली की ज़रूरत है, स्कूल में सुविधा चाहिए, स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर करनी है, या रोजगार से जुड़े अवसरों की जानकारी चाहिए, तो इन मुद्दों को पंचायत और ग्राम सभा के सामने हम रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा महिलाओं की पंचायतें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी विकास को और गति देती है। इसके साथ ही स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। मतलब यह है कि सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इससे बनता है विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
0: और राजेश भाई, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि पहले जो गांव की बैठक में ना महिलाएं कम बोलती थी, लेकिन अब हम भी अपनी बात रखते हैं। पानी, बच्चों की पढ़ाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे जुड़े जो मुद्दे हैं, ये भी हमारे लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं की भागीदारी से पंचायत के निर्णयों में गाँव के परिवार से जुड़े जो अनेक महत्वपूर्ण विषय है ना राजेश भाई, उसकी आवाज़ मिलती है।
1: बिल्कुल। और
0: तो
1: जब गांव मजबूत होंगे तब भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसीलिए विकसित भारत के निर्माण में पंचायतों और ग्रामीण जनता की भूमिका निर्णायक है।
0: जी, तो ये थी चर्चा हमने की सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित भारत के भविष्य की। और चर्चाएं तो भी और होंगी राजेश भाई, लेकिन अभी हम अपने जो भाई बहन हैं उनका क्यों ना मनोरंजन कर दें।
1: हाँ, तो आइए सुनते हैं विकल गुर्जर से कि क्या कहते हैं ओछा मानस के बारे में।

0: तो ये लोकगीत सुन रहे थे, ओछा मानस दुखी करे विकल गुजर से। और अब सरिता बहन
1: जी,
0: वृद्धावस्था में कुछ कह रहे हैं, पहले
1: जी मैं
0: बताइए।
1: कह रही हूँ ना कि उम्र जो बढ़ना है ना, जिंदगी का एक स्वाभाविक पड़ाव है। बालों
0: बिल्कुल
1: में सफेदी और शरीर में थोड़ी कमजोरी भले ही उम्र बढ़ने की निशानी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुढ़ापे में आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं। तो
0: बिल्कुल।
1: ऐसी
0: तो इसमें वृद्धावस्था में किस तरीके से सेहत का ध्यान रखा जाए, किस तरह खान पान और दिनचर्या हो, तो इस पे आपको जो ले लेते हैं जानकारी मोना,
1: विशेषज्ञ हैं।
0: हाँ मोना दीपा आहार से।
1: दोस्तों, उम्र का बढ़ना जीवन की एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं और जीवन शैली भी बढ़ने लगती है। इसलिए आज हम जानेंगे कि सही पोषण, संतुलित खान पान और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाकर हमारे बुजुर्ग 60 वर्ष की उम्र के बाद भी स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान कैसे बने रह सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि बुजुर्ग अन्य लोगों से कैसे अलग हैं और वृद्धावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा शरीर की लगभग सभी प्रणालियों को प्रभावित करता है और यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भी जुड़ा होता है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, सुनने में भी कठिनाई हो सकती है, स्वाद और गंध महसूस करने की क्षमता में गिरावट के परिणाम स्वरूप भूख कम लगने लगती है और भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसको सार्कोपीनिया कहा जाता है। हड्डियां कमजोर और खोखली होने लगती है, जिससे गिरने पर फ्रैक्चर या चोट का जोखिम बढ़ जाता है। दांतों से जुड़ी समस्याओं के कारण भोजन चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन के सेवन में कमी आ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है, जिसके कारण संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधि कम हो जाने से अपच, गैस और एसिड रिफ्लक्स जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आ सकती है। इसके कारण भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अकेलापन, भोजन तैयार करने में असमर्थता, आर्थिक निर्भरता बुजुर्गों के पोषण स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर के काम करने की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, साथ ही शारीरिक गतिविधि में भी कमी हो सकती है। इसलिए इस उम्र में शरीर को पहले की तुलना में कम कैलोरीज की जरूरत होती है। हालांकि प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत बनी रहती है, और कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पहले से भी अधिक हो सकती है। यानी कम खाना है, लेकिन ऐसा खाना है जो पोषण से भरपूर हो। यही कारण है कि वृद्धावस्था में ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन हो। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत करता है। यदि पर्याप्त प्रोटीन ना मिले तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का स्रोत अवश्य शामिल करें, जैसे दालें, सोयाबीन, फलियां, दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, और यदि व्यक्ति मांसाहारी है तो अंडा, मछली, मुर्गी या नरम रूप से तैयार किया गया कीमा भी आहार में शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों में अक्सर विभिन्न पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, इसलिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करना आवश्यक है। फल और सब्जियां शरीर को विटामिन, खनिज और फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, कब्ज से बचाव करने और हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक हैं। प्रतिदिन विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां खाने का प्रयास करें। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसलिए आहार में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे विकल्प हैं। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 ml दूध एवं दूध से बने उत्पाद जैसे दही और पनीर तथा

पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। इसके साथ ही लगभग 30 ग्राम तक सूखे मेवे और बीज भी आहार का हिस्सा हो सकते हैं। अर्थात भोजन की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे बुजुर्गों की थाली में क्या क्या होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। इसमें साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, उबले हुए चने, मूंग या लोबिया, हरे पत्तेदार सब्जियां और साथ में 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज लिए जा सकते हैं। यह शरीर को दिन की शुरुआत के लिए अच्छी ऊर्जा देता है। दोपहर के खाने में कम से कम एक तिहाई हिस्सा चोकर युक्त या साबुत अनाज का होना चाहिए, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन आटे की 2 या 3 रोटियां। इसके साथ 30 से 40 ग्राम दाल, भरपूर मात्रा में हरी और अन्य सब्जियां, दही या पनीर और खाने के अंत में कोई भी एक मौसमी फल शामिल करें। शाम के समय बिना चीनी या बहुत कम चीनी वाली 1 कप दूध की चाय या कॉफ़ी ली जा सकती है। नींबू पानी, नारियल पानी के साथ 10 से 15 ग्राम सूखे मेवे और बीज भी लिए जा सकते हैं। रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। इसमें अनाज, हल्की दाल, सब्जियां, थोड़ी सी दही और ताज़े फल का रस शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए भोजन अच्छी तरह पका हुआ और नरम होना चाहिए ताकि उसे चबाने में और पचाने में आसानी हो। भोजन न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, बल्कि उचित तापमान पर परोसा जाना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा कम रखें और मसालों का प्रयोग सीमित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन शांत, सुखद और खुशहाल माहौल में परोसा जाए। परिवार का साथ और सकारात्मक वातावरण भोजन में रुचि बढ़ाने में और भूख को बेहतर करने में सहायक हो सकता है। एक और ज़रूरी चीज़ है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है पानी। वृद्धावस्था में अक्सर प्यास का एहसास कम हो जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी, कब्ज, कमजोरी, चक्कर, मूत्र संक्रमण जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहें। लगभग 2 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास पानी या तरल पदार्थ जरूर लेने चाहिए। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आजकल बाजार में ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं जिनमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा के साथ साथ विभिन्न कृत्रिम पदार्थ भी पाए जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो इनका सेवन कम करें और इनके स्थान पर घर का ताज़ा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। साथ ही पूरे दिन में चीनी का सेवन लगभग 20 से 25 ग्राम से अधिक न हो। लेकिन वृद्धावस्था में स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन और स्वस्थ खानपान की आदतों का पर्याप्त होना काफ़ी नहीं है। इसके साथ नियमित और क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। यह शरीर का वजन नियंत्रण रखने में, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने में मदद करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में और मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायता मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे गठिया, मोटापा, स्ट्रोक, हृदय रोग तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स के जोखिम को कम करने में भी नियमित शारीरिक गतिविधि सहायक हो सकती है। तनाव और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी शारीरिक गतिविधि मदद कर सकती है। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर का संतुलन बेहतर रहता है, गिरने का जोखिम कम हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि करने का प्रयास करें। इसके लिए तेज चाल से चलना, हल्का योग और प्राणायाम, हल्के व्यायाम, स्ट्रेचिंग, संतुलन बनाए रखने वाला व्यायाम अपने दिनचर्या में शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क से शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है,
तो व्यायाम शुरू करने या उसकी तीव्रता बढ़ाने

करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन बनाए रखने में परिवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार के सहयोग, देखभाल और भावात्मक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य उन्हें समय पर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं, उन्हें परिवार के साथ बैठकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें, नियमित सैर और हल्की शारीरिक गतिविधि

0: स्वस्थ वृद्धावस्था पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो सकती है। सुबह समय पर उठें, उठने के बाद कुछ समय अपने शरीर को सक्रिय बनाने के लिए दें। दिन की शुरुआत जल्दबाजी की बजाय शांत और सकारात्मक सोच से करें। सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताएं। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर करें। सैर के बाद हल्का योग, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की या मध्यम शारीरिक गतिविधि का दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। व्यायाम के बाद हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता दिन को एक अच्छी शुरुआत देता है। नाश्ते में साबुत अनाज या मिलेट्स से बनी रोटी के साथ सब्जियां या सब्जी वाला दलिया, ओट्स अथवा रागी की इडली ली जा सकती है। इसके साथ उबले चने, मूंग या लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज शामिल किए जा सकते हैं। नाश्ते के बाद कुछ समय अपनी रुचि की गतिविधियों के लिए निकालें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, संगीत सुनें और अपने पसंद की कोई रचनात्मक कार्य करें। ध्यान या प्राणायाम करें। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए मानसिक रूप से सक्रिय और प्रसन्न रहना भी महत्वपूर्ण है। दोपहर का भोजन संतुलित और आसानी से पचने वाला हो। थाली में रखें साबुत या चोकर युक्त अनाज, 30 से 40 ग्राम दाल, हरी एवं अन्य सब्जियां, दही या पनीर और एक मौसमी फल। दोपहर के भोजन के बाद शरीर को आराम देने के लिए कुछ समय विश्राम किया जा सकता है। यदि नींद लें तो बहुत लंबी दोपहर की नींद की बजाय हल्का और सीमित विश्राम रखें ताकि रात की नींद प्रभावित ना हो। शाम के समय एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ हल्का एवं पौष्टिक नाश्ता लिया जा सकता है। इसके बाद शाम की सैर के लिए जाएं और इस समय को केवल व्यायाम तक सीमित ना रखते हुए वॉक एंड कनेक्ट का समय बनाएं। दोस्तों या हम उम्र के साथियों के साथ टहले, पड़ोस के अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मिले, बातचीत करें, हंसें और अपने अनुभव साझा करें। रात का भोजन हल्का, आसानी से पचने वाला, कम नमक और सीमित मसालों वाला, अच्छी तरह पका और नरम होना चाहिए। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। रात के भोजन के बाद कुछ समय परिवार के साथ बिताएं। बच्चों से बातचीत करें, पोते पोतियों को कहानियां सुनाएं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक और बातचीत करें। प्रिय श्रोताओं, उम्र बढ़ना जीवन की रफ्तार को रोकना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। बस आवश्यकता है कि अपनी दिनचर्या को उम्र के अनुसार ढालने की। सुबह शरीर को सक्रिय रखें, दिन भर मन को व्यस्त और प्रसन्न रखें, भोजन को पौष्टिक एवं संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नमक, चीनी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें, धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से बचें, शाम को अपनों के साथ समय बिताएं और रात को पर्याप्त नींद लें। यही है स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल वृद्धावस्था की सरल दिनचर्या।
1: तो ये सुन रहे थे हम खान पान वृद्धावस्था में सेहत का ध्यान कैसे रखें, खान पान कैसा हो और दिनचर्या, विशेषज्ञ मीना दीपा आहार से।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी थी राजेश भाई। और एक हम जानकारी अपने भाई बहनों को दे दें, कहते हैं कि अगर हम उन बच्चों और युवाओं की तरफ ध्यान दें जिनके भीतर खेल का हुनर हो और सही प्रशिक्षण और सुविधाएं अगर उनको नहीं मिल रही है तो वो प्रतिभा जो है ना राजेश भाई आगे नहीं बढ़ सकती है।
3: बिल्कुल।
2: तो ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए सरकारी योजनाएं और अवसर, इस पर हम आज अपने भाई बहनों से बात करेंगे कि भारत के गाँव में खेल प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। कहीं बच्चा कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करता है तो कहीं कोई युवा दौड़, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल या तीरंदाजी में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखता है। जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर की। और भारत सरकार ऐसे में खेलो इंडिया कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत खेल अकादमियों, प्रशिक्षण केंद्रों और खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने तथा अपने प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण खेल प्रतिभा के लिए वो योजनाएं हैं, उनमें खेलो इंडिया योजना है जो ग्रामीण और छोटे शहरों के प्रतिभाओं को पहचान कर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, साई प्रशिक्षण केंद्र, स्कॉलरशिप और खेल

0: छात्रवृत्ति, खेल आवास, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में खेल कोटा, पुरस्कार प्रोत्साहन राशि, महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर, पंचायत और स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, फिट इंडिया अभियान और स्थानीय खेल मैदान और सुविधाएं।
1: तो भाई इन सभी के जरिए हमारे जो हुनर छिपे जो भी हमारे युवा है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कहते हैं कि गांव की पगडंडियों से लेकर देश के बड़े खेल मैदानों तक पहुँचने का रास्ता अब पहले से अधिक खुला है। ज़रूरत है प्रतिभा को पहचानने, सही प्रशिक्षण देने और अवसर तक पहुँचने की। गांव की मिट्टी में जो छिपी प्रतिभा को अगर सही अवसर मिले तो वही प्रतिभा देश का नाम रोशन कर सकती है। और इसके बाद क्यों ना हम जाते जाते अपने जो भाई बहन है उनका मनोरंजन कर दें। तो आइए सुनते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

0: तो अभी आप सविता शर्मा से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और इसी के साथ हमें कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करना होगा। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
0: राम
1: राम राम,
0: राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी

0: राजस्थान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। UAE की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और UAE की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। UAE ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। UAE ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। तो सरताबंद देखो, पड़ोसी देश में इस वक्त जिस तरीके से बाढ़ आई विनाशकारी, उससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। और बाढ़ जब आती है तो उसके बाद किस तरीके के नुकसान होते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन
1: बिल्कुल
0: ये है कि हम उससे पहले अपनी तैयारियों से काफ़ी हद तक जो है अपने आप को हम कोशिश कर सकते हैं बचाने की। और साथ में कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, इसके बारे में आइए डॉक्टर विपिन कुमार जो कि

0: वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, तो उनसे सुनते हैं।
1: भाइयों नमस्कार। आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सूखा, बाढ़ और भी आपदाएं आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन मौसम बरसात का चला हुआ है और इस बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलती है कि बाढ़, और बाढ़ किस तरीके से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है और उसका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विपिन कुमार जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर विपिन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये बाढ़ क्या है, और
0: देखिए जैसे बाढ़ ये सभी के जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, तो बाढ़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बाढ़ वो है जैसे कि बारिश हुई, अगर वो पानी कहीं पर रुक जाए, जो जल का ऊपरी स्तर है, जो कहते हैं धरातल है, उस पे वो इकट्ठा होगा, तो उस तरह के इकट्ठा होना की प्रक्रिया एक बाढ़ की प्रक्रिया है। सिंपल तरीके से हम अगर हम समझना चाहें तो, चाहे खेत भी हो सकता है, चाहे आपका घर भी हो सकता है, आपकी सड़कें हो सकती हैं, या कहीं बाहर से नदियों के द्वारा पानी आ रहा है और वो ओवरफ्लो होके आपके क्षेत्र में आ गया, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको बाढ़ बोलते हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ नदियों से आता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में बरसात ज्यादा हो जाती है तो वो भी बह के आता है,
0: एकदम
1: वो भी बाढ़ का रूप
0: लेता है, वो भी बाढ़ वही नदियों के द्वारा वही आता, नदियों का जलस्तर आपको देखने को मिलता होगा कि आपके वहाँ पानी तो नहीं बरसात हुई लेकिन आपके वहाँ बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जब पानी ज्यादा गिरता है, जो नदियों का जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसके वजह से वो आपके घरों में, आपके खेतों में आ जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, बाढ़ हर क्षेत्र में तो आती नहीं, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आती है और आने की संभावनाएं रहती हैं?
0: देखिए अमूमन अगर देखा जाए तो हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दो नदियां हैं जो हमारे, इनके जो आसपास जो स्टेट हैं जिनसे ये गुजरती हैं, वहां पर बाढ़ को देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें आसाम, जो आसाम है करीबन 33 जिले हैं जिसमें से 18 जिले बाढ़ से हमेशा क्षतिग्रस्त रहते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो पश्चिम बंगाल भी हमारा बाढ़ प्रभावित राज्य है, उसके बाद बिहार आता है, उड़ीसा आता है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जो गंगा आती है बहते हुए, बाढ़ आपको देखने को मिल सकता है। ये तो ऐसी क्षेत्र जहां पर आपको अमूमन हर साल कभी ना कभी बाढ़ आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पंजाब में भी और राजस्थान में भी आपको कभी कभी देखने को मिला होगा कि बाढ़ यहाँ भी आ गई। उसका कारण यह है कि राजस्थान का तो ये है कि बारिश अभी अचानक होने लगी है, बहुत ज्यादा हो जाती है
1: जी।
0: तो राजस्थान के जो जमीन का ऐसी संरचना है जिसमें पानी नीचे नहीं जाता, वहां पर एक जिप्सम की लेयर है, तो जिससे वो नीचे की तरफ बहाव नहीं होके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। और दूसरी जो पंजाब में है, पंजाब में भी नदियां हैं, और अगर हम साउथ में अगर देखें आपको नवंबर और जनवरी में मिलेगा, क्योंकि जो साउथ इंडिया है वहां पर बारिश का जो समय है वो हमारे यहाँ से विपरीत है, और कुछ समुद्री इलाकों में भी, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में साइक्लोन के साथ पानी का चला आना, इसी तरह महाराष्ट्र, इसी तरह से केरला, कुछ क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पे भी बाढ़ आपको देखने को मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम भी बदल रहा है और मौसम बदलाव के साथ कहीं कहीं पे देखने को मिलता है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो गई और कहते हैं कि बादल फट गया, तो उस स्थिति में भी कुछ सीमित क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है?
0: जो बारिश की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरस गया, तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा पानी, और कभी कभी पहाड़ों पे जो स्थिति होती है, कहते हैं बादल फट गए, तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जब धरातल पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, जो उस धरातल के लिए, वो उस पीरियड के लिए उतनी आवश्यक नहीं होता, तो इसके वजह से एक वेलोसिटी और एक वेग रूप में वो बहना स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे कि ये डिस्ट्रक्शन एक कहते नुकसानदायक होता है, तो इस तरह से परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, और यही है कारण, एक तो वर्षा, दूसरा नदियों में बहाव अचानक ग्लेशियर से अगर या किसी वजह से पिघल कर, या नदियों का जो जल स्तर है उनमें अचानक ज्यादा बढ़ाव आ जाए, वो भी एक कारण है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में समुद्र की लहरें कभी कभी बहुत ही ज्यादा ऊंची हो जाती हैं और वो हमारे धरातल की तरफ बढ़ जाती हैं, ये मुख्य कारण है
1: जो बाढ़ का असर है वो हमारे मानव के ऊपर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इसको कैसे
0: देखिए बाढ़ एक कहा देखा जाए तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दो तरह से नुकसान होता है, स्ट्रक्चरल नुकसान, जो कभी

0: न जाने कितने दिनों तक कोई परिवार घर बनाया रहता है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया रहता है, अपनी कारखाना या व्यापार या खेती, ये पूरी तरह से उसको डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बीमारियां भी नई नई ला देता है। अचानक पानी से संबंधित बीमारियां हैं, मलेरिया है और डायरिया है, इस तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो पूरी तरह से वहाँ का व्यापार ठप हो जाएगा। पूरी तरह से जो उनकी सर्विसेज, चाहे वो कुछ भी हो, खान पान या बिजली, सब कुछ प्रभावित होती है, जिसके वजह से उनकी पूरी जीवन एक तरह से नरक बन जाता है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, सोशल साइकोलॉजिकल हर तरह से डैमेज करता है जिन क्षेत्रों में ये आता है। अभी आपको आसाम में देखने को मिला होगा कि कितने लोगों की जानें चली गई, कितने ज़्यादा घर टूट गए।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि और जब इसका असर बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पे पड़ता है और उसके साथ साथ जो हमारी खेती है
0: खेती है,
1: उसको भी प्रभावित करती है। जी
0: जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, तो उनके लिए तो पूरी तरह से ये बहुत ही, कोई भी फसल है अगर जल जमाव लंबे समय तक हो जाता है तो कोई भी फसल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भुखमरी, गरीबी बहुत ही देखने को मिलेगी। इसके कारण यही है कि लोगों की जो कृषि है, जैसे उनकी मवेशी हैं
1: जी
0: वो भी दह जाते हैं, तो कृषि को या उनका कोई भी व्यापार है उसको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है।
1: तो डॉक्टर साहब, फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए बाढ़ नियंत्रण की बात है तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, एक सामूहिक और एक हर लेवल पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम खेती की ही अगर हम बात करें तो बाढ़ उतनी भयावह लेवल पर नहीं है, तो हमें ध्यान देना, तो उन क्षेत्र के जो किसान हैं वो सिंचाई देने के साथ साथ वो अपने खेतों में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बना के रखें पहले से। जैसे जो ड्रेनेज के चैनल हैं उसको आप टेम्प्रोरी भी चैनल भी बना सकते हैं, जैसे कच्चे भी बन सकते हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो बाढ़ आती है उसका ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं होता है, जो टेम्प्रोरी पानी का आएगा तो उस टेम्प्रोरी पानी को जो 8 दिन या 1 हफ्ता लगने वाला है उसको निकालने के लिए आपके पास सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, वो है ड्रेनेज। तो
1: जी
0: मैं तो किसानों से यही बोलूंगा कि आपके खेत में हर के आउटलेट होने चाहिए, उस जगह पर आप निर्धारित कीजिए जो खेत आपका ढलान की तरफ भाग रहा है वहां पर कुछ आउटलेट दीजिए और वो एक सामूहिक ड्रेनेज लाइन से उसका जुड़ाव हो, जिससे क्या हो कि अगर पानी नदियों का बह के या बरसात से ज्यादा रहता है तो आप उसको खोल दें जिससे वो बह के सीधे आपके पानी खत्म हो जाए। दूसरा ये भी है, आपको जैसे है कि आज की देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है इन पे भी डिपेंडेंट रहना है। जैसे फसल है लगा लिया, इस बार हमारा जो पहले से अनुमान था कि इस बार थोड़ी बरसात का सिचुएशन कुछ अनबन रहेगा, जैसे एल
1: जी
0: नीनो का
1: जी
0: प्रेडिक्शन आ गया था,
1: जी
0: तो इस तरह की भी जानकारियों को भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत है।
1: के अनुसार ही
0: हाँ,
1: फसलों का
0: अपने को
1: चुनाव
0: फसलों
1: करें।
0: का चुनाव करो। तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट का भी बहुत ही इन सब तरह के हमारे किसान सुरक्षित रहें, तो फसल बीमा एक बहुत ही अच्छा आपका कह सकते हैं सिक्योरिटी देने का एक तरीका है, जिसमें अगर आप अपनी प्रीमियम जो है बहुत ही मिनिमम होती है, जो सीरियल क्रॉप्स हैं मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं और जो हॉर्टिकल्चर की हैं थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप लोग फसल का बीमा भी करा लें, जिससे क्या है कि आपको अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जब सरकार ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है कि नहीं ये क्षेत्र एक तरह बाढ़
1: बाढ़
0: प्रभावित
1: प्रभावित
0: क्षेत्र हो चुका, तो उस
1: जी
0: दशा में आप अगर आप कराए रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिलने के संभावनाएं रहती हैं। और उसके अलावा एक चीज और भी है कि हमें भी देखना है कि गांव में जो भी नालियां होती हैं उसके किनारे लोग इनक्रोचमेंट कर लेते हैं, अपना अपना जगह बना ले,
1: जी
0: कब्जा
1: जी
0: कर लेते हैं,
1: जी
0: उस तरह से नहीं करना। जो आपके परदादाओं के टाइम से जो चैनल बने पड़े हैं उनका कुछ महत्व रहा है, जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका
1: जी
0: कुछ महत्व रहा है,
1: बिल्कुल
0: आप
1: तालाब वगैरह।
0: उनको घेर मत लीजिए। आप गांव में तालाब देखेंगे तो तालाब ऐसी जगहों पर हुआ करता था जो ढलावन वाली एरिया में हुआ करता था, लोग क्या करते हैं उसी पॉन्ड के चारों तरफ बस जाते हैं जिससे उसमें पानी बाहर से आके इकट्ठा होने में अवरुद्ध होता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको अपने लेवल पर करना चाहिए और सरकार स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक बॉडी है ऑलरेडी, वो भी प्रयास करती है।
1: जी बिल्कुल, सरकार भी एक योजना लेके आए थे, एक कैच द रेन ये कार्यक्रम, तो इसके तहत आप क्या कहना चाहेंगे
0: मैं
1: किसान
0: देखिए
1: भाइयों को?
0: बाढ़ को हम कैच द रेन उसी लेवल पर कर सकते जब इसका थोड़ा इंटेंसिटी कम हो,
1: जी
0: जैसे आप जो कह रहे हैं कैच द रेन, जैसे हमारे पास अगर कम्युनिटी पॉन्ड है, हमारे पास लग रहा है कि हमारे खेतों में पानी ज्यादा हो गया है और हमारे आसपास के जो पॉन्ड है उनमें पानी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पानी को, उस रेन को डाइवर्ट करके उस पॉन्ड में इकट्ठा करवा लेंगे,
1: जी
0: जिससे क्या होगा कि फिर जब हमारी पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हम उस सिंचाई कर लेंगे। उस दशा में तो ठीक है,

0: एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिस स्थिति में यह है कि हमको किसी भी कारण से पानी को अपने खेत से अपनी जगह से हटाना है, वो स्थिति बाढ़ की स्थिति होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जो कृषि फसलें प्रभावित होती हैं, एक हमारे जो किसान भाई हैं जो भी खेती करते हैं उनके साथ पशु भी होते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें आपको बोल रहा हूँ ना, स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। अगर आप पशु पाले हैं और बाढ़ की स्थिति है तो सीधी सी बात है कि जो कम्युनिटी शेल्टर्स हैं, आपको लगता है कि हमारे एरिया में आता ही आता है ये, तो जो जिला प्रशासन द्वारा कुछ शेल्टर्स बनाए जाते हैं, आप देखे होंगे बाढ़ों के बांध बंधे होते हैं उनके ऊपरी परिस्थितियों में, आपको लग रहा है कि आपके एरिया में जल का स्तर अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है, वार्निंग होती है, आपको पहले से अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे आपको लगता है अपने मवेशियों के साथ आप शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि बाढ़ ज्यादा आ गई तो डेफिनेटली आप उस जगह पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक कंप्लीट नुकसान होने से अच्छा है कि आप पहले प्रिकॉशन जरूर ले लें। और दूसरी, जहां पर थोड़ी कम बाढ़ आती है लेकिन उतनी लेवल की नहीं है, तो चारे की सबसे बड़ी संकट उत्पन्न होती है। ऐसी कंडीशंस में किसानों को लगता है कि हमारे यहाँ बाढ़ आता है, तो मैं कहूंगा कि उनको जैसे जो स्ट्रा से भूसा बनाते हैं, इस तरह के जो साइलेज बनाते हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर अपनी ऊंची जो जमीन है जहां पर लगता है कि पानी कम लगेगा, वैसे पर एक स्टोरेज बनाएं जहां पर उनको इकट्ठा करके रखें, जिससे कि जिन स्थिति में निचली स्तर में अगर पानी आ जाता है और पूरी तरह से उनकी जल जमाव होने से घास की सुविधा नहीं हो पाती है, तो उस अवस्था में वो लोग वहां से लेके पशुओं को चारा दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहने का मतलब यह है कि आपको जो सूचनाएं मिलती हैं, जागरूक रहना,
0: जागरूक होना बहुत जरूरत है।
1: और बाढ़ एक आपदा है और उसको आप रोक तो नहीं सकते,
0: इसलिए 2005 में इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लाया गया। ये एक आपदा है, इसके लिए सचेत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: आपको सचेत रहना है, आप रोक नहीं सकते लेकिन प्रबंधन
0: कर सकते हैं।
1: डॉक्टर विपिन कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन पर आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये बातचीत सुन रहे थे कि किस तरीके से आप बाढ़ जैसी विपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो है
3: जी बेहतर योजना, उचित फसल चयन और जल प्रबंधन के जरिए कृषि में होने वाले नुकसान और जो इंसानों का नुकसान होता है, जो आर्थिक जान माल को नुकसान होता है, उसका आप बचाव कर सकते हैं।
2: ये डॉक्टर विपिन कुमार जी जो कि वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल जी।
3: और इस जानकारी के बाद आइए करते हैं हम अपने भाई बहनों का मनोरंजन और सुनते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना से।

0: किसान भाई बहनों से कुछ जानकारी की बात, मतलब जानकारी दे दे। और अगर हम जानकारी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में उनको हम कुछ बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सरकार की तरफ से तमाम जो किसान भाइयों को ध्यान में रखकर वो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई है।
0: जी हाँ, और कहते हैं ना राजेश भाई की खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन को मजबूत करने की आधारशिला है, और किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और खेती से जुड़े दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, और इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे क्या किसानों को फ़ायदा मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का विकास करना है, और इसके तहत राज्य अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि से जुड़ी परियोजनाएं चलाती हैं। इसमें खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की भी बढ़ावा दिया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना है। और योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत 2007-08 में हुई। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि क्षेत्र में अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार परियोजनाएं लागू करने में मदद करना है। कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। सिंचाई, कृषि आधारभूत ढांचे और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन और उत्पादकता का वातावरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा कृषि से जुड़े स्टार्टअप और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना के अंतर्गत पहले की गई है, और राज्यों को स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने की सुविधा मिलती है।
0: और भाई, अगर हम ये पूछें कि इस योजना की जानकारी कैसे मिलेगी, तो हम यही कहेंगे कि किसान अपने नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं जो हैं और पात्रता है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, खेती में नई तकनीक अपनाना आज समय की ज़रूरत है, ये तो वो जानते ही हैं। मिट्टी की जांच, अच्छे बीजों का चुनाव, पानी की बचत, वैज्ञानिक तरीके से खेती और फसल के बेहतर प्रबंधन से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना कि सही जानकारी, सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही लाभ किसान की तरक्की का मजबूत आधार बन जाता है।
1: बिल्कुल। और दूसरा ये कि सर्वसाधारण जीवन में ना कहा जाता है कि जो अच्छी आदतें रखनी चाहिए, लेकिन जब कुछ बुरी लत लग जाए तो फिर क्या होता है, तो वो गाने के जरिए सफदरजंग राणा और किरण शर्मा से सुनते हैं।

0: तो ये सुन रहे थे सफदरजंग राणा और किरण शर्मा से। और इसी के साथ अब सरिता घड़ी कह रही है कि हमें कार्यक्रम को यहीं पर
1: विराम देना चाहिए। तो इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: कार्यक्रम के
0: प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गीत और गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कव्वाली कार्यक्रम के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए 2 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4,000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज करीब 4,000 छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मसौदा सूची आज प्रकाशित की गई। एसआईआर इस वर्ष 20 जून को शुरू हुआ और घर घर जाकर गिनती 30 जून को शुरू की गई। मतदाता सूची में मतदाता के नाम, ईपीआईसी नंबर, आयु, पता और रिश्तेदार के नाम आदि का विवरण है। एक रिपोर्ट।
2: मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 1,45,10,299 मतदाताओं में से कुल 97,53,577 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष 49,88,993, महिलाएं 47,64,137 और 18 से 19 वर्ष के बीच 1,03,870 मतदाता हैं। नागरिक co.gov.in से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दावे और आपत्ति 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन निर्दिष्ट अवधि 30 जून से 17 अगस्त 2026 के भीतर अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ रहा हो तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान शामिल किए जाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 दाखिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। ये फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बढ़ी हुई व्यवस्था से महिलाएं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी मुफ्त बस यात्रा का फायदा उठा सकेंगी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 19 लाख महिलाओं ने पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई या रजिस्टर कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित या कम उपयोग वाले स्थानों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: इस साझेदारी के अंतर्गत स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यकरण, सुरक्षा, पैदल आवागमन को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पहली कंपनी के पहल के अंतर्गत दीपाली चौक से मंगोलपुरी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर के स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित सामुदायिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा मथुरा रोड और एमपी मार्ग के आसपास के करीब 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के विकास और दीर्घकालिक रखरखाव की पहल की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ पहलों से दिल्ली के प्रमुख कॉरिडोर की सुंदरता और पहचान बेहतर

0: सारा काम नहीं कर सकती है, और अगर सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी हो तो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
1: सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार के साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी हो तो और काम अच्छे से हो सकता है। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाना चाहती हैं, और ये हमारा पहला एमओयू नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पीएसयू के साथ में एमओयू किया, और हर जगह पे आप ये देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता को फर्क दिखाई दे रहा होगा कि रोड के साइड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है और अच्छा उसको सुंदर बनाया जा रहा है।
0: श्री सिंह ने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और निजी क्षेत्र की ये साझेदारी आगे भी इस प्रकार से मजबूत होती रहेगी, साथ ही मिलकर दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को नई गति मिलेगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। इस बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों ने आयुक्त के समक्ष शहर को स्वच्छ बनाए रखने से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार रखे। इस अवसर पर श्री खिरवार ने कहा कि वर्तमान मानसून का सीजन एमसीडी के लिए बेहतर रहा और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ये निगम के लिए सबसे अच्छे मॉनसून सीजन में से एक रहा है। उन्होंने मॉनसून के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान के लिए स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। राजधानी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने आज दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पैक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ई वेस्ट के बेहतर प्रबंध को लेकर सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में झंडे वालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में ई वेस्ट के सही कलेक्शन, सेमिग्रेशन, डिसमेंटलिंग और रिसाइक्लिंग के लिए साइंटिफिक फैसिलिटी स्थापित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर के यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और जाम वाले स्थानों पर समय रहते जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के राजा विहार नया रास्ता में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस नई सीवर लाइन के निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सीवर संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। जाफराबाद स्थित एक निजी डे केयर और प्ले स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में 3 वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ दुष्कर्म पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने ये निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।

0: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली के लिए अंकित डबास 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अंकित डबास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कला संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में पुस्तकालय की सेवाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने और नए विचारों को धरातल पर उतारने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज और लॉ सेंटर के छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उनसे संवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खुली बातचीत, विचारपूर्ण सवालों और नए विचारों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज के युवा लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए 2 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के

0: जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश

0: और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौबहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at Under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस

0: record 207 appearances for his country. Messi said the decision has been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. The 39-year-old revealed the decision in a statement posted on his official Instagram account, confirming that he would no longer wear the Argentina jersey after one of the most celebrated international careers in football history. Messi said the decision had been painful, particularly because of the emotional bond he has shared with the national team and Argentina supporters throughout his career. He led his country to the World Cup title in 2022 after years of near misses, and also helped Argentina win two Copa America crowns. In the US Open, 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic suffered a first-round exit in the men's singles for the first time. Djokovic went down against Argentina's Mariano Novoa in New York this morning. He had also not lost his opening match at any Grand Slam since 2006 Australian Open. In the women's singles, Venus Williams was also knocked out in the first round of her 26th US Open appearance. In table tennis, India's Ankur Banerjee has won his maiden men's title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-आज़म ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवां माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाज़े का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावज़ कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: यूक्रेन तनाजे के बारे में वज़ीर-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज़ शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा मीटिंगें कीं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ का इयादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त और तिजारत की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाज़ों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सदोर ज़ापारोव ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आर्मेनिया के उनके हम मनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीक़ों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। जमहूरिया किर्गिस्तान के कल अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे। भारत की असल जीडीपी में माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल इसी सहमाही में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारतीय मईशत ने नासाजगार हालात के बावजूद तरक्की की रफ़्तार को बरकरार रखा है। नॉमिनल जीडीपी में भी मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में 10.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। आदाद व शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने आज मौजूदा माली साल में अप्रैल से जून तक की पहली सहमाही में जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और बड़ा कारनामा करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कामयाबी तेल की कीमतों के दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई ताकत और मजबूती की अक्कासी करती है। इस दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस मजबूत कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी सख्त मेहनत को जाता है। वजीर खजाना ने कहा कि NDA सरकार की जानिब से की गई असलाहत और मईशत के मौसर और पायदार इंतजाम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। खिदमात की पैदावार के इशारे ISP के तहत जून 2026 के दौरान 19 में से 18 ज़ैली शोबों में सालाना बुनियाद पर इजाफा दर्ज किया गया है। 8 शोबों में 2 हिंसे की शरह नमू दर्ज की गई है। आदद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की जानिब से जारी करदा ज़ैली शोबा जाति RZ ISP आदद शुमार के मुताबिक रियल इस्टेट का शोबा 24.7% की शरह नमू के साथ सबसे आगे रहा, जबकि खुर्दा कारोबार में 18% का इजाफा हुआ। थोक कारोबार में 15.1%, इंतजामी और माविन खिदमात में 14.4% और IT और कंप्यूटर से वाबस्ता खिदमात में 13.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फिजाई नकल हमल वाहिद जैली शोबा रहा जिसमें कमी दर्ज की गई। इस शोबे में पिछले साल की इसी मुदत के मुकाबले 6% की गिरावट दर्ज की गई। ISP एक मुकर्ररा बुनियादी साल के मुकाबले में बाजाब्ता खिदमात के शोबे की पैदावार के हजम में मुख्तसर मुद्दत की तब्दीलियों को जाहिर करता है। आदद शुमार

0: प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत ने कहा कि आदाद व शुमार के मियार और दायरे कार का जायजा लेने के लिए खिदमात की पैदावार के माहाना इशारिये आजमाइशी बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के दरमियान आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और जल शक्ति के वजीर CR पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के दरमियान इस माहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस माहदे से बिहार और झारखंड के देही इलाकों में लाखों किसानों को आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। इसके साथ ही आवाम के लिए पानी पीने का पानी भी फराहम किया जा सकेगा। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का अहम जुज है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। सदर जमहूरिया आज दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थीं। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा से कहा कि वो मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे और इकदार से जुड़े रहते हुए आलमी नुक्ते नज़र को अपनाएं। फैशन इंडस्ट्री में खवातीन के बढ़ते हुए रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में लगभग 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत में फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह मुल्क के रिवायती टेक्सटाइल विरसे को जदीद बाजारों और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अपने इल्म, महारत और तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को फ़रोग देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के खर्च से सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों को जानकारी फराहम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से आने वाले बरसों में भारत आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर सनत में तकरीबन 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में उसका रोल मजीद बढ़ सकता है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में वेफर्स की तैयारी से लेकर चिप की पैदावार तक मजबूती से शामिल करने पर मरकूज है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के तमाम 6 अहम बुनियादी अज्जा का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सेमी कंडक्टर सनत के शराकत दारों में इस बात का एतमाद बढ़ रहा है कि आने वाली दहाइयों में बड़ी सरमायाकारी के लिए भारत एक मौजूं और पसंदीदा मकाम है। इस दौरान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने आज सेमिकॉन 2.0 के बाजाब्ता नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए इसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अहम पेशरफ करार दिया। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि ये जाम हिकमत अमली भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को नुमाया तौर पर मजबूत और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब कर सकती है। इसके अलावा आला कदर वाली मुलाजमतें पैदा कर सकती है और भारत को एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकत दार के तौर पर मजीद मुस्तहकम कर सकती है। IESA के सदर अशोक चंदक ने कहा कि भारत अब अपनी साख कायम करने के मरहले से आगे बढ़कर हकीकी सलाहियत पैदा करने की जानिब गामजन है और मजकूरा पॉलिसी का तसलसल इस सफर को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोटेकाशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुँचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717117, 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से

0: फोन कर रहे हैं, तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतज़ार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूँ कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी जी क्या है आपकी जिज्ञासा?
1: हाँ हाँ स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब भी दिव्यांग हम लोग, हेलो
0: जी जी,
1: हम लोग जब दिव्यांग है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, हम लोग को करना चाहिए क्या? हम लोगों को OTP भी बताना चाहिए, अगर OTP बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या इसे हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि OTP नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी कोई भी बैंक आपसे OTP की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। OTP केवल आपका पर्सनल के लिए है, जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो आपको OTP खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है ATM पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है, किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, OTP तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया हमें, महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना OTP जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूँ। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज का बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटान करते हैं।
0: जी,
3: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसा रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कहना मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा

0: जी से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आपकी रुपया का शायद तो रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूशन, वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूँ अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में ज़मीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है।
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहाँ तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लैंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं, गांव में किसान हैं, जो रेहड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, UPI के थ्रू सारी पेमेंट आपका UPI के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और PM स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो UPI और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएँ हैं वो अप्रिय घटनाएँ वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
2: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट UPI के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, OTP आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे

0: जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है। सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
1: जी जी,
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: नमस्कार, जितेंद्र विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़। ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें इसमें कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं इसका, इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इसको थोड़ा सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
0: हाँ, ये जो चल रहा है अब ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है। अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे
1: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं MR चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका
3: है बात?
1: जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका
3: आम पब्लिक के लिए
1: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
0: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांचर में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांचर में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नई सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहें तो वो आपकी

0: समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि तो ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में। क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफ़ी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
2: बिल्कुल। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
0: जी
2: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये
0: जी
2: बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को। यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में
0: जी
2: ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको, सारे द लास्ट माइल जिसे आप कहते हैं, जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा, सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये
0: जी
2: आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है। और
0: महत्वपूर्ण
2: ये
0: जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। चूंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
3: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार
0: जी।
3: सर। मैंने
0: नमस्कार।
3: पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो हमने अदर बैंक से, प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ स्किप कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि तो वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ से निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
0: जी जरूर जरूर।
1: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहाँ से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहाँ से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
0: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी, आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News Alerts पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI

0: किस तरह से एआई मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एआई ने संभव कर दिखाई हैं?
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.ai करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेन होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल्स देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
0: जी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है एआईआई के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत ज़रूरी है
0: जी। देखिए अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीज़ें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में कुमार साहब ने कहा था कि बहुत सारी जैसे मुद्रा स्कीम है, लेकिन मैं फिर भी

0: कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी,
0: जो अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है।
1: महत्वपूर्ण है जानकारी और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं, और आप हमें ज़रूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
4: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
3: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जपारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक उपकरण

0: और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उड़ीसा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talk with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussion focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defence. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. Mr. Modi reached Bishkek yesterday after concluding his successful visit to Uzbekistan. Bihar and Jharkhand today signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said, the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said this.

फरीद अहमद की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गज़लें कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिशारी चक्रवर्ती का राग कोसी कान्नड़ में संतूर वादन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे दिशारी चक्रवर्ती का राग कोसी कानरा में संतूर वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ

0: quarter from April to June of the current financial year. In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent today. Singamayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. India will play their next match against host Uzbekistan on Thursday. In table tennis, India's Ankur Bhattacharya has won his maiden men's single title at the WTT Fedor Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हुए हैं और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर। आज की सुरीली महफिल में गीत होंगे आपकी पसंद के, कहानियाँ होंगी आपके एहसासों की और हर नगमा होगा किसी खास के नाम का। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि क्या पता अगली धुन वही बात कह जाए जो आपके दिल में है। और सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, पहले प्यार का पहला संदेश भी कुछ ऐसा ही होता है जिसे भेजते हुए दिल धड़कता है और जवाब के इंतज़ार में हर पल ठहर सा जाता है। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत की फरमाइश की थी मजनू का टीला से दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर, एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक माही, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने।

हाँ दोस्तों, पहली बार जब मुलाकात होती है तो दिल कुछ अपना सा लगने लग जाता है, और उनकी एक नज़र पड़ी और मोहब्बत का पहला एहसास भी लगने लगता है। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साजन से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है एसपी सिंह, मयंक, निखिल, प्रियाशी, वेदांशी, मनीष, गीतांजलि, नीलम, वीरेंद्र सिंह, राखी, मनु, ईशी और प्रियांश ने। शास्त्री नगर भीड़सैड से इस गीत की फरमाइश की थी किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया, साईराज और विशाल ने।

0: दोस्तों, प्यार का साथ हो ना तो हर राह आसान लगती है, विश्वास तो हर दूरी के पास लगती है। साथ थामने वाला सच्चा हो अगर, जिंदगी में हर मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लव से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम मोहम्मद सादिक, गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, और दिल्ली से मधु और वीरेंद्र सिंह, सौरभ और लक्की ने।
1: मिस्टर गोपी जी।

जी हाँ दोस्तों, जब किसी से प्यार होता है ना तो बस जुबान पर आता है कि तू मेरा हीरो है और मैं तेरी कहानी बन जाऊँ, तेरी हर खुशी में मैं निशानी बन जाऊँ। तू बस एक बार थाम ले मेरा हाथ, मैं उम्र भर तेरे साथ ही रवानी बन जाऊँ। अनुराधा और मनहर उदास की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म हीरो से इस गीत की फरमाइश की थी।

खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। इस गीत की फरमाइश की थी राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी ने, और साथ ही रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानू, अलीजा नायाब और लड्डू ने, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यस्तफी ने।

जतिन की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से राखी, मनोज, वंदना, स्मिता, ज्योति, अमित और प्रणवी ने।

0: 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर दे। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम

गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं खत्म होता है, और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड संगीत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में प्लेबैक सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गानों के पीछे जो खूबसूरत वायलिन की झनकार और स्ट्रिंग्स का जादू होता है, उसका असली बादशाह कौन है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुमुखी गायक, संगीतकार और किंग ऑफ स्ट्रिंग्स कहे जाने वाले जॉली मुखर्जी की। 10 फरवरी 1956 को सिक्किम के गंगटोक में जन्मे जॉली मुखर्जी का संगीत सफर बेहद दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों में बैकअप सिंगर के रूप में की और ब्रिटिश एयरवेज जैसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए इन फ्लाइट म्यूजिक भी तैयार किया। चलिए इस सुरीले शो की शुरुआत करते हैं उनके उस मशहूर नगमे से जिसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया था, फिल्म चांदनी का ये क्लासिकल ट्रैक।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं जॉली मुखर्जी के जीवन सफ़र पर। फ़िलहाल अभी आप सुन रहे थे 1989 की फ़िल्म चांदनी का ये गाना, और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में श्रीदेवी जी के साथ वो पुकार, चांदनी ओ मेरी चांदनी। दोस्तों, जॉली मुखर्जी की खासियत ये रही कि उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत का बहुत ही सुंदर मिश्रण तैयार किया। उन्होंने मद्रास सिनेमेटिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर फ्यूजन बॉक्स जैसे फ्यूजन एल्बम बनाया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसलैंडिक गायिका ब्योर्क के चर्चित गाने विरांडी के लिए स्ट्रिंग्स अरेंजमेंट्स भी जॉली मुखर्जी ने ही दिए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं 90 के दशक का एक और गाना जिसमें जॉली मुखर्जी ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा।

फिल्म साथी का आप ये रोमांटिक गाना सुन रहे थे जो कि आज भी दिलों में धड़कता है। जॉनी मुखर्जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, विजू शाह और आरडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज़ में एक अलग तरह की ताजगी थी जो हर शैली के गाने में ढल जाती थी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दयावान से सपना मुखर्जी और जॉनी मुखर्जी की आवाज़ में ये सदाबहार गाना।

वाह, क्या धुन और क्या अदायगी। शौले मुखर्जी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मराठी जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए हैं। दोस्तों, ज्वाला मुखर्जी को संगीत बिरादरी में एक ऐसे फनकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय फिल्म संगीत के अरेंजमेंट्स को एक नई ऊंचाई दी। अब समय है 90s के उस रोमांटिक नगमे का जो आज भी रेडियो पर बजते ही बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। फिल्म आईना से लता मंगेशकर और ज्वाला मुखर्जी की आवाज़ों में ये गीत।

अब बात करें ज्वाली मुखर्जी के करियर के मोड़ की, तो उन्होंने संगीत निर्देशक के रूप में भी कई प्राइवेट एल्बमों और गज़लों के लिए काम किया। हरिहरन और उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ भी उनके म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स बहुत सराहे गए। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं 1992 की सुपरहिट फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का वो मस्ती भरा गीत जिसमें ज्वाली मुखर्जी ने अपनी आवाज़ से तड़का लगाया था।

राजू बन गया जेंटलमैन से आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलका याग्निक और ऑब्वियसली जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में ये गीत। और कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफ़रनामा, आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है और आज जॉली मुखर्जी के जीवन सफ़र को हम शामिल कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपनी गायकी से 80 और 90 के दशक को यादगार बनाया, लेकिन जॉली मुखर्जी की असली ताकत क्या थी? वो थी उनकी स्ट्रिंग अरेंजमेंट। भारतीय सिनेमा में भव्य वायलिन, सेलो और ऑर्केस्ट्रा के इस्तेमाल को जिस खूबसूरती से उन्होंने ढाला, उसी वजह से उन्हें उद्योग में किंग ऑफ स्ट्रिंग्स का सम्मान मिला।

सच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा, हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा।

आप सुन रहे हैं जॉली मुखर्जी के जीवन सफर को, आज कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में। और इनके अवार्ड्स और पहचान की बात करें तो भले ही जॉली मुखर्जी मीडिया की चकाचौंध से थोड़ा दूर रहे हों, लेकिन संगीत उद्योग में उनकी प्रतिभा को हमेशा सर्वोच्च सम्मान मिला है। बीबीसी और अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उनके काम को बहुत सराहा गया। स्टेट ऑफ बंगाल और पैट मार्श एंड श्री जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ उनके फ्यूजन एल्बम्स ने भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी।

जॉली मुखर्जी का मानना हमेशा यही रहा कि संगीत इंसान की आत्मा को छूना चाहिए। भले ही आज का दौर डिजिटल म्यूजिक का हो, लेकिन जॉली मुखर्जी के हाथों से रचे गए वो लाइव स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रेशन आज भी नए म्यूजिशियंस के लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी की तरह है। चलिए अब रुख करते हैं 2000 के दशक की तरफ, जहां जॉली मुखर्जी ने नए दौर के संगीत निर्देशकों जैसे प्रीतम के साथ काम किया और धूम 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बैकग्राउंड और वोकल्स में अपना योगदान दिया। सुनवाते हैं आपको फिल्म धूम 2 से ये धमाकेदार ट्रैक।

दोस्तों, चाहे 80 का दशक हो, 90 का दौर या 2000, जॉली मुखर्जी की आवाज़ और उनके बनाए म्यूजिकल अरेंजमेंट्स हमेशा समय से आगे रहे हैं। अब हम अपने इस खूबसूरत शो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। जॉली मुखर्जी की फिल्मी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि अगर आपके काम में शिद्दत और समर्पण हो, तो आपकी कला हमेशा अमर रहती है।

0: इसी गीत के साथ सुरों का सफरनामा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए AR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर। फिलहाल रात्रि के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत SCO के कई नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2,911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by RS Raghu.

गीत सुनहरे कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त कीर्ति। और इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे जो आपके दिल में आज भी बसे हैं। जी हाँ, और रेडियो के माध्यम से इन गीतों को आप तक पहुँचा कर वो यादें तरोताज़ा कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा सलाम कबूल कीजिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बहारों के सपने से। लता मंगेशकर की आवाज है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और अब अगला गीत फिल्म जूल थीफ से किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरूह के लिखे बोल हैं और संगीत से पिरोया है एस टी बर्मन ने।

कोई आए और आपका चेहरा खिल जाए, या फिर किसी के आने की खबर हो तो आपके चेहरे पर नूर आ जाए। जी हाँ, वही गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म आंधी से, तुम आ गए हो नूर आ गया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलजार साहब के लिखे बोल और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म हीरा पन्ना से आपने सुना अभी ये गीत। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। मैं कीर्ति आपके साथ। अगला गीत फिल्म बड़े अच्छे लगते हैं, माफ कीजिएगा, बालिका वधू फिल्म है, और जो गीत है उसका शीर्षक बड़े अच्छे लगते हैं, और अमित कुमार आर

बर्मन की आवाज़ों में ये गीत आप तक आएगा। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अगला गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफ़ी व अन्य साथियों की आवाज़ों में, संगीत के बोल मजरूह ने लिखे थे और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं चांद मेरा दिल।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति

0: प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक थे इस कार्यक्रम में। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाके अब चपेट में आ गए हैं, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। समय हो चला है 3:33 और 12 सेकंड का। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में पेशकश है देवयानी मजूमदार की ये पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं। अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रातःकालीन सभा में 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भक्ति संगीत, साथ में होते हैं भजन, शब्द, नात और देशभक्ति गीत। 6:40 का समय होता है चिंतन का, जिसमें आज आप भगवान महावीर के उपदेश सुनेंगे। समय रहेगा प्रातः 6:40 का। तो ये तो हुई प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म में। आज हम लेकर आएंगे अनन्या वेंकटेशन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति की है विदुषी जी उमा ने, और मृदंगम पर साथ दिया है विदुषी VM कन्नन ने। तो आइए सुनते हैं अनन्या वेंकटेशन का गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आपने अनन्या वेंकटेशन का गायन सुना। वायलिन पर आपका साथ दिया था विदुषी जी उमा ने और मृदंगम पर साथ थी विदुषी वीएम कन्नन। यह आकाशवाणी का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति संगीत, भजन, शबद, नाद और देशभक्ति गीत।

चिंतन आप सुन सकते हैं प्रातः 6:40 पर। आज के इस कार्यक्रम में भगवान महावीर के उपदेश हम लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम में हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45

मैं समाचार का 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7:10 का समय होता है कार्यक्रम संगीतिका का।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम होता है और समय होता है प्रातः 7:30 का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा 8:15 का और उर्दू में खबरें आप सुन सकते हैं 8:30 पर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का समय रहेगा प्रातः 8:45 का। आज के इस कार्यक्रम में आप अनीशा रे का राग नट भैरव में गायन सुनेंगे।

0: श्रोताओं, ये थी सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमैड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और

0: घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। इस मौके पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ में भुटकेशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टीन स्नाइडर इस मंच पर की सह अध्यक्षता करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi, along with other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, last evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. Earlier, Prime Minister Modi held bilateral meetings with leaders of Russia, Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Summit. The Prime Minister will address the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit today. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation yesterday released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. The government has notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi yesterday.
2: There is a significant level of confidence among the global semiconductor industry stakeholders that India is definitely the right place for making major investments in the coming decades. And that is clearly demonstrated by the number of units which have been approved in the Semicon 1.0. That is further demonstrated in the speed at which, from the date of approval to date of groundbreaking to the date of commercial production. That speed is something which people have really noted.
1: At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the accident. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Bihar and Jharkhand.

0: Jharkhand signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi yesterday. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said, "The agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India." He said, "The agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people." New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi held a comprehensive review meeting with senior officials of Ministry of New and Renewable Energy. In a social media post, Mr. Joshi said that the meeting focused on accelerating India's green growth and strengthening renewable energy initiatives across the country, with a special focus on the northeastern states. In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent yesterday. Singamayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. In table tennis, India's Ankur Bhattacharjee has won his maiden men's single title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's double gold with compatriot Akash Pal. India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall very likely at isolated places over Chhattisgarh today. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर श्रोताओं सुबह के 5:10 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये समय है कार्यक्रम आओ योग करें का।
2: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन की। अर्धमत्स्येंद्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येंद्रासन 3 शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र।

मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली, और इंद्र मतलब भगवान। अर्ध मत्स्येंद्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येंद्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्र आसन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येंद्र आसन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येंद्र आसन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।

0: भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:19 और 16 सेकंड हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर श्रोताओं सुबह के 5:20 हो चले हैं और ये समय है देशभक्ति गीत के कार्यक्रम का।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 हो चले हैं और ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुधा माथुर का राग यामिनी बिलावल में गायन। तबले पर आपका साथ दिया है उस्ताद अख्तर हसन ने और सारंगी पर साथ हैं दिलशाद अहमद।